0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। NTA ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। NTA ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। NTA ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पुत्र व्यूह की कल्पना ने महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कभी शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे वाणी जयराम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और यशुदास के स्वर में।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का। सुबह के 7 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। सुबह 8 बजे का समय होगा समाचार प्रभात का आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से ही सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार सुबह के 8:15 पर। सुबह 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। सुबह 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुबह 10 बजे का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह के 10:30 पर। दोपहर के 1:10 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा दोपहर के 1:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर के 2:55 पर आकाशवाणी रांची से। 3 बजे का समय होगा समाचार का आकाशवाणी दिल्ली से। 3:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। शाम के 4 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 4:02 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। 5 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। 5:02 का समय होगा कार्यक्रम विवरण का। शाम 5:05 का समय होगा कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसमें आज आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा लत्तेदार सब्जियों की खेती। उसके बाद आप सुनेंगे संथाली लोकगीत, कलाकार होंगे मोतीलाल सोरेन और साथी। मौसम की जानकारी के बाद आप सुनेंगे भेंटवार्ता। कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे मुंडारी लोकगीत, कलाकार होंगे दुराई सिंह मुंडा और साथी। शाम के 6 बजे का समय होगा मुख्य समाचार का आकाशवाणी रांची से। शाम के 6:02 का समय होगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। शाम के 6:30 का समय होगा आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम।

शाम के 6:55 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से सुनेंगे जिले में आजकल। शाम 7:15 का समय होगा श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि के 8 बजे आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि के 8:15 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 8:45 का समय होगा समाचार संध्या का आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 9 बजे। रात्रि 9:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। रात्रि के 10 बजे आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि के 11:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का आकाशवाणी दिल्ली से। और रात्रि के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत केया सेन के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाय बासा केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

पेश है कार्यक्रम जोहर चायबासा। कार्यक्रम जोहर चायबासा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म हीरो के इस गीत से, लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में।

और आइए अब आपको अगला गीत हम सुनवाते हैं फिल्म आग और शोला से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की।

यादों की बारात। अभी आपने सुना इस फिल्म का ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है

0: अभी आपने सुना फिल्म तेरी मेहरबानियाँ का ये गीत अनुराधा पौडवाल और सबीर कुमार की आवाज़ों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चायबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब वापस को परिवार से मतलब पूरे ये
4: मंगलोर को गाँव बड़गड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे हत्तो तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात होते अखन बात हो जाए है
6: तुम बुरा मिसिंग काम सोए

0: juta tam soe berupa senakana esu dukuran nanya ya apa meria apa meria wa betan ka
1: anya pun do bumbai kura patan pun do re kura anya hun do kodamri kura ro patan patan tu kita mai kura nenene uri na bagya tot ke nyum dona se arti kalo polis kalo ni larai chalao tama buruan gue yang tahu jai tere kakak gue ini buka kau kakak nelayan ini ya.
2: Aling mulai suruh pete api lekan aling sih. Aja hurah reminai ro jita hurah reminai ro. To bugin hurah teh sesen ka eh. Uang ya bita hurah enka. Ali ayah nutun teh nama api lekan.
3: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: इस संदेश के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म ये वादा रहा का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में।

और आइए अब आपको सुनाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार के ही आवाजों में फिल्म तोहफा का ये गीत।

अभी आपने सुना फिल्म साजन का ये गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म यस बोस से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूली गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
7: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
8: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
6: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
9: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 शामिल हुए।
6: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
10: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जाँच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
8: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compass. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज, चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जल ग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
4: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोट्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे, अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। जंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, NTA से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी CJP टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, NTA में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने NTA पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक, लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। जंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government approves NTA paper leaks draft bill for stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue. Says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Doctor Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified four positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. Prime Minister Narendra Modi thanked everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the video message, Modi said that the new bill incorporating provisions for strong action against paper leaks will be introduced in the ongoing session of Parliament next week. The draft bill, as announced by the Prime Minister in the Instagram video shared by him, was approved by the Union Cabinet yesterday. In a fresh video message released through his Instagram handle yesterday, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
8: Thank you, friends. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था, उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए. Thanks to everybody. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहे.
7: Mr. Modi created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views as of now. The earlier record was 300 million views. Delhi police

0: continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Doctor Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in the Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी रांची से सुनिए प्रादेशिक समाचार, लेकिन पहले एक संदेश।
2: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
3: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
4: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा वाले कड़े मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। अगले सप्ताह संसद में होगा पेश। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा अनियमितता की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुल गिरफ्तारियों की संख्या हुई 8। रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर इलाके में आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है घुरती रथ मेला। सुरक्षा के लिए पुलिस का विशेष गश्ती दल सक्रिय। राज्य में मानसून की बेरुखी से अब तक 28% कम बारिश दर्ज। विधानसभा के मानसून सत्र में गूंजेगा पलामू में खरीफ का रकबा घटकर महज 1/4 रहने का मामला। और रांची के खेलगांव में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आज। बालिका वर्ग में रांची और बालक वर्ग में लोहरदगा की टीमें अंतिम 4 में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो को मिले जबरदस्त जन समर्थन और युवाओं के रचनात्मक सुझावों के लिए देश के युवाओं का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए युवाओं को धन्यवाद देते हुए उन्होंने बताया कि इस वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है, जो इसके रिलीज होने के पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला एक नया रिकॉर्ड बन गया है।
5: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया है। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
1: नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हमलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किसी भी हाल में अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। भाजपा नेता दीपक प्रकाश ने विपक्ष की मांगों को राजनीति से प्रेरित बताया।
6: धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप नहीं है, पॉलिटिकल स्टंटबाजी अलग है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई अथॉरिटी नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी से बड़ा कोई उठता भी नहीं है। उस उनके निर्देश पर सब चीजें चल रही है। आज किस बात का इस्तीफा? वो क्या चुनाव जिताए थे कांग्रेस के बलबूते पर? धर्मेंद्र प्रधान चुनाव जीते थे क्या?
1: झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने परीक्षा संचालक एजेंसी टीडीपीएल के 3 और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या 8 हो गई है। जांच टीम ने रांची के 2 होटलों में छापेमारी

0: डिजिटल उपकरणों को जब्त किया है और परीक्षा परिणामों में संभावित हेरफेर तथा एजेंसी को काम सौंपने की प्रक्रिया की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। डीजीपी तदासा मिश्रा के निर्देश पर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य में बढ़ते अपराध और गैंगस्टरों पर काबू पाने के लिए डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। यह टीम कुख्यात अपराधियों का डेटाबेस तैयार कर उनके नेटवर्क, फंडिंग और सहयोगियों पर कड़ी नजर रखेगी और जिला पुलिस के साथ मिलकर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। धनबाद के गोविंदपुर क्षेत्र में सीआईएसएफ ने विशेष अभियान चलाकर तिवारी बस्ती के पास से 6 हाईवा में लदा 78 टन से ज्यादा अवैध कोयला जब्त किया है। गृह मंत्रालय के जीरो कोल लीकेज मिशन और एमएमडीआर अधिनियम के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद जब्त कोयले को बीसीसीएल प्रबंधन को सौंपकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के माई भारत स्वयं सेवक महेश कुमार महतो को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए यूथ एवरेस्ट फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित हिंदुस्तान यूथ आइकन अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। स्वयं 36 बार रक्तदान करने और हजारों सामाजिक अभियानों का नेतृत्व करने वाले महेश इस राष्ट्रीय उपलब्धि से बेहद उत्साहित हैं।
1: टोटल वर्क के जरिए होता कि अपना प्रखंड को विकास करने का काम रहता है। इसमें विभिन्न तरह के एक्टिविटीज मैं भारत और एनएसएस में होते रहते हैं। इंटरव्यू लिया जाता है कि पहले से कभी सोशल वर्क किए हुए हैं कि नहीं, आपका पढ़ाई का एक्सपीरियंस कैसा है। को एक साल यूथ वॉलेंटियर के रूप में काम करना पड़ता है सोसाइटी में, को यूथ को कोऑर्डिनेटर करना है, तब कहीं ना कहीं एनएसएस मैं भारत में आपका सिलेक्शन किया जाता है।
0: रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज घूरती रथ यात्रा के मुख्य धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही प्रसिद्ध मेले का आयोजन हो रहा है। इस पावन अवसर पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए धुरवा थाना क्षेत्र में पुलिस बल की विशेष गश्ती और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय कर दी गई है। श्रावणी मेले को लेकर जसीडीह स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए आरपीएफ आईजी एएन सिंह ने औचक निरीक्षण किया, जहां संदिग्धों की तुरंत पहचान के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। आईजी ने स्टेशन पर यात्रियों के लिए बनाए जा रहे होल्डिंग एरिया, कंट्रोल रूम और भीड़ प्रबंधन का जायजा लिया तथा बताया कि मेला विशेष ट्रेनों और नियमित गाड़ियों में आरपीएफ की विशेष गश्त तैनात रहेगी। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने जन वार्तालाप कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सुखदेव नगर और पहाड़ी मंदिर क्षेत्र के स्थानीय प्रबुद्ध जनों और पार्षदों के साथ कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। एसएसपी ने थाना प्रभारियों को स्कूल कॉलेजों के पास छात्राओं की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी और नियमित गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आगामी सावन माह में पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुगम दर्शन, बैरिकेडिंग और पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था के लिए पूजा समिति से महत्वपूर्ण सुझाव मांगे हैं। राज्य में कम बारिश से खरीफ फसलों पर संकट गहरा गया है। विशेषकर पलामू जिले में 1,35,000 हेक्टेयर के मुकाबले महज 30,000 हेक्टेयर में ही खेती हो सकी है। राज्य के इस गंभीर कृषि संकट को लेकर जनप्रतिनिधियों ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विशेष चर्चा की मांग उठाने की घोषणा की है।
2: 10 दिनों के अंदर अगर बारिश बढ़िया नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं पलामू अकाल सुखाड़ के ओर जा रही है, और जब अकाल सुखाड़ पड़ेगा तो पलामू कहीं ना कहीं हकार मचेगा। पलामू सहित पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बारिश का अवसर कम हुआ है, उसमें विचार करने की जरूरत है। सत्र के माध्यम से सरकार तक भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य हुई है, जो भी प्रदेश में जो हो रहा है, उन सब विचारों को हम लोग सरकार तक पहुँचाने के काम करेंगे।
0: रांची के खेलगांव में आयोजित राज्य स्तरीय द्वितीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता के निर्णायक दौर में बालिका वर्ग से रांची, गिरिडीह, सिमडेगा और साहिबगंज तथा बालक वर्ग से लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़ और गिरिडीह की टीमों ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज प्रतियोगिता का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पेपर लीक संशोधन विधेयक कैबिनेट से मंजूर होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सीजेपी का दावा, नीट पेपर लीक पर जान दे चुके बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ देगा केंद्र। हिंदुस्तान ने लिखा है, खूंटी के 2 श्रमिकों समेत 3 के शव सिक्किम से लाए गए। प्रभात खबर के शब्द हैं, डूरंड कप के लिए रांची तैयार, मुकाबले कल से। दैनिक जागरण लिखता है, झारखंड में नहीं बढ़ेगी एसआईआर की अवधि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा वाले कड़े मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। अगले सप्ताह संसद में होगा पेश। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा अनियमितता की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुल गिरफ्तारियों की संख्या हुई 8। रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर इलाके में आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है घुरती रथ मेला। सुरक्षा के लिए पुलिस का विशेष गश्ती दल सक्रिय। राज्य में मानसून की बेरुखी से अब तक 28% कम बारिश दर्ज। विधानसभा के मानसून सत्र में गूंजेगा पलामू में खरीफ का रकबा, घटकर महज 1/4 रहने का मामला। और रांची के खेलगांव में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आज। बालिका वर्ग में रांची और बालक वर्ग में लोहरदगा की टीमें अंतिम 4 में शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे उड़िया लोकगीत कलाकार हैं दिलीप निषाद और साथी।

अभी आपने सुना लोकगीत का कार्यक्रम माटी के महक। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आपने सुना उड़िया लोकगीत कलाकार थे दिलीप निषाद और साथी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

0: कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है 25 जुलाई। जी हाँ, हर साल 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, जो समाज में कानून के शासन और न्यायिक अखंडता को बनाए रखने का काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 मार्च 2025 को अपनी 98वीं पूर्ण बैठक के दौरान हर साल 25 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त यह पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 25 जुलाई 2025 को मनाया गया। तो बातें हम आपसे और भी करेंगे, सुनते हैं जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे कागी हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोर आए को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी गांव बारे भक्तो तथा तो घर आवे में हमरे घरे बहुत दुख के बात है तो हम बात हो जाए है
6: मुतुम लो बुरन सिंह तामसोय अनिता तामसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
7: अन्य तुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम गुमरे कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने मिल पुरी उड़ी ने बागिया तो कि ये दोनों से यार सी कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तो ना बुरे दम गया तो जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरा इनका
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
10: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
9: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
10: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
9: डायल कीजिए 8700014242।
10: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के पश्चात कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक के स्वर में ये गीत।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी रह जाती हैं।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम विविधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, कुछ ही पल में आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आपके साथ मैं हूँ ममता चोपड़ा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, मतलब इतने आंकड़े उनके रिकॉर्ड्स के खड़े हो जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है वाकई कोई इतनी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। और हमारे देश की बेटियां इस तरह का काम कर भी रही हैं। आज हमारे साथ देश की ऐसी ही बेटी है जो लगभग 17-18 साल से हॉकी के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जैसे ही पदार्पण किया वहां से जो शुरुआत हुई, तो आज भी वे सफलतम हॉकी प्लेयर्स में गिनी जाती हैं और हम आप सब उन्हें जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, सविता पुनिया। तो आइए करते हैं मुलाकात सविता पुनिया से। सविता, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू।
2: जब मैं आपका डिटेल्स देख रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं आप, मतलब 17-18 साल से आप उसी पेस को बनाए रख पा रही हैं खेल के मैदान में। मुझे लगता है अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस तेज रफ्तार जिंदगी की, हाई पिच।
3: या मैम, डेफिनेटली। जब मैं सबसे पहले इंडिया टीम में आई थी तो मेरे कोच आजाद सिंह मलिक ने बात बोली थी कि इंडिया टीम में आना आसान है, बट उस जगह को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो चीज मेरे माइंड में थी हमेशा कि मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं एक एग्जांपल सेट करूं अपनी टीम के लिए, अपने सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता था उस टाइम पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया। और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूं क्योंकि आज फैमिली की सपोर्ट है तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूँ कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो इट्स नॉट इजी।
2: हाँ, और इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही है, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में है। लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, आपने देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना, ड्रिबल करना शुरू किया होगा
3: जी।
2: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोलकीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो गोलकीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं
3: जी। मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास, और 2003 में बोला गया कि आपकी बेटी और मेरी कजन की अगर खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम सिरसा में एक नर्सरी खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ पे हॉकी, बैडमिंटन और जूडो है। तो मैं और मेरी बहन काफी एक्साइटेड थे क्योंकि गाँव से शहर जाना ही हमारे लिए 2003 में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि ओके हमें वहां जाना है। तो मेरे मम्मी जी को गठिया था उस टाइम पे और मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा, गाय भैंस का जो काम होता है, मैं, पापा और भाई मिलके करते थे। तो मेरे लिए ऐसे था कि मन में एक डर था कि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। बट फिर मैं दादाजी के पास गई और उनकी जो खुशी थी, दादाजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूं तू हॉकी खेल। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट सुना था क्योंकि घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था। तो मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है कैसे? तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट गेम है। उनकी जो वर्डिंग थी ये थी कि डिफिकल्ट गेम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले। और हम एक दादाजी का ऐसा था कि हमारे घर में पोतों से ज्यादा पोतियों को या बेटे से ज्यादा बेटियों को प्यार मिलता था। तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है तो मुझे खेलनी तो हॉकी है।
2: अच्छा
3: जी। फिर मैंने हॉकी की ट्रायल दी और वहां मेरे फिजिकल टेस्ट हुए थे क्योंकि हॉकी खेलनी तो आती नहीं थी, तो नॉर्मल टेस्ट। तो वहां पे मैं सेकंड आई थी, गई, मन नहीं लगा क्योंकि वो लाइफ बहुत एक गवर्नमेंट
2: होती है ना
3: जी, डिसिप्लिन्ड। एंड मम्मी की हेल्थ का ऑलरेडी बताया, वो माइंड में था, तो काफी रोती थी। हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन आना होता था फ्राइडे को घर।
2: क्या उम्र थी आपकी उस समय?
3: 13 साल की थी।
2: अच्छा जी। तो 13

0: की सविता के लिए वो सब बहुत ज्यादा हो गया
1: टू
0: हैंडल
1: मच टू.
0: करना।
1: अभी भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया, इस
0: अच्छा
1: वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ. क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं हॉकी छोड़ दूँ और घर वापस चली जाऊँ. काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मी को बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, खाना भी छोड़ दिया था. खाना मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पापा को कि ये ठीक से खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, पूरा टाइम रोती है,
0: ओहो
1: आप लेके जाओ.
0: अच्छा
1: तो पापा लेने आए और तब मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया. वो वर्ड पापा के लिए, एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था उन्होंने. मैं जो भी होगा अपनी बेटी के लिए फिर तो करूंगा. बट ये बात मुझे उस दिन नहीं पता थी. मैं खुशी खुशी घर गई हूँ कि मैं हॉकी छोड़ के आ चुकी हूँ, मम्मी के पास जाके बता रही हूँ. तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा, मंडे को तू वापिस जा रही है. मैंने बोला नहीं, मैंने छोड़ दिया है सबको, मैं अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के आई हूँ. तो बोले कि नहीं बेटा, अब तू एज ए डिफेंडर नहीं खेलेगी, गोलकीपर खेलेगी. उससे पहले मैं एज ए डिफेंडर ट्रेनिंग करती थी. तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं. बोल तो मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने 18,000 रुपए गोलकीपर किट के कोच को देके आए हैं. क्योंकि कोच ने बोला ऑलरेडी मेरे ग्राउंड पे 2 गोलकीपर हैं, तो मेरे पास साल में 2 ही किट आती है, या तो आपको एक
0: लेकिन
1: साल.
0: आपके पापा के पास तो पैसे नहीं थे ना किट
1: जी,
0: के।
1: मेरे पापा जॉब करते थे, बट 8,500-9,000 रुपए सैलरी थी. और वो चीज मेरे को ऐसे हुआ कि 18,000 रुपए ऑलमोस्ट 2 महीने की सैलरी मेरे को मेरे किट पे पापा ने लगा दी. और मेरा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगी. काफी रोई मैं, पर मम्मी ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, कोशिश कर, क्या पता भगवान, तू मेहनत कर, क्या पता भगवान वो दिन ला दे और पापा के लिए एक रिटर्न गिफ्ट होगा. उसके बाद में मैं प्रैक्टिस किया, सिरसा में ही थी, और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहां पे, और काफी अच्छा परफॉर्म किया. क्योंकि नॉर्मली हम शाहबाद की टीम से काफी गोल खाते थे, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जहां पे हमने बहुत कम मार्जिन से मैच को लूज
0: और
1: किया.
0: आपने काफी गोल बचाए।
1: जी, तो वहां जो हमारे जो शाहबाद टीम के कोच थे, उन्होंने मुझे आके 100 रुपए दिए कि आज तेरी वजह से टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ऐसा रहा है. तो वो चीजें मुझे फिर मोटिवेट किया कि ठीक है
0: लेकिन
1: मुझे.
0: आपने जो शुरुआत की, जब उसके बाद आप साई एकेडमी गए, उसके बाद
1: जी
0: नेशनल टीम में आप 2008 में आ चुकी थी, 17 साल की उम्र में आप नेशनल टीम में आ गई थी, मतलब है ना,
1: जी
0: उस पर आपने एशिया कप खेला। ये जो आपने हॉकी के मैदान में गोल के आगे आप खड़ी हो जाती हैं कि ये बॉल को मैं पास नहीं होने दूंगी, उस वक्त सविता का क्या जज्बा होता है मन में?
1: मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई, और हम गांव में रहते हैं, तो पापा के पास फोन गया कि आपकी बेटी का नाम नेशनल कैंप में आ गया है. तो पापा बोले कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन मैंने लड्डू बांटे थे, और एक आज लड्डू बांटूंगा. तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है. कोच के पास मैसेज आया कि मेरा और एक मेरे साथ की प्लेयर थी कि दोनों का नाम इंडिया कैंप में आया, आजाद सर उस टाइम मेरे कोच थे. तो सर ने सेम जो मैंने आपको बोला वो बात बोल के भेजा कि एक बार तो कोई भी इंडिया खेल लेता है, बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको बाकियों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. गई कैंप में और मैं जूनियर थी उस टाइम पे, और अगले ही कैंप में मुझे बोला गया कि आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो रहे हो. तो भंगू सर हमारे कोच थे नेशनल टीम के उस टाइम, तो हर चीज पापा को बताती थी, तो बड़ी खुशी से कि पापा का सपना मैं भी पूरा होने वाला है, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी. जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए वो ये था कि मैं घर गई और दादाजी मेरे पास आए और बोले कि बेटा एक पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जहाँ नाम आया है कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती सिरसा की पहली इंटरनेशनल प्लेयर है. और काफी खुशी थी उनकी आंखों में और बहुत इवन इमोशनल थे. और बट वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं ये पेपर अपनी कबर में रखता हूँ, आज का दिन तू देख और आज से पूरा 1 साल बाद मैं तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा, मैं
0: अच्छा
1: पढ़ना स्टार्ट करूंगा.
0: क्या बात.
1: और आज वो हमारे साथ नहीं है, बट वो चीज सच हुई. 1 साल बाद उन्होंने वो खुद से पेपर मुझे पढ़ के सुनाया. उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं 67 ईयर की एज में दादाजी को इंस्पायर कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर अब तो मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं गिव अप नहीं करूंगी. क्या पता और कितनी लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ.
0: बिल्कुल ठीक. और उसके बाद सविता ने जो काम शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों को मिल पाई, क्योंकि ये एक वॉल की तरह जो खड़ी होती है गोल के आगे सविता, वो वाकई एक उदाहरण पेश करता है. लेकिन खासकर उन इंस्टांसेस की बात बताएं जब आपने जापान के गोल रोके, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के इतने 9-9 गोल रोक डाले, उस समय किस तरीके का उत्साह था टीम के अंदर, उस समय किस तरीके का ऑडियंस का रिएक्शन था, और आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे?
1: सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एज ए डिफेंडर से गोलकीपर आना, मैंने उस चीज को बहुत इंजॉय किया. क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है मुझे. मैं कैमरे से या पब्लिक प्लेस से काफी दूर रहती थी, बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है, अब मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ. तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी. और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं, वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था. और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं
0: किया
1: है. 1980 में बुलाया था, बट वो एक इन्विटेशन था ना, टीम ने क्वालिफाई नहीं किया. तो वो मुझे था कि मैं गोलकीपर हूँ और

0: गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है, तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो काफी अच्छा मैच था वो, मुझे आज भी याद है। और उस 1.5 ईयर हुआ था उस टाइम मुझे बींग ए फर्स्ट गोलकीपर, प्रेशर सिचुएशन था, बट जब जब एक सेव करते हैं और पता है कि एक स्टेप क्लोज जा रहे हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, और नेक्स्ट मोमेंट के लिए नर्वसनेस भी होती है कि अभी और गलती ना हो जाए, अभी और गलती ना हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में मेरी और मेरी टीम दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, घर पे आई अगेन पापा के साथ सब कुछ डिस्कस किया कि मैं उतनी खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, तो पापा ने बोला बेटा पहला ओलंपिक्स था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा तो बाद में और अच्छा होगा। उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है, बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना है, तो मैं डायरी लिखती हूँ नॉर्मली। तो मैंने फिर उस सारी चीजें उसमें लिखा कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को और डे बाय डे बेटर बनाना है, ताकि मैं टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में अपना और योगदान दे सकूं। बस मैम, बहुत गोलकीपर की नॉर्मली लोगों को शायद लगता है कि गोलकीपर्स का सिर्फ मैच खेलना तो आसान है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भागते हैं, गोलकीपर सिर्फ 60 मिनट खड़े रहते हैं। गोलकीपर्स के बहुत सेशंस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीम से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं, हमें ड्रैग फ्लिक रोकना है, शूट आउट रोकना है, और बाकी जो भी फुटवर्क की बहुत एक्सरसाइज करनी होती है, तो वो मैंने अपनी रूटीन में ज्यादा एक्स्ट्रा एड की, और कोचेज से हेल्प लेती थी उस चीज में कि मुझे बताओ कि बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आता है, और जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था, सभी को यही, हमें जो मैसेज मिल रहे थे सभी यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पूल में टॉप किया है और
1: बिल्कुल
0: इंडिया अपने पूल में लास्ट आया। और एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। जैसे मैच से पहले वाले दिन पापा से बात होती है, तो पापा बोल रहे कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, काफी टफ ओपोनेंट है, बट कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से, वो एक मैच खेलने के बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को बोला पापा आप टेंशन मत लो, हम जीतेंगे। मेरे पापा भी अगर आप बात करोगे वो जरूर ये चीज को मेंशन करें। अपने आप से ऐसे कॉन्फिडेंस था क्योंकि हमारे एज ए टीम हमने बहुत काम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और काफी टीम अच्छा खेल रही थी, मेरा भी अच्छा चल रहा था, और लास्ट क्वार्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1-0 वो डाउन थे, बट उनको वो एक बॉडी लैंग्वेज जो देखते हैं ना, क्योंकि हाफ टाइम हुआ वो हंसते हुए आ रहे हैं, क्वार्टर टाइम हुआ हंसते हुए वापिस आ रहे हैं, अदरवाइज ओलंपिक्स का मैच है, हार रहे हैं, तो कोई भी उस टाइम पे उनको एक था कि शायद
1: ये
0: हम
1: साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेली जाती
0: या
1: हैं।
0: दैट आल्सो डेफिनेटली, बट थोड़ा ये उनको था कि हम निकाल लेंगे, गोल निकल जाएगा, हमें भी हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस था। तो हमने यही बात किया कि आज के मैच में डू और डाई, और एक एक मिनट एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लास्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले, और मेरे साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने रोका, मेरे साथ मेरे दूसरे डिफेंडर भी थे, तो एज ए टीम हमने वो मैच जीता।
1: आपके जैसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हॉकी लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाई है, और मतलब आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं अभी जिनको 3 बार लगातार FIH की ओर से बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो वाकई सराहनीय है। सविता, आप तो कैप्टन भी रही है ना, आपने इतने सारे गोलकीपर के तौर पर जो हासिल किया, कैप्टन जब बनी थी तो कुछ प्रेशर महसूस होता था क्या?
0: डेफिनेटली क्योंकि वो गोलकीपर अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बट उसके साथ बींग ए कैप्टन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एड होती है, तो प्रेशर होता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी टीम के लिए है, तो ऑफ कोर्स कैप्टन इज है
1: बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रेशर वाली जॉब तो है। अच्छा, हमने हमेशा आपको जैसे इस तरह के ट्रैक सूट्स में ही देखा है, खेलते हुए भी, अभी भी आप हमारे साथ इसी तरह से हैं। इन ट्रैक सूट के पीछे की सविता क्या ऐसी भी है जो बिंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है, आम लड़कियों की तरह सजती है, पसंद करती है?
0: नो मैम, मैं बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ, और बचपन में मुझे मम्मी बताते हैं कि मैं छोटी थी तब था मुझे, बट 5th 6th क्लास तक था कि कुछ गांव में जाते थे, बैंगल्स लेते थे और पायल लेते थे, बट मैंने सिर्फ लेके रखी है, पहना कभी भी नहीं है। और आज के टाइम पे ये है कि मुझे अगर कोई बोलता है कि मेकअप करना है तो इट्स मेक मी स्ट्रेस कि मुझे उतना पसंद नहीं, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है।
1: ज्यादा पसंद करती हैं, लेकिन हेलमेट के पीछे जब छुपी होती हैं, उनके बाहर निकलकर जो सविता सामने आती है, उस सविता के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो एक हॉकी प्लेयर से हटकर लोगों को जाननी होती है?
0: हॉकी से बाहर ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ कि हॉकी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है, बिना हेलमेट के भी आज मुझे वो कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं उस दिन का शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने अपनी हॉकी जर्नी को कंटिन्यू रखा।
1: वैसे आप जब छोटी थी उस वक्त आप के प्रैक्टिसेस के लिए जाना करना, और हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पर हम देखते थे कि लड़कियों को लेकर उस वक्त तो आंकड़े और भी लैंगिक अनुपात के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे में आपको जब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, करना होता था, तब क्या क्या मुश्किलें आती थी?
0: 2011 की बात है, उस टाइम हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती थी, ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं दिल्ली में ही थी, बेंगलोर से मैं दिल्ली आई थी और बस स्टैंड पे थी मैं, क्योंकि उस टाइम टैक्सी फ्लाइट ये सब उतना नहीं होता था, ट्रेन से आते थे और यहाँ से आगे रोडवेज से जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि पापा को मैं बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अदरवाइज वो लेने आएंगे, फिर पैसा लगेगा, खर्चा होगा। मैं दिल्ली बस स्टैंड पे थी, मेरे पास गोलकीपर बैग था और मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे खड़ी थी, कोई मुझे बस में चढ़ा नहीं रहा था, क्योंकि इतना बड़ा बैग है, देखे सबकी बैग रखेगी उतनी जगह पे दो सवारी और बैठ जाएंगे। मेरा गला भराया था, मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बस में बिठाओ। तो उन्होंने बोला इतना बड़ा बैग और पास में जो लोग खड़े मजाक कर रहे थे, लग रहा है देश छोड़ के जा रही है। तो वो चीजें मुझे अंदर से वीक कर रही थी, इट्स नॉट कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे वीक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों खेल रही हूँ। और उसके बाद में ज्यादा खराब तब हुआ जब मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको बस में नहीं बिठाएंगे, या तो आपको 2 पैसेंजर की टिकट खरीदनी पड़ेगी जी। और 250, मुझे याद है 250 रुपीज की एक टिकट होती थी, और मैंने कहा नहीं, 500 रुपीज तो एक्स्ट्रा, वो पैसे तो मैं बचा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं। तो फिर बोलते आप ऊपर रख दो, बस के ऊपर छत पे रख दो। मैंने बोला इतना बड़ा बैग लेके मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप बोल दो, आप किसी की हेल्प के लिए मुझे बोलो। तो मैं उस बस में नहीं चढ़ी और मैंने पापा को रोते हुए फोन किया कि पापा मुझे नहीं खेलना है, मुझे हॉकी छोड़नी है, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं खेल पाऊंगी, कि मुझे बहुत खराब लगा आज ऐसे से हुआ। तो पापा ने बोला कि बेटा आज आज का दिन कैसे भी निकाल ले, चाहे मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़े, पर मैं तुझे इस वजह से तो हॉकी नहीं छोड़ने दूंगा। पेरेंट्स की सपोर्ट क्या होती है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब एक्सपेंसिव उठाना। और मैं इंडिया टीम में 2008 में आई थी और 18 तक मेरे पास जॉब नहीं थी। तो बट कभी भी पापा ने कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरी बेटी के पास जॉब नहीं है। मम्मा थोड़ी टेंशन लेती थी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ये था कि क्या पता कब इंजरी हो जाए। तो ये टाइम थे जहां पे लगता था कि मैं अपने माँ बाप को जो खुशी देना चाहती हूँ वो अभी भी अधूरी है, बट
1: और उनकी खुशी के लिए आप लगी रही हैं।
0: जी लगी।
1: ये जो आपने लोगों की बात की, लोग ऐसे कमेंट करते थे, सब करते थे, जब आपने खेलना शुरू किया तब भी तो आपको कमेंट सुनने को खूब मिलते होंगे।
0: बिल्कुल, बट मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ कि मेरे को ये चीजें बाद में, जब मैंने ऑलमोस्ट इंडिया टीम में आने के भी 3-4 साल हो चुके थे, तब मुझे मम्मी ने बताना स्टार्ट किया।
1: तो क्या बोलते थे मम्मा, क्या बताते थे?
0: यही कि मतलब हाइट लंबी है तो क्यों शॉर्ट्स पहनना, क्यों जींस पहनना, और घर से बाहर भेजना वो भी तो सेफ नहीं है, कल को अपनी मर्जी से शादी करवाएगी, ये सब चीजें थी जहां। और बट मेरे पापा ने बोला कि हमारा डिसीजन है, हमारी बच्ची है, हम देखेंगे क्या करना है। तो वो मुझे बहुत बाद में खुशी होती थी कि कितने अच्छी चीजें कि वो चीजें मुझे पता नहीं चलने दी।
1: आपके मामा पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा, बहुत जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज पहुंची हैं। आई एम श्योर बहुत ऐसे हरियाणा के भी परिवार होंगे, बेटियां होंगी, जो आज आपको देखकर बहुत प्रेरणा ले रही हैं। चलिए यहाँ पर एक रैपिड फायर करेंगे सविता के साथ। पेनल्टी शूट आउट या पब्लिक स्पीकिंग, किससे ज्यादा नर्वस होती है आप?
0: पब्लिक स्पीकिंग।
1: अच्छा, एक स्ट्राइकर दुनिया का जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अलर्ट रहती है आप उसके खिलाफ?
0: ड्रैग फ्लिकर है नीदरलैंड से, ये भी जेंसन।
1: ओके, अगर आप हॉकी प्लेयर नहीं होती तो क्या होती?
0: डॉक्टर।
1: डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहती थी?
0: पापा का सपना था, क्योंकि मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं, तो उन्होंने किसी वजह से, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से अपनी स्टडी को रोकना पड़ा। पापा ने बोला मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा।
1: एक टीममेट जो आपको कितना ही टेंस मोमेंट हो हंसा सकता है?
0: नेहा गोयल, शी इज वेरी फनी।
1: अच्छा, क्या मुश्किल है, पेनल्टी कॉर्नर बचाना या फिर अपने फेवरेट फूड को ना कहना?
0: पेनल्टी कॉर्नर बचाना।
1: अच्छा
0: जी,
1: खाने को ना करना आसान है।
0: हाँ, मेरे लिए, मैं आई एम नॉट रियली फूडी पर्सन।
1: ओके, अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया के से एक स्किल सीखनी हो तो क्या होगी?
0: मैं मैरी कॉम की फिटनेस को बहुत इंस्पायर करती हूँ।
1: ये सेंटेंस पूरा करिए कि लोग मुझे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि
0: मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
1: अगर आपको मैच खेलते हुए अपनी एक पोजिशन किसी के साथ स्वैप करनी हो गोलकीपर के हटकर, तो क्या होगी?
0: मैं हमेशा ग्रेस, जो हमारी प्लेयर थी, उनके साथ हमेशा मजाक करती थी कि मुझे एज ए डिफेंडर खेलना पसंद है, क्योंकि जैसे गोलकीपर का एक परमिशन मिलता है कोचिंग करना, वैसे एक डिफेंडर है जो पूरी गेम को खिला सकता है। सो इट्स सेंटर डिफेंडर आई ऑलवेज एंजॉय।
1: ऑलराइट सविता, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। लेकिन अंत में देश की बेटियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मैं हर एक उस बेटी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना एक गोल सेट करें लाइफ में और बहुत फोकस और डेडिकेशन के साथ बहुत हार्डवर्क करें और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएं। उससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और उम्मीद करते हैं कि अब जब भी आप मैदान पे उतरेंगी, जो आप गोल बचाती आई हैं वैसा ही आप करिश्मा दिखाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षद बात करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: सविता पुनिया, जाहिर है कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो प्रेरणा देश की बेटियों को दे रही है, वही आगे भी लगातार जारी रहे। हमारी ओर से यही शुभकामनाएं हैं। आज बस इतना ही, नमस्कार।
2: हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित सविता पुनिया के

0: अभी आपने सुना फिल्म जखमका, ये गीत कुमार सानू के स्वर में। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुनते हैं यह जरूरी संदेश।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
7: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
8: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
0: इन जरूरी संदेशों के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म साजन की बाहों में, कुमार शानू के स्वर में।

अभी आपने सुना सोनू निगम के स्वर में फिल्म संघर्ष का ये गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सिर्फ तुम का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म पद्मावत के इस गीत से, नीति मोहन के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म जैकपॉट का ये गीत अरिजीत सिंह के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल का रिश्ता, आवाज़ें हैं अलका याग्निक और साथियों की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
3: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5,00,000 तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
4: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाए। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
5: अभी आपने सुना ये जरूरी संदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चाईबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है सुजैन डी मेलो के स्वर में फिल्म आवारापन से।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: भी अच्छी है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और हम दोनों ये उम्मीद करते हैं कि हमारे माइक के पीछे जितने लोग हैं सभी अच्छे होंगे, हाँ, हमारे सभी श्रोतागण अच्छे होंगे। और आज अच्छा होने का दिन भी है क्योंकि रिमझिम बारिश भी हो रही है और रथ यात्रा भी है, सभी आनंद भी ले रहे होंगे। लेकिन हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं उसी समय हमारे सभी के मन में एक विचार आने लगते हैं। अगर कुछ अच्छे से विचार दिन की शुरुआत की में हम लाते हैं तो हमारे सारे काम स्वतः अच्छे होते जाते हैं। कहते हैं जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलिए तो वक्त आपके साथ अपने आप चलने लगेगा। और साथ ही उस काम को कभी न छोड़े जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। ये दोनों बातें पता है आपस में पूरक हैं।
0: हाँ, क्योंकि हम हमेशा किसी भी काम को ईमानदारी और सच्चाई के साथ करने की सोचते हैं तो इसका परिणाम भी हमें अच्छा ही मिलता है।
1: तो फिर जब परिणाम अच्छे होते हैं तो हम इसके बारे में ये भी सोचते हैं कि अगर हम कुछ अच्छे से गीत जिससे हमें अच्छी प्रेरणा मिलती है वैसे गीत अगर हम सुन लें,
0: हाँ,
1: तो आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा शक्ति मिलती है।
0: बिल्कुल।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
5: श्रोताओं, हमें ये पता है कि सच्चाई हर मायने में देर से ही सही पर लंबी खुशियां देती हैं।
6: बिल्कुल, और लंबी खुशियां तभी मिलती हैं जब हम अपने प्रकृति के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जुड़े होते हैं।
5: हाँ,
6: है ना?
5: हाँ।
6: तो फिर जब हम बातें कर रहे हैं तो सबसे पहले मौसम की बातें करते हैं, क्योंकि आज का मौसम बहुत ही सुहावना है। देर रात काफी तेज बारिश थी, लेकिन सुबह से हल्की फुहारे पड़ रही है और इसके बाद तो सोच लो बाहर में घूमने का आनंद कितना आएगा।
5: हाँ।
6: लेकिन मौसम विभाग के हिसाब से ये कहा गया है कि बारिश मतलब होती रहेगी। आज वैसे भी रथ यात्रा है और कहा जाता है कि घुरती रथ या चलती रथ में बारिश हो तो खेती अच्छी
5: और
6: होती है।
5: जहाँ तक मैं सुनी हूँ कि इसको शुभ मानते हैं।
6: शुभ भी मानते हैं, इसलिए शुभ मानते हैं ना कि खेती अच्छी होगी तो अन्न के भंडार भरेंगे, हम सभी को सूखा नहीं पड़ेगा तो बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, है ना? इसलिए इसे शुभ मानते हैं कि बारिश होना ही चाहिए। और बारिश की जब बात करते हैं ना, तो कई राज्यों में बारिश से हालात बेकाबू हो रहे हैं, जैसे कि गुजरात में लगातार भारी बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और उसके बाद पता है, अगर जो लोग मतलब वायु में फ्लाइट से आना जाना करते हैं तो उनके लिए बहुत परेशानी होने वाली है इस समय पर, खास करके क्योंकि मौसम के उतार चढ़ाव से जितने भी वायुयान है वो बहुत डगमगाने लगे
5: हैं। हाँ,
6: और परेशानी होती है।
5: हाँ हाँ।
6: और उत्तर प्रदेश में भी जैसा कि समाचार मिला है कि बारिश के कारण गंगा यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं और सभी जगहों के नदियां हैं वो भी पानी भर गई है, या तो उफान पर हैं और या फिर बारिश से परेशानी हर जगह हो रही है। जितने भी पहाड़ी एरिया है, पठारी एरिया है, वहां पर भी बहुत परेशानी है और बहुत जगह तो भूस्खलन, जो लैंडस्लाइड होता है, उससे भी परेशानी होती है। तो यानी कि कहने का मतलब है, बारिश जहां तेज हो गई और लगातार होने लगी तो कई तरह की परेशानियां होती है। ये तो बाहर की बात है आभा, और घर में भी अगर अधिक बारिश होती है ना तो सीलन बढ़ जाते हैं।
5: हाँ,
6: है ना? और बहुत ज्यादा
5: बैक्टीरिया का भी खतरा है इस मौसम में ज्यादा रहता
6: है। तो सिर्फ एक तरफ परेशानी नहीं होती, सभी जगह इसके मतलब की जो
5: दुष्परिणाम
6: देखने को मिलते हैं। बस जरूरत है कि समय पर बारिश होने के पहले ही अगर हर तरह की तैयारियां कर ले, खास करके गाँव में वहाँ के खपरेल के घर होते हैं तो उसे देखा होगा कि बारिश होने से पहले ही सभी लोग अपने अपने छत

0: को सवार लेते हैं ताकि बारिश में परेशानियों का सामना ना होना पड़े, और जितने भी परेशानियां हैं, रोड कच्चे हैं तो उन्हें भर लिया जाता है, गड्ढे हैं तो उन्हें भर लिया जाता है, ताकि बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। अधिकतम तापमान था 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा था। तो इससे पता चलता है कि हमारे मौसम में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, है ना। और जब उतार चढ़ाव की हम बातें करते हैं ना, तो बारिश में हर समय जब बारिश होती रहती है तो मौसम बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर रुक जाती
1: है, पानी की बूंदे जो है टिप करती रहती है ना, और इसमें भीगने का कुछ और ही मजा आता है।
0: बिल्कुल, और हर किसी का मन नाचने को भी करता है, तो मुझे लगता है कि हम अपने श्रोताओं को भी इसमें क्यों न झुमा दे।
1: बिल्कुल।

0: आभा, इस गीत को सुनकर ऐसा लग रहा था ना कि कितनी खुशी है इस बारिश में, है ना? और बारिश में अगर हम खुशियां और बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए बारिश के थोड़े दिन पहले से अगर हम कुछ और तैयारियां कर लें तो अपनी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हम ला सकते हैं। पता है वो कैसे?
1: आप बताइए।
0: ये मैं ही बता देती हूँ क्योंकि हमारे श्रोता जानते हैं, सभी को तुम भी जानते हो, अभी मैं बताऊंगी तो लगेगा कि हाँ ये तो मुझे पता था, इसलिए मैं बस याद दिला रही हूँ कि अगर बारिश से पहले हम अपने आसपास में, अगर हम पेड़ पौधों से प्यार करते हैं तो अपने आसपास में कुछ फलदार पौधे, छायादार पौधे, या फिर अपने घर में ही, किचन गार्डन में ही सही, लेकिन कुछ पौधों को लगाने की हमें आदत डालनी चाहिए। तो इसके लिए अपने बच्चों को भी इसकी तैयारी करनी चाहिए, है ना, कि सभी को बताएं कि पेड़ पौधे अगर हमारे साथ हैं तो हमारी प्रकृति सजेगी और साथ ही साथ हमारी जिंदगी संवरेगी।
1: और इससे ना पेड़ पौधे लगाने से एक आपको मतलब सुकून भी मिलता है ना, और पॉजिटिविटी भी बढ़ती है।
0: और वो बढ़ने के साथ साथ सबसे पहले है कि अगर पेड़ होंगे तो हम जिंदा होंगे,
1: बिल्कुल,
0: है ना, और प्रकृति हमारी संरक्षित रहेगी। ये जो मौसम के उतार चढ़ाव हर दिन हमें देखने को मिलते हैं, पूरे साल, सिर्फ बारिश में नहीं बारिश है और गर्मी में नहीं बारिश है, हर मौसम में बारिश है,
1: और ये कहीं ना कहीं हमारा जो है वो दिनचर्या या फिर प्रकृति से छेड़छाड़, हाँ, कह लीजिए,
0: तो हमारी जिंदगी असंतुलित हो जाती है। तो इसे संतुलित करने के लिए सबसे पहले अपने जिंदगी में थोड़े एक दो पेड़ पौधे लगाने खुद चाहिए, या फिर बच्चों के बर्थडे पर एक एक पेड़ लगाने चाहिए, अपनी एनिवर्सरी में एक एक पेड़ लगाने चाहिए, जो हमारी यादों को हमेशा ताजा करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो ये बात बोले हैं ना कि एक पेड़ माँ के नाम है ना, तो ये कितनी बड़ी बात है। इस लाइन को सुनकर ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी माँ से प्यार करता है, और हम अगर अपने पेड़ पौधों को माँ समझे तो ऐसे भी तो धरती हमारी माँ है, नदियाँ हमारी माँ है, पेड़ पौधे हमारी माँ, ये हमारी भारत की
1: सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है, ना?
0: और ये सब आपा पता है, ये हमारी भारत की संस्कृति है कि हम सभी को माँ पिता भाई बहन के रूप में ही देखते हैं, और अपनी प्रकृति के हर रूप में हम पूजा करते हैं। तो बस अगर हमारी प्रकृति हमारे लिए पूजनीय है तो हमेशा उनका सम्मान करें, और अपने नाम से, अपने दोस्तों के नाम से एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे तो ये कहना अच्छा लगता है ना कि बहुत सारे महंगे गिफ्ट देने के बजाय आप एक सुंदर सा पौधा, इंडोर प्लांट ही सही, आप उन्हें गिफ्ट में दें, जो कि आपकी दोस्ती, आपके प्यार को हमेशा दिखाएगा, है ना? और हरियाली तो बिखरेगी ही, मन खुश होगा ही, जैसा कि तुमने कहा कि पॉजिटिविटी आएगी, तो ये तो होगा ही।
1: नहीं, हरे पौधे देख करके ना मन आपका शांत होता है और आप अच्छा फील करते हैं,
0: बिल्कुल। और देखो इतनी सारी बातें अगर हम कर रहे हैं और ये हमेशा हम करते रहे तो एक न एक दिन ये इतिहास जरूर बन जाएगा, है ना? और इतिहास बनने के लिए एक दिन नहीं लगता, हर दिन अपने अंदर कुछ समा कर रखता है, और इतिहास हर दिन का अपना एक विशेष महत्व रखता है।
1: ऐसा ही एक दिन है हमारा 25 जुलाई का, यानी कि आज का दिन,
0: आज का दिन। तो चलो आज के दिन क्या क्या हुआ था इसके बारे में अपने श्रोताओं से हम कुछ बातें साझा करते हैं। आज के दिन 1813 में भारत में पहली नौका दौड़ प्रतियोगिता कोलकाता की हुगली नदी पर हुई थी।
1: और बात करें 1875 की, तो आज ही के दिन जाने माने शिकारी और पर्यावरणविद जिम कार्मेट का जन्म नैनीताल में हुआ था। यह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कर्नल थे। इन्हें उस समय नरभक्षी बाघों का शिकार करने के आदेश दिए जाते थे। जिम कार्मेट ने जिस पहले नरभक्षी बाघ का शिकार किया था उसमें 436 लोगों को अपना शिकार बना चुका था।
0: हाँ, तो ऐसे बाघों को तो मारना एक बन ही जाता है, मतलब कानूनन बन जाते हैं। और 25 जुलाई के दिन में मतलब कि हम ये बता दें कि आज की तारीख को कितना महत्व दिया गया है। आज ही के दिन विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस यानी विश्व IVF दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन प्रजनन चिकित्सा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF तकनीक और भ्रूण वैज्ञानिकों के योगदान को समर्पित है। और आज ही के दिन,
1: और ये जो दिन है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1978 में दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था, और जो कि ऐतिहासिक सफलता डॉक्टर

0: रॉबर्ट एडवर्ड्स और डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो और नर्स जीन पर्डी के प्रयासों से संभव हुई थी।
1: और हम ये भी बता दें, आज ही के दिन स्वेतलाना सावित्स्काया अंतरिक्ष में कदम रखने वाली पहली महिला बनी थी। सोवियत अंतरिक्ष यात्री सोयुज T-12 मिशन का हिस्सा थी, जो सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर उतरा था। इस मिशन के तहत उन्होंने अंतरिक्ष में 3.5 घंटे यानी 3.5 घंटे करीब उपकरणों का परीक्षण किया और सावित्स्काया अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला और दो बार अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भी थी। और ये जो घटनाक्रम है 1984 का है।
0: और 25 जुलाई 1999 की बात करें तो आज ही के दिन लांस आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला टूर डी फ्रांस जीता था। और 2007 की बात करें तो भारत को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति मिली, प्रतिभा पाटिल, जो एक राजनीतिज्ञ दक्षिण एशियाई देश की राष्ट्र उपाध्यक्ष के रूप में 5 वर्षों तक पद पर रही थी।
1: ये हमारी पहली राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति। 1976 में मंगल ग्रह पर प्रसिद्ध चेहरे की तस्वीर ली गई। वाइकिंग 1 मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, इसने लाल ग्रह के सिडोनिया क्षेत्र की प्रसिद्ध तस्वीर ली थी।
0: 1978 की अगर बात करें
1: तो जैसा कि पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुई जॉय ब्राउन पहली ऐसी इंसान थी जिनका जन्म हुआ था ना IVF तकनीक से। और हम ये भी बता दें कि आज ही के दिन हमारे मतलब इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है जो समाया हुआ है। तो देश के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो होता था ना, हर राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई के ही दिन हुआ है, इसलिए आज के दिन को बेहद खास माना जाता है। साल 1977 में नीलम संजीव रेड्डी के बाद से अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक, सभी के लगभग इसी तारीख को अपनी पद की शपथ ली है, है ना। और
0: 25 जुलाई को जो है
1: 1978 में जो टेस्ट ट्यूब बेबी तुमने कहा लुई जॉय ब्राउन का जन्म हुआ था और जिनकी याद पर यह दिन मनाया जाता है, इसके ठीक बाद
0: भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कंचन, जो कि दूसरा नाम उनका दुर्गा भी था, उनका जन्म कोलकाता में हुआ था।
1: और आज है घुड़ती रथ, है ना। और इसका अनुष्ठान हर वर्ष किया जाता है और इस यात्रा के दौरान कई दिनों तक हमारे जगन्नाथ जी मौसीबाड़ी में रहते हैं और आज के दिन वो वापस आते हैं। उनके साथ
0: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ में उनके साथ घुड़ती रथ जैसा कि हम लोग बोलते हैं, और साथ में मुख्य मंदिर की ओर वापस लौटते हैं।
1: और रथ को खींचा जाता है, उसमें सभी लोग मिलजुल कर इस रथ को खींचते हैं। और आज एक और खास दिन है।
0: हाँ, आज है हर्षिणी एकादशी, जिसे आम तौर पर हम हरिशयनी या देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। और ये हिंदू माह के अनुसार आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की 11वीं चंद्र तिथि को पड़ती है।
1: और ये इसे हम चतुर्मास की जो शुरुआत है इसे भी कहते हैं, जो 4 महीने की ये अवधि है जब भगवान विष्णु ब्रह्मांडीय सर्प शेष नाग पर विश्राम करते हैं और योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 मास में प्रार्थना, तपस्या, आध्यात्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। और उसके बाद में हम ऐसा देखते हैं कि चतुर्मास के समय पर भगवान विष्णु की आराधना और सभी देवों की आराधना भी की जाती है। और चतुर्मास मूलतः वर्षा ऋतु और शरद ऋतु को मिलाकर 4 महीनों का पावन काल है।
0: और शास्त्रों के अनुसार यह आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि देवोत्थान एकादशी तक मान्य रहता है। और गरुड़ पुराण में चतुर्मास व्रत का आरंभ आषाढ़ मास की एकादशी या पूर्णिमा तिथि से करने का,
1: यानी आज एकादशी है, आज से ही भगवान नारायण जल में शयन करते हैं और विष्णु की तेज का अंश व्याप्त रहता है। इसी कारण इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान से सिद्धि और तीर्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। और इस समय पर ना देखना कि जितने भी धाम है ना, वहाँ भी बहुत भीड़ होती है, सभी नदियों में तीर्थ करते हैं लोग, स्नान करते हैं, ताकि इन 4 महीनों में भगवान जब शयन करते हैं तो उनके मतलब आराधना की जाती है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि हम

0: हमारा देश समृद्ध हो, सुखी हो, स्वस्थ हो, इस तरह की बहुत सारी प्रार्थनाएं की जाती हैं। और इस समय पर त्रैलोक के तीर्थ की भी इसका भी विधान है, यानी कि शिव के प्रसिद्ध तीर्थ जैसे कि सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम में, बासुकीनाथ धाम में भी लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, क्योंकि सावन शुरू होने वाला है ना 30 तारीख से,
1: चतुर्मास तो शुरू होता है, साथ ही
0: सावन भी शुरू होते हैं। तो हमें लगता है कि आज जो चतुर्मास शुरू हो रहा है, इसके लिए हम भगवान के लिए एक प्रार्थना तो जरूर सबके लिए सुनवाते हैं।
1: बिल्कुल।

0: देखो भगवान की जब हम बातें करते हैं ना तो हमारे हिंदू संस्कृति में ना इतने सारे पर्व त्योहार एक साथ होते हैं ना, तो लगता है कि एक के बाद एक, जैसे कि आज घुर्ती रथ है, आज हरि शयनी एकादशी है, यानी कि हरि शयन करेंगे, चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है आज से। लेकिन जब बहुत सारे जगह है ऐसे जहाँ घूमने की बातें होती है, 30 तारीख से फिर सावन आ जाएंगे तो फिर धाम में घूमने की बातें होंगी,
1: कि 4 महीने तक हमारा त्योहार चलता,
0: कुछ न कुछ त्योहार आते ही रहेंगे। हाँ। 1 महीने तो पूरे सावन रहेंगे और 4 महीने चतुर्मास के। और लेकिन अभी फिलहाल जो आज है, जो 9 दिनों से चला आ रहा है रथ मेला जिसे हम कहते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे घरों में देखना, बहुत मेहमान आए होंगे, बहुत सारी घर में लोग के साथ में मिलना जुलना होता है और फिर कहीं घूमने का प्लान बनता है। तो अभी कहीं बाहर घूमने की कोई जरूरत भी नहीं है,
1: अब हमारे रांची में ही घूमने का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है।
0: मेला लगा हुआ है, जगन्नाथपुर में है, रातू में है, बहुत जगह पर ऐसे छोटे छोटे रथ मेले के आयोजन किए जा रहे हैं। वहां आप अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ घूमने जाइए और फिर ये मेला जो है ना हमारे दिलों को मिलाता है। बहुत सारी चीजें मिलती है वहां पर जो परिवार के एक एक सदस्य को एक एक चीज पसंद आ जाएगा। और उसके बाद में बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे सामान, अगर महिलाएं हैं तो अपने किचन के लिए बहुत सारे सामान,
1: और ये सब ज्यादातर मेला जो
0: मेले में ही मिलते हैं, है ना। हाँ। और कुछ नए ढंग के चीज भी मिलते हैं जो सिर्फ मेले में दिखाई देते हैं, क्योंकि दूर दूर के लोग इस मेले में आते हैं अपने अपने सामान को लेकर। और वो कहते भी है ना कि जब मेला लगे या कोई प्रदर्शनी लगे तो वहां जरूर जाओ, ताकि लोगों के जो आचार विचार है वो देखने को मिलते हैं,
1: नई
0: चीजें देखने को मिलती हैं और कुछ पसंद आ जाते हैं। कुछ बुटीक्स के सामान है, कुछ हस्तकरघा, कुछ हस्तशिल्प के सामान है और तरह तरह की चीजें हैं, वो खेल खिलौने
1: जैसे तो, कि घरेलू उपयोग की वस्तुएं हो गई। और इस मेले में जो है बच्चे भी जो है
0: बहुत एंजॉय करते हैं,
1: झूले खरीदते हैं,
0: झूले का और बहुत तरह की मिठाइयों का, बहुत तरह की जो बजाते हैं ना बच्चे खिलौने,
1: खान पान स्टॉल लगते हैं तो उसमें भी एंजॉय करते हैं लोग।
0: बस ये कहो ना कि अभी इस बारिश के मौसम में कहीं भी ना जाएं, बस मेले का आनंद अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ लें और साथ में ये संगीत आप जरूर सुनें।

0: देखो, कोई भी संगीत सुनते हैं ना तो हमारा मन कितना खुश हो जाता है ना। और मन तभी खुश होता है जब हमारे आसपास के लोग भी खुश हो। तो बहुत जरूरी है कि हम खुश रहें, सामने वाले को खुशियां बांटें, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें स्वस्थ रहना है, और खास करके कोई भी मौसम में, और इस बारिश के मौसम में तो और ज्यादा।
1: और हमें अगर स्वस्थ रहना है ना, तो ये भी जरूरी है कि हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। तो इस पूंजी को सहेजने के लिए एक उपाय है। इस मौसम में कुछ फल ऐसे हैं जिसके उपयोग से कई रोगों का निदान होता है। वैसे हर मौसम के फल का अपना स्वाद और गुण होता है ना?
0: बिल्कुल, और जिसका उपयोग हमें करना भी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें अपने समय के हिसाब से हर कुछ दिया है। बस जरूरी है उसकी जानकारी लेकर और उसका उपयोग करना। अब कहते हैं ना कि भोजन में करेला शामिल मत करो, साग शामिल मत करो, बच्चे हमेशा इससे दूर भागते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। इसीलिए करेले को भगवान ने बनाया है।
1: हाँ बिल्कुल, हर एक चीज का अपना महत्व है।
0: हाँ, और साग है, जितने तरह के साग है, खास करके हमारे झारखंड में तो बहुत तरह के साग होते हैं, तो इनको भी इसलिए बनाया गया और इसकी जानकारी आयुर्वेद में दी गई है ताकि लोग इसके बारे में जाने और इसका उपयोग करें और स्वस्थ रहें, न कि हर समय दवाई खाएं, क्योंकि इतनी सारी दवाइयां खाते हैं हम सभी और उसका साइड इफेक्ट हम खुद झेलते हैं। तो इस समय पर जो बहुत सारे फल है ना, उसका उपयोग हमें करना चाहिए।
1: और अभी हम देख रहे हैं ना, बाजार में जामुन और अनानास काफी मिल रहे हैं, और जिसका उपयोग जो है हम औषधीय गुण के लिए करते हैं। और जामुन के पत्तों की जो राख होती है ना, वो दांत और मसूड़ों पर मलने से हमारे दांत मजबूत होते हैं। और जामुन के रस का अगर आप उपयोग करते हैं और उसको मुंह में कुल्ला करते हैं अगर उबाल करके, तो आपको पायरिया रोग से लाभ मिलेगा।
0: देखो कितने सारे गुण हैं, और साथ ही साथ जामुन के बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि मधुमेह जो डायबिटीज है, इसमें भी जामुन की गुठली की जो गिरी होती है उसका चूर्ण सुबह शाम फांकने से भी लाभ मिलता है।
1: और साथ ही जामुन के कोमल पत्तों को काली मिर्च के साथ चबाकर खाने से पत्थरी निकलता है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है।
0: बिल्कुल, आयुर्वेद से ही हम बहुत कुछ बातें बाहर निकल कर आती है और लोगों के जुबान पर है, और हम इसका उपयोग भी करते हैं। लेकिन आजकल पता है कि हमारी जो घर की महिलाएं हैं वो इन सभी से अनदेखा है, और या तो फिर नेग्लेक्ट कर देती हैं कि चलो बाजार में है जामुन है, मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं खाऊंगी,
1: क्योंकि आजकल हम जो है ना एलोपैथी मेडिसिन पे ज्यादा डिपेंड
0: करते हैं। हाँ, और साथ ही साथ देखना, पहले के घरों में अगर तुमने देखा होगा तो हर घर में धूप में एक एक बॉटल अलग अलग रंग के अंगूर है, जामुन है, इस सबके सिरका बनाए जाते थे, और ये सिरका रखा जाता था सालों साल धूप में, वो बॉटल में बंद है। जब भी पेट की कोई परेशानी हुई, मतली हुई, पेट में दर्द हुआ या कोई भी परेशानी हुई, तरह तरह के सिरके बनाए जाते थे, हमारे घर में भी बनते थे।
1: और
0: पता है जब अंगूर बहुत ज्यादा मिलते थे, सस्ते हो जाते, तो उसको घर में लाकर उसे मैश करके उसका रस निकाल के बॉटल में भर के धूप में टांग दिया, वो हर दिन पक रहे हैं, और पकते पकते और वो जितने पुराने होते थे उसका स्वाद भी वही और उसके गुण भी बढ़ते थे।
1: और इसको पीने से कहते हैं ना, पेट की काफी बीमारियों में आराम मिलता है। और जामुन के साथ साथ अनानास भी जो है पेट की कई बीमारियों में हमें
0: कहते हैं ना कि
1: दूर करता है।
0: बिल्कुल, और अब पता है तुम्हें कि जामुन और अनानास सिर्फ बारिश में ही मिलते हैं।
1: हाँ,
0: और लेकिन आजकल ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हर फल सालों भर मिलते हैं, तो ऐसा हम कह भी नहीं सकते हैं कि ये बारिश में मिलते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि जब बारिश होती थी तो हमारी दादी बोलती थी कि देखो जामुन सभी लोग अच्छी तरह से खाएंगे, आम सभी लोग खाएंगे, और पहले ना केंद, बड़हर, बहुत सारे ऐसे फल होते थे।
1: पहले देखा जाता था कि फल सीजनली मिलते थे, बारह महीने मिल रहे,
0: सालों भर मिलते हैं, तो उसका फिर वो गुण भी नहीं होता है उसमें। और अनानास को इसलिए खाया जाता था कि पेट में जितने भी कचरे हैं वो साफ होंगे, कीड़े हैं वो निकल जाएंगे,
1: और
0: लीवर को स्वस्थ रखता है।
1: अगर आपका कभी
0: खा लिया गया है
1: तो जामुन बहुत फायदा करता है।
0: हाँ, और अनानास से भी वो निकल जाते हैं, इसलिए जामुन को खाना बहुत जरूरी। तो ये सभी बातें हमने आयुर्वेद आचार्य जो है वो लिख गए हमारे आयुर्वेद में, और उनसे एक एक बात बाहर निकलती है। और अगर तुम इसे सुनना चाहोगी तभी लोग इसे बताना चाहते हैं, और या फिर अगर कोई परेशानी किसी को है तब ये इसे सुनना चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: दोनों ही बातें होती हैं ना।
1: हाँ हाँ। तो कहने का मतलब है कि हमें बारिश के दिनों में ऐसे फल, मतलब जो फल मिलते हैं उनको जरूर,
0: बारिश के दिनों में ही नहीं आभा, अगर जो भी मौसम, जैसे गर्मी में संतरे बहुत मिलते हैं, अंगूर मिलते हैं, और जितने भी फल उस समय, अभी जैसे आंवला मिल रहा है अभी कुछ दिन के बाद से आंवला, लेकिन आजकल सालों भर मिलते हैं, पहले तो नवंबर दिसंबर मार्च तक ही मिलते थे। तो आंवला को भी आप कई तरह से यूज करें, अगर डेली, अगर आजकल तो हमेशा मिलते हैं, तो उसकी चटनी बनाकर आप रोज खाएं तो विटामिन सी की कमी नहीं होगी, बाल अच्छे होंगे,
1: आंवले का मुरब्बा भी खा सकते हैं,
0: तो उसे मुरब्बा बनाकर रखें या अचार बनाकर रखें। और बस किसी तरह से हमारा ये कहना है कि हम सभी महिलाएं अगर अपने बच्चों को बचपन से ही सभी चीजों को जो बाजार में मौसमी मिलते हैं या फिर अच्छे सेहत के लिए जो मिलते हैं उसको हमेशा उपयोग में लाने की आदत डाल दे, ताकि वो काम से बचे ना कि बस मैगी बनाकर दे दिया और हल्का नाश्ता।
1: आदत डालेंगे तो बच्चे जरूर खाएंगे।
0: जरूर खाएंगे, तो उन्हें साग और जितनी तरह की जो सब्जियां हैं इसे खिलाने की आदत डालें, ताकि आज के जो बाजार के दो मिनट में पकने वाले जो भोजन है उससे बचे तो वो स्वस्थ रहेंगे। जो मोटापा आजकल देखने को मिल रहा है उससे भी लोग बचे रहेंगे। महिलाओं को बहुत सारी बीमारियां हैं, आंखों की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, जो पहले बड़ों को होती थी, बुजुर्गों को होती थी,
1: अभी
0: वो आजकल कम उम्र में भी देखने को मिल रही। तो इसका सबसे बड़ा कारण है भोजन। अगर संतुलित
1: खान-पान बिगड़ा हुआ है,
0: अगर संतुलित भोजन हम शुरू से करें, और हम खास करके इसके लिए बहुत जिम्मेदार होती है घर की महिलाएं,
1: क्योंकि
0: मैं खुद महिला हूँ, इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ।
1: और महिलाएं किचन
0: संभालती हैं, तो जब मेन जो रास्ता है शरीर को स्वस्थ होने का, अगर वो हमारे हाथ से गुजरता है, तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है कि बच्चों को, बुजुर्गों को और खुद किस तरह से खाएं, ताकि हम सभी स्वस्थ रहें और डॉक्टर से दूर रहें, है ना।
1: और कहते हैं ना, मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ,
0: एकदम।
1: और मन स्वस्थ रखने का एक जो है मजबूत जरिया मुझे लगता है संगीत है।
0: बिल्कुल,
1: है
0: बहुत ही अच्छी बात तुमने कही है। जब संगीत की बात की हो तो मैं एक प्यारा सा संगीत जरूर सुनवाना चाहूंगी। हाँ।

0: देखो, मन जब खुश होता है ना तो बहुत जगह हम घूमने के लिए बस ढूंढने लगते हैं कि हम अपने आसपास कहाँ घूमने के लिए जाएं। और घूमने के लिए कहाँ जाना है ये बताओ।
1: बिल्कुल, मेरा मन तो किसी भी मौसम में घूमने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है ना कि अभी थोड़ा जो, जैसे कि हम लोग बात किए कि चतुर्मास है ना, तो बिल्कुल भक्ति वाला मतलब जो
0: महीना होता है,
1: महीना होता है,
0: तो
1: चलते हैं किसी मंदिर ही घूमते हैं, है ना।
0: बिल्कुल। और तो, मंदिर में घूमने के लिए कहाँ जाना है, बहुत सारे हमारे रांची में तो मंदिर है।
1: तो रांची से नजदीक ही है हमारा बेड़ो लापुंग की ओर, दोनों प्रखंड की प्रकृति की खूबसूरत वादियाँ जैसे कि पहाड़ और जंगलों से भरे जो है इस मौसम में मन को लुभाएंगे, और इसका जो है यहाँ का मनोरम दृश्य, डैम, नदी और मंदिर सभी कुछ है जहाँ आप घूम सकते हैं, है ना। और बेड़ो प्रखंड जो है मुख्यालय से थोड़ी ही दूरी पर कराजी डैम श्याम टोली गांव में जल पुरुष सिमोन बाबा का बांध और पारस डैम का वहां पे जो जोड़ता है, वहीं लापुंग प्रखंड में घघारी जलप्रपात और बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर घघारी बाबा धाम मंदिर है।
0: और वहीं पर साईं ग्राम मंदिर भी है जहां पर साईं बाबा का जो मंदिर है वो सरसा लतरातू डैम के दोनों ही प्रखंडों में सबसे अच्छी जगह है। रांची से लगभग 50 किलोमीटर दूर है ये जगह, पर्यटन और श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर में पूजा अर्चना के साथ पिकनिक मनाने के, प्रकृति के आनंद उठाने के लिए लोग वहां जाते हैं, और हमें तो ये जगह बहुत पसंद है। तो चलो एक प्यारा सा भक्ति गीत सुनते हैं, क्योंकि वहां पर जो घघारी धाम है जो बहुत अच्छा, बहुत पुराना है, और पहाड़ में चढ़ो, नदी पार करके जाओ तो इतना अच्छा लगता है ना वो जगह। तो इस समय पर बारिश के मौसम में ऊपर ऊपर अब रास्ता बन गया है, पहले तो
1: जैसे कि हम लोग बताए कि शिव मंदिर है जैसे कि, तो अभी सावन
0: तो
1: का
0: फिर
1: महीना
0: सावन
1: है, तो
0: सावन शुरू होने वाला है, तो एकदम जरूर जाना है। और उसके पहले हम उन्हें भक्तिमय शिव के रूप में जरूर करवाते हैं कि चलो शिव वंदना सुन लेते हैं।

0: आभा इतने अच्छे गीत के साथ मन तो एकदम भक्तिमय हो गया था, लेकिन क्या करूं, समय की बहुत कमी हो जाती है ना कुछ बोलते बोलते। फिर भी अगले प्रोग्राम में हम अपने श्रोताओं से जरूर मिलेंगे, और बस चलते चलते यही कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करें,
1: क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है, और ये जो है हमें हर मुश्किल से निकालने का एक अच्छा उपाय देता है।
0: और इसी के साथ दीजिए हमें उषा को यानी और
1: आभा को
0: इजाजत।
1: नमस्कार, जोहार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। और अब चलिए, अगला कार्यक्रम है आपके लिए आपकी पसंद। हमारे सभी श्रोताओं की फरमाइशी चिट्ठियां हमारे पास हैं, तो चलिए आपकी पसंद का एक प्यारा सा गीत हम आपको सुनवाते हैं। इसे हमने लिया है आराधना फिल्म से और आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

आराधना फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे, और इस गीत को सुनने वाले हमारे श्रोता थे रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरेंगी से भारत भागवत वर्मा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से थे मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। अब आइए आपकी पसंद पर अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, धरती कहे पुकार के फिल्म का ये गीत है, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। इस गीत को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। आप सभी हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर, राही सरिता गम्हाणकर, सिद्धांत गम्हाणकर, प्रिंस एकांश, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित और कुमारी ध्वनि गम्हाणकर। आप सभी श्रोता हैं इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह और परवीन आसमा, बुलंदशहर से बदरुवली, फर्जुवली और फर्जीवली अंसारी। लीजिए अपनी पसंद का ये गीत सुनिए।

0: श्रोताओं, आपकी पसंद का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं और इसी बीच में हम लेते हैं छोटा सा विराम, उसके बाद आपकी फरमाइश हम पुनः सुनवाएंगे।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Medicina!
1: श्रोताओं, इस विराम के बाद आइए आप सभी का फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी पसंद में। अपने फरमाइशी गीत का ये अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इसे हमने लिया है हम शक्ल फिल्म से। इसे सुनना चाहते हैं बड़ा बाबू गांव सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा प्रधान, प्रकाश तांती, श्यामदेव नायक, ललित प्रधान, चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती बनमाली बेसरा, सिद्धू कुमारी, आप सभी हैं जातू का, किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज, पथरिया से हैं नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोणामिका और उत्कर्ष नेताम। लीजिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा नगमा सुनिए।

आपके पसंद कार्यक्रम में अगला गीत आप सभी के फरमाइश पर आपने सुनना चाहा है जीने की राह फिल्म का ये प्यारा सा नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। सुनने का ख्वाहिशमंद है पटना बिहार से अंजुलिका कुमार, जितेंद्र कुमार, सुमन कुमार, सौरभ, आकाश, आयुष, सुरभि, श्रेया और सभी लाल परिवार। बड़ोदरा गुजरात से मौलिक पाटिल और उनके मम्मी पापा ने सुनना चाहा है इसी गीत को। इंदौर से प्रांजलि त्रिशा और उनके पापा, बेंगलोर से श्रेयाश्री, सुनीता और उनके सभी साथीगण, चेपाकला बड़का गांव से श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती साबिया ठाकुर, तिलेश्वरी श्री भरत ठाकुर, मंजू संतोष, विकास कुमार, प्रभात कुमार, जीतेश, आदर्श, अनुराधा रुक्मिणी और प्रियंका दीपिका। आप सबों ने सुनना चाहा है अपनी पसंद का ये गीत, तो आइए सुनते हैं।

इस कार्यक्रम में आखिरी गीत आप ही की पसंद का सुनने वाले हमारे श्रोता हैं औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय ने सुनना चाहा है ये प्यारा सा गीत आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है एक फूल दो माली।

श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है और अब आइए सुनते हैं महिलाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आज गृहलक्ष्मी के सूत्रधार होंगी शिल्पी सहाय।

शिल्पी हूँ मैं सपनों की मूरत, रचती हूँ हर दिन नई मूरत, रंगों से जीवन सजता जाए आंगन मेरा लहलहाए।

0: शिल्पी का आंगन केवल घर नहीं है, शिल्पी का आंगन केवल घर नहीं है, उम्मीदों का सुंदर बसेरा है। यहाँ हुनर से मिलते पंख, हर मन में एक नया सवेरा है। सखियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में, और ससनेह नमस्कार आपको हमारा यानी कि हमारे कार्यक्रम शिल्पी के आंगन में। एक ऐसा आंगन जहां ज्ञान के दीप जलते हैं, संस्कारों की सुगंध आती है और प्रेरणा की नई किरणें भी जीवन हमारा रोशन करती है। सखियों, यह केवल आंगन नहीं, कार्यक्रम नहीं, बल्कि अपनेपन का वो आंगन है जहां हर उम्र के लिए कुछ न कुछ आज खास है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि हमारे आंगन में बच्चों की हंसी खुशी गूंजती है और महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की बातें भी होती है। हमारे आंगन में संस्कृति और त्योहारों की रौनक सजती है, महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रेरणा है, पर्यावरण संरक्षण का संदेश है, साथ साथ जीवन को बेहतर बनाने वाले छोटे छोटे लेकिन साथ में अनमोल विचार भी हैं आज। लेकिन अपने अनमोल विचारों को मैं आप तक साझा करूंगी और अपने आंगन की सैर कराऊंगी, उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: अंतराल के बाद पूरा स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में, और आज कार्यक्रम के सफर में मैं हूं आपकी रेडियो सखी शिल्पी, और आज आप हैं हमारे आंगन में। सखियों, कहते हैं ना कि घर की पहचान उसकी दीवारों से नहीं बल्कि उसके आंगन से होती है। आंगन वो जगह है जहां बच्चों की खिलखिलाहट से हमारा आंगन गूंजता है, और बच्चे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं वो जिन पर वट वृक्ष की छाया होती है। सुंदर संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। देखा जाए तो छोटा सा शब्द है घर, लेकिन इसी आंगन में हमारी जान बसती है। उम्र चाहे कोई भी हो, हमारा आंगन हमेशा गुलजार रहता है। सखियों, याद है ना आपको भी अपना बचपन का आंगन? मुझे तो याद है। हमारे आंगन में एक छोटी सी फुलवारी थी। दादी माँ मौसम के अनुसार चुनकर पौधे लाती थीं और उसे लगा देती थीं। उन फूलों को बड़े ही प्यार से सींचती थीं, और जब फूल खिलने लगे तो उसकी खुशबू से तर बतर हो उठता था हमारा आंगन और हमारा जीवन। वैसे ही मुझे एक और बात याद है कि हमारे ससुराल के आंगन में बीचों बीच आज भी दादी माँ के लगाए हुए तुलसी का चौरा है। वो पौधा एहसास दिलाता है उनके एहसास का। ऐसा लगता है कि मानो वो हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और हाँ, हर रोज उन फूलों पर तितली भौरे भी आते हैं। मुझे याद है हमारे आंगन के चबूतरे पर दादी माँ प्रतिदिन धूप सेकती और अम्मा भोजन की थाली वहीं परोसती थी। सखियों, कैसे भूला जा सकता है बचपन का वो अतुलित आनंद। इसलिए तो बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, और बार बार आती है मुझे ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की, जिसने लिखा था। और मैं ये भी आज दावे के साथ कह सकती हूँ कि शायद ही किसी का बचपन ऐसा बीता होगा जिसने इस कविता को बार बार दोहराया न होगा। सखियों, मुझे याद है अपना वो आंगन, जब सुबह सुबह आंगन की लिपाई गोबर से होती थी और हम बच्चों को मनाही होती कि गीले आंगन में जाने की, पर बाल मन कहाँ सुनने वाला, छुप छुप कर हम इधर से उधर भागते फिरते, ओह कहाँ गया वो आंगन। धूप चढ़ते ही चरपाई निकल जाती और अम्मा संग दादी घर के सारे अनाज को सुखा देती। हम बच्चों को भी आंगन में सूख रहे अनाजों की निगरानी की थी जिम्मेवारी, पर कहाँ एक जगह ठहरने वाले हम बच्चे, गौरैया संग हम भी तो आंख मिचौली करते। वो खुद को दर्पण में देख चोच मारती, अनाज की बोरियां को कुतरती, तो हम भी उसे देखकर खिलखिलाकर हंसते। सखियों, हमारे आंगन में त्योहारों की रौनक सजती थी। सचमुच आंगन केवल एक स्थान नहीं बल्कि भावनाओं का संसार है। उस बगिया में हमारा परिवार है।

सखियों, हमारे जीवन की दुशाला रिश्तों की डोरियों से बुनी होती है। हमारे जीवन में सभी रिश्तों की बड़ी अहमियत है, क्योंकि हमारी जिंदगी भी तो इन्हीं रिश्तों से चमकती है। हम वेणी बनाते हैं विश्वास की, वेणी गूंथ कर परिवार को स्नेह के सूत्र में भी बांधते हैं, चाहे वो मायके का आंगन हो या ससुराल का आंगन। बचपन में बाबुल की परी, थोड़ी बड़ी हुई तो उसी भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधी, जिसके संग खूब छुपन छुपाई खेली, तो कभी लूडो पर लड़ाई। फिर कुछ वर्षों बाद उसी आंगन से हो गई विदाई। नया घर, जब वो एक नए आंगन में कदम रखी, यह सिर्फ नया घर नहीं बल्कि नए रिश्तों और नए जिम्मेदारियों का एहसास भी था। आंगन के चरपाई पर अम्मा तो द्वारे पर बैठे ज्येष्ठ, पति पत्नी का भावनात्मक रिमझिम बारिश सा प्रेम, तो वहीं देवर संग खट्टी मीठी बातें, ननद के संग भी वैसे ही बातें, भरी दोपहरी लूडो में भी खेल, ये सब रिश्ते हमारे जीवन को चमकाते हैं। और आज भी जिहन में वो यादें इस तरह समाये बैठे हैं जैसे वो कल की ही बात हो। सबसे मजेदार बात है कि अब भले ही हमारे घर के आंगन में वो आंगन नहीं है, पर बने रिश्तों को हमने बखूबी निभाई और उस आंगन में अपनी खुशबू बिखेर दी। सखियों, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे ससुराल के आंगन में रेडियो से पहला गीत यही तो बजा था।

आंगन चाहे ससुराल का हो चाहे माँ का घर का आंगन, आज भी हमारे आंगन में बात होती है उम्मीदों की, हौसलों की, नई सोच की, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। सखियों, ये सच है कि हर महिला के अंतर मन में कुछ सपने होते हैं। कोई अपने हुनर को निखारना चाहती हैं, तो कई अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने परिवार को आर्थिक सहायता देकर उनका संबल भी बनना चाहती हैं। हमारे आंगन में बैठ महिलाएं इस बात का मंथन करती हैं कि कैसे आत्मनिर्भर बने। घर परिवार को संभालते हुए आज भी वो आजीविका चलाती हैं। अपने घर के आंगन में बैठकर एक दूसरे के भीतर छिपी प्रतिभा को जगाती हैं और एक दूसरे की प्रेरणा शक्ति बनती हैं। चाहे सिलाई हो, कढ़ाई हो या बुनाई, खेती या स्वयं सहायता समूह बनाकर संगठित होकर वो मसाला, आचार, पापड़, बिस्किट जैसे कार्यों को अपने आंगन में बनाकर बाजार यानी कि हाट तक ले जाती हैं और उन्हें बड़ा फक्र होता है जब वो अपने हाट में देखती हैं कि उनका खुद का नाम वहाँ लिखा होता है। सखियों, इतना ही नहीं, बरसात आने से पहले आंगन में सपने भी बुनती हैं, यानी सावन की पहली फुहार पड़ते ही मन के अंदर जो तस्वीर उभरती है वो है मायके का आंगन। और अब जरा सोचिए और मन के अंदर झांकिए कि ऐसा कैसा होगा आपका आंगन इस बरसात में।

सखियों, एक बात याद रखिए कि सबके घर आंगन में कठिनाइयां आती है एक न एक दिन, लेकिन वो हमें राह रोकने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। बस जरूरत है अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, हिम्मती बनिए और अपने आंगन में आशा का दीप जलाए रखिए। गौतम बुद्ध का कथन याद है ना, अपदीपो भवा, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनना है। अपने जीवन की कहानी की लेखिका भी आप हैं। परिवार रूपी बगिया के हर कोने कोने में उस नन्हे से पौधे को लगाइए, उस रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से तर बतर हो जाएगा आपका आंगन, वो उपवन जिसमें न जाने कितनी रंग बिरंगी तितलियां आएंगी और फूलों पर भौरे भी मंडराएंगे। मैंने आज आपको भी बचपन के आंगन की याद आई होगी, है ना? फिर से उड़ती तितलियों को पकड़ने की चाह भी जगी होगी, लेकिन तितली भला कहां फूल पर टिकने वाली, आखिर धीरे से वो अपने मन की बात कह दी फूलों से। खिले हैं गगन में तारों के जो फूल, खिले हैं गगन में तारों के जो फूल, वही मेरी मंजिल कैसे जाऊं भूल।

0: बहनों, बचपन की स्वप्निल यादें कुछ इस तरह दिल के कोने में समाये बैठी है आज भी। वो बीते कल थे हमारे आंगन की, बंद आंखों में हसीन स्वप्न जैसे थे। धुंधली सी मुस्कुराती है वो बीती बातें, जैसे पतझड़ के मौसम में सावन की रातें। समेट कर रखा है जिन्हें आज भी दिल के किसी कोने में, समेट कर रखा है आज भी जिसे दिल के किसी कोने में, सुकून आता है आज भी उन्हीं आंगन की बातों में। तो बहनों, अब वक्त है हमारे आंगन से निकलकर जरा बाहर की दुनिया की सैर करें, जहां बसते हैं सबके अपने सपने, उनको मिलती है पहचान। आंखों में पलते सपनों को जहां मिलते हैं पंख, यानी हुनर को एक मंच मिलता है। एक ऐसी ही जानकारी आपसे आज मैं साझा करूंगी, और वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। हमारे देश की पहचान केवल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से नहीं, बल्कि उन मेहनती हाथों से भी है जो अपनी कला और हुनर से समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कभी कुम्हार के चाक पर घूमती मिट्टी, कभी बढ़ई के औजार की खटखट, तो कभी सुनार, दर्जी, लोहार और बुनकर की बेमिसाल कारीगरी, ये सभी भारत की समृद्धि, परंपरा और संस्कृति की अनमोल धरोहर है। लेकिन समय के साथ आधुनिक तकनीक और बदलते बाजार के कारण इन पारंपरिक कारीगरों के समक्ष कई चुनौतियां खड़ी हो गई। इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए, उनके हुनर को नई पहचान देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की गई थी, जिसका उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों को आर्थिक, तकनीक और व्यवसायिक रूप से मजबूत बनाना, ताकि वे अपने व्यवसाय को आधुनिक संस्थानों के साथ आगे बढ़ सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। और आपको बता दूं कि आवेदक की न्यूनतम जो आयु होती है 18 वर्ष होनी चाहिए, और वे अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े होने चाहिए और कोई भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होने चाहिए। इस योजना के तहत पात्र कारीगरों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, कौशल प्रशिक्षण, टूल किट खरीदने के लिए 15,000 तक की सहायता तथा केवल 5% ब्याज पर 1,00,000 और बाद में 2,00,000 तक ऋण भी मिलता है। साथ ही डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन विपणन और उत्पादों की बेहतर बिक्री के लिए सहायता भी दी जाती है। तो सखियों, इसी के साथ और इस वादे के साथ आपसे आज विदा लेना चाहूंगी कि फिर होगी आपसे मुलाकात। और आज कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, और कार्यक्रम के सफर में आज आपकी रेडियो सखी मैं शिल्पी अब लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।
1: गृह लक्ष्मी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं शैक्षिक प्रसारण में वार्ता, पुस्तकालय में अनुशासन। वार्ताकार है रीना कुमारी सिन्हा, प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।
3: आज हम जिस विषय या टॉपिक को सुनेंगे वो विषय है पुस्तकालय में अनुशासन, डिसिप्लिन इन लाइब्रेरी। बच्चों, इसके साथ ही हम सुनेंगे अनुशासन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसकी आवश्यकता पुस्तकालय में और साथ ही हमारे जीवन में भी क्यों है। मैं जानती हूँ पुस्तकालय से आप सभी भली भांति परिचित हैं और पुस्तकालय का उपयोग भी करते होंगे, जैसा कि आज का हमारा विषय है पुस्तकालय में अनुशासन। अनुशासन या डिसिप्लिन से तात्पर्य उन नियमों और शिष्टाचार से है जिनका पालन करना हम सभी के लिए अनिवार्य है। अनुशासन शब्द अनु और शासन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नियमों के अधीन रहकर कार्य करना, या एक ऐसी जीवन शैली है जो किसी व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को सही दिशा निर्देश देती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं और शक्तियों को व्यवस्थित करके आत्मनियंत्रण सीखता है। अगर हम पुस्तकालय की शुरुआत की बात करें तो अन्य देशों की भांति भारत में भी पुस्तकालय की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है।

तो हम जान पाएंगे कि आधुनिक भारत में पुस्तकालय के विकास की गति धीमी रही। पुस्तकालय आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय नहीं था और न ही इस आंदोलन को कोई कानूनी सहायता प्राप्त थी। बच्चों, बड़ौदा राज का योगदान इस दिशा में प्रशंसनीय रहा। 1910 ईस्वी में यहाँ पुस्तकालय आंदोलन प्रारंभ किया गया और राज्य में एक पुस्तकालय विभाग खोला गया। मद्रास राज्य में सन 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ का अधिवेशन हुआ और अगले वर्ष मद्रास राज्य पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रयत्न से 1933 ईस्वी में लाइब्रेरी एक्ट विधानसभा के द्वारा पारित किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने 1931 ईस्वी में पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को बताया है, जिन्हें 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहते हैं। ये 5 सूत्र आज भी दुनिया की प्रत्येक लाइब्रेरी की नींव है। बच्चों, अब हम सुनेंगे कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को सभी पुस्तकालय की नींव क्यों कहा गया है, इसका उद्देश्य और इसकी महत्व क्या है और क्यों है। आइए अब हम सुनेंगे पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। पहला नियम है, पुस्तकें उपयोग के लिए है, बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा नियम है, हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले, एवरी रीडर हिज और हर बुक्स। तीसरा नियम है, हर पुस्तक को उसका पाठक मिले, एवरी बुक्स इट्स रीडर। चौथा नियम है, पाठक का समय बचाएं, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। पांचवा और आखिरी नियम है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ए लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा दिए गए पहले नियम यानी पुस्तकें उपयोग के लिए है का अर्थ है, प्रत्येक पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम हो, मतलब पाठक खुद सेल्फ से किताब ले सके और किताबें इशू रिटर्न की प्रक्रिया आसान हो। दूसरा नियम है, पाठक को उसकी पुस्तक मिले, एवरी रीडर हिज और हर बुक्स। कहने का अर्थ है कि हमारे समाज में प्रत्येक पाठक की मना स्थिति अलग अलग होती है, उनकी जरूरतें अलग अलग हैं। लाइब्रेरी में सभी पाठकों की रुचि के अनुसार किताबें, साहित्य, समाचार पत्र पत्रिका, धार्मिक पुस्तकें और कुछ रोमांचित किताबें होनी चाहिए। इस नियम का एम है कि कोई भी पाठक खाली हाथ ना जाए। तीसरा नियम है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, एवरी बुक्स इट्स रीडर। आइए पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे नियम को सुनते हैं। प्रत्येक किताब किसी न किसी पाठक के काम की होती है। नई पुस्तकों का डिस्प्ले लगाना, बुक एग्जीबिशन लगाना, बुक रिव्यू, बुक क्लासिफिकेशन, बुक कैटलॉगिंग के जरिए हम प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक से मिला सकते हैं। सचमुच इस लॉ का उद्देश्य है किताबों का 100% उपयोग हो, कोई भी किताब सिर्फ धूल न खाती रहे। चौथा नियम है, पाठक का समय बचाए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। बच्चों, इस नियम का अर्थ है पाठक लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं, समय की बर्बादी करने नहीं आते। अतः यह एक लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी है कि पुस्तकें सही क्रम से या विषयवार व्यवस्थित रहे ताकि पाठकों को आसानी से पुस्तकें मिल सके। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम का पालन हो, यानी पुस्तकालय पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो, इंटरनेट की व्यवस्था हो, बुक इशू रिटर्न फास्ट और इजली हो सके। इस लॉ का उद्देश्य फास्ट सर्विस देना है। पांचवा नियम है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ये लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं कि पुस्तकालय स्थिर या सीमित नहीं रह सकती, उसे बढ़ना ही है। लाइब्रेरी में रोज नई किताबें आती रहती है, नए सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। लाइब्रेरी वर्क बढ़ने पर स्टाफ की संख्या भी बढ़ सकती है। वर्धनशील संस्था का अर्थ है बिल्डिंग तथा सर्विस की सुविधा समय के साथ बदलती रहे। अगर हम देखें तो आज सभी डिजिटल लाइब्रेरी, ई बुक्स आदि सब और इसी 5 लॉज पर चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि पुस्तकालय ज्ञान का मंदिर है, जहां हर किताब एक गुरु है। यहां शांति और व्यवस्था जरूरी है, तभी हम सब पढ़ लिख सकते हैं। अनुशासन या डिसिप्लिन हमारे जीवन में एक ऐसी आदत है जो हमें धीरे धीरे बेहतर बनाती है। चाहे पढ़ाई हो, खेल हो या रोजमर्रा की छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ, हर जगह हमें अनुशासन की जरूरत महसूस होती है। बच्चों, पुस्तकालय में अनुशासन से तात्पर्य शांति और व्यवस्था बनाए रखने से है। पुस्तकालय में अनुशासन का उल्लंघन करने से पुस्तकालय के शांत वातावरण में व्यवधान उत्पन्न होता है। किसी भी शिक्षण संस्थान का संचालन अनुशासन पर ही निर्भर करता है। अगर आप देखें और महसूस करें
तो आप पाते हैं कि अनुशासन से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, संयम, नेतृत्व के गुण विकसित

0: होते हैं और समाज में शांति तथा न्याय बनाए रखने में सहायता होती है। पुस्तकालय में अध्ययन का अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। ये बात याद रखें कि पुस्तकालय में हम किताबों से नहीं अपने आचरण से पहचाने जाते हैं। पुस्तकालय विद्यार्थियों के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए ज्ञान का मुख्य केंद्र है। पुस्तकालय का उपयोग करने से बच्चे और सभी छात्र छात्राओं में अध्ययन की आदत, एकाग्रता और अनुसंधान कौशल के गुण विकसित होते हैं। अब हम पुस्तकालय में अनुशासन के सामान्य नियमों को सुनेंगे, तो आइए सुनते हैं पुस्तकालय के सामान्य नियम। पुस्तकालय अनुशासन में सर्वप्रथम यह है कि पुस्तकालय में शांति बनाए रखें। अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखें। पुस्तकालय में किसी भी प्रकार का नशापान न करें। पुस्तकालय अनुशासन में प्रवेश प्रक्रिया जरूरी है। जब आप पुस्तकालय में प्रवेश करें तो प्रवेश करते समय रजिस्टर में हस्ताक्षर करें और अपना सामान निर्धारित स्थान पर रखें। पुस्तकालय अनुशासन में सफाई और व्यवस्था यानी स्वच्छ और शांत वातावरण का अपना एक अलग महत्व है। अगर नियम हो तो जूते चप्पल बाहर उतार कर ही अंदर जाएं। पानी की बोतल भी अंदर ना ले जाएं। कचरा डस्टबिन में ही डालें। किताबें पढ़कर निर्धारित स्थान पर ही रखें। पुस्तकालय अनुशासन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि किताबें सुरक्षित रहें। यह दायित्व पुस्तकालय में आने वाले पाठक और लाइब्रेरियन दोनों पर होती है। पुस्तकालय अनुशासन में यह बहुत जरूरी है कि पुस्तकालय में उपस्थित कर्मचारी छात्र छात्राओं का सम्मान करें, पढ़ने की टेबल पर कब्जा ना करें, लाइन में लगकर ही किताबें जमा करें आदि। लेकिन आप सभी इस बात को हमेशा याद रखें कि अगर हम लाइब्रेरी रूल्स एंड डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए हमें दंडित भी किया जा सकता है, क्योंकि लाइब्रेरी सबकी साझा जगह यानी कॉमन प्लेस होती है। बच्चों, आप सभी को ये बात समझना होगा कि कॉमन प्लेस वो होती है जहाँ सभी लोगों का उद्देश्य समान हो। पुस्तकालय में बिना किसी दबाव के आपको अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिलता है, जिससे आप में आजीवन सीखने की लाइफ लॉन्ग लर्निंग की ललक पैदा होती है। इस आजीवन सीखने के गुण से आपके एकेडमिक रिजल्ट्स में सुधार होता है। पुस्तकालय में कहानी, साहित्य, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, रोमांचकारी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें आदि पढ़कर हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। मेरे प्रिय श्रोतागण, अगर हम आज के विषय पुस्तकालय में अनुशासन के निष्कर्ष की बात करें तो हम पाते हैं कि एक अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय शिक्षा प्रणाली की रीढ़ है, जो छात्रों को अपने जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करती है। पुस्तकालय में एक ऐसा शांत वातावरण मिलता है जहां सभी आयु वर्ग के पाठक बिना किसी बाधा के ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा आधुनिक युग में डिजिटल लाइब्रेरी का भी प्रचलन बढ़ा है, जहां इंटरनेट और ई बुक्स के माध्यम से हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम पुस्तकालय के इन नियमों का पालन करें और अनुशासित रहकर अध्ययन करें तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा 1928 में दिए गए 5 सूत्र यानी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस भली भांति पूर्ण रूप से सिद्ध हो सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा है, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है।
1: श्रोताओं, अभी आप एक वार्ता सुन रहे थे शैक्षिक प्रसारण कार्यक्रम में पुस्तकालय में अनुशासन। वार्ताकार थी रीना कुमारी सिन्हा और प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी। और आकाशवाणी का ये प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। अगला कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सबसे पहले सुनिए धूल का फूल। इस फिल्म का ये प्यारा सा नगमा लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं एन दत्ता।

0: इस कार्यक्रम में यह आखिरी गीत आई हम आपको सुनवाते हैं आनंद फिल्म से। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं सलिल चौधरी, आवाज मुकेश की।
1: मैंने

मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके कार्यक्रम से प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ही देर में देवघर में श्रावणी मेला की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने संपूर्ण मेला क्षेत्र का किया स्थलीय निरीक्षण। राज्य में सहकारिता के विस्तार को लेकर मुख्य सचिव की बैठक। पैक्स कम्प्यूटरीकरण और अन्न भंडारण योजना सहित 15 एजेंडों पर लगी मुहर। राज्य में अब तक 17,56,000 अयोग्य और 2,00,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर्स की हुई पहचान। सीईओ ने कहा, सूची को 100% त्रुटिहीन बनाने के लिए आयोग प्रतिबद्ध। सरायकेला खरसावा निवासी आशीष कुमार दास अग्रणी आईटी कंपनी इन्फोसिस के अगले सीईओ नियुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। और मौसम विभाग ने राज्य में मॉनसून की रफ्तार तेज होने का जताया अनुमान। आज रांची, जमशेदपुर और बोकारो समेत कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सभी संबंधित विभागों के स्टेक होल्डर्स और जिला प्रशासन के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसी सिलसिले में राज्य के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आज सुबह ही संपूर्ण मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में राज्य सहकारी विकास समिति की चौथी बैठक में पैक्स के कम्प्यूटरीकरण, विकेंद्रीकरण

0: कृत अन्न भंडारण और 240 MPCS में डिपॉजिट मोबाइलाइजेशन योजना सहित कुल 15 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने इन विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध अनुपालन के निर्देश दिए। राज्य में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SIR के अंतिम चरण के तहत निर्वाचन आयोग ने राज्य भर से कुल 17,56,000 अयोग्य मतदाताओं की पहचान की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में 2,00,000 से अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं की भी पहचान हुई है। उन्होंने कहा कि सूची को 100% त्रुटिहीन बनाने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है।
1: कोई 3 कैटेगरी में आएंगे, वो वोटर एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं तो एक जगह का अधिक जगह पर रखा है, नहीं तो इनक्वालिफाइड होता है, इनएलिजिबल पर्सन, एक से अधिक जगह पर है। तो आप स्टेट में भी हो सकते हैं, विद इन द स्टेट में भी, बाहर में भी हो सकते हैं। अभी वर्तमान में 2,21,000 आया है, उससे वो कम्प्लीट एंट्री होने के बाद वो डेटा फाइनल होगा।
0: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से JPSC के निवर्तमान अध्यक्ष एल खयांगते की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि CID द्वारा परीक्षा एजेंसी के 8 कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद अब आयोग के शीर्ष अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई होनी चाहिए।
2: चेयरमैन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये हमें समझ में नहीं आता। JMM गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी भी रहे थे JMM सरकार में और तुरंत वो चेयरमैन भी बन गए JPSC के, कि उन्होंने अकेले रिजल्ट पे साइन किया था, 3 सदस्यों ने डिसेंट करते हुए नहीं किया था। और श्वेता गुप्ता असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है साहब, उनका तो मई में तबादला हो गया था, खियांगते जी ने उनको रिलीव नहीं किया था, तो कॉन्स्पिरेसी एंगल में तो सीधे वो दोषी है। छापेमारी से कुछ नहीं होगा मुख्यमंत्री जी, इनकी गिरफ्तारी कीजिए।
0: सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर अंतर्गत कृष्णापुर गांव के रहने वाले आशीष कुमार दास को देश की अग्रणी IT कंपनी इन्फोसिस का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो 1 अप्रैल 2027 से 5 वर्षों के लिए यह कार्यभार संभालेंगे। उनके इस ऐतिहासिक वैश्विक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई देते हुए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में उनके साथ हुई मुलाकात को याद किया, जहां झारखंड के खनन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग और युवाओं के तकनीकी कौशल विकास पर सार्थक चर्चा हुई थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावा के चांडिल डैम विस्थापितों के पुनर्वास और मुआवजे को लेकर आदित्यपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने परियोजना प्रशासक राजीव रंजन को 19 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी होने तक चांडिल डैम के जल स्तर को RL 180 मीटर तक ही सीमित रखने और प्रभावित युवाओं को रोजगार देने की पुरजोर मांग की।
3: विस्थापित पुनर्वास का कार्ड नहीं बन रहा है, उसके लिए भी कैंप लगा के विस्थापितों को कार्ड दिया जाए। अभी बरसात में हर गांव पानी घुस जाता है, इसी तरह के विस्थापितों को समस्या है, वो जल्दी से जल्दी उसका समाधान किया जाएगा।
0: इस दौरान निर्णय लिया गया कि लंबित मुआवजा मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। घूरती रथ यात्रा के अवसर पर आज 9 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी बाड़ी से मुख्य मंदिर लौटेंगे। रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में इस पावन अनुष्ठान को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। वहीं शाम को होने वाली इस वापसी यात्रा और भव्य मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। राज्य में इस वर्ष अल नीनो का प्रभाव बेअस

0: पर साबित हुआ है और जुलाई महीने में हुई अच्छी बारिश ने राज्य में कृषि और मौसम की स्थिति को बदल दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में मानसून के रफ्तार पकड़ने से राज्य में बारिश की कमी का ग्राफ तेजी से गिरा है, जिससे सुखाड़ की आशंका कम हुई है और किसानों ने खेतों में धान की रोपनी तेज कर दी है।
1: विचलन है, डिपार्चर है -27% अभी चल रहा है। कुछ जिलों को

राज्य में सहकारिता के विस्तार को लेकर मुख्य सचिव की बैठक, पैक्स कंप्यूटरीकरण और अन्न भंडारण योजना सहित 15 एजेंडों पर लगी मुहर। राज्य में अब तक 17,56,000 अयोग्य और 2,00,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर्स की हुई पहचान। सीईओ ने कहा, सूची को शत प्रतिशत त्रुटिहीन बनाने के लिए आयोग प्रतिबद्ध। सरायकेला खरसावा निवासी आशीष कुमार दास अग्रणी आईटी कंपनी इन्फोसिस के अगले सीईओ नियुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। और मौसम विभाग ने राज्य में मॉनसून की रफ्तार तेज होने का जताया अनुमान। आज रांची, जमशेदपुर और बोकारो समेत कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं अब आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी कार्यक्रम में। आज की कलाकार हैं शोभा गुरुटू, इनसे आप सुनेंगे मिस्र खमाज में ठुमरी और दादरा। सारंगी पर संगत कर रहे हैं ध्रुव ज्योति घोष, तबले पर अनीश प्रधान और हारमोनियम पर पी वालवलकर।

मनोरंजनी कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रीमती शोभा गुरटू से। अभी आप सुन रहे थे ठुमरू ठुमरी, और अब आइए सुनते हैं दादरा। इसके बाद पुनः आप सुनेंगे ठुमरी मिस्र भैरवी में। तबले पर संगत दे रहे हैं अनीश प्रधान, सारंगी पर ध्रुव ज्योति घोष और हारमोनियम पर पी वलवलकर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुरंजनी कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनते हैं ये गजल।

0: आप सुन रहे थे सुगम संगीत में आशा भोसले की आवाज में ये गजल, और अब आइए ये संदेश सुनते हैं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। एंड स्टॉप।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।
5: yes.

0: areas of Daman, Dadra and Nagar Haveli and South Gujarat through 11 rescue operations conducted since the midnight of 22nd of this month. Meanwhile, the India Meteorological Department has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Gujarat today. Similar weather conditions are likely to prevail over Konkan and Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and Rajasthan. For Delhi, the weather agency has forecast heavy rainfall for the day. In Jammu and Kashmir, the annual Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra resumed today after remaining suspended for 6 days due to inclement weather conditions. Talking to Akashwani News Divisional Commissioner Kashmir, Anshul Garg said Amarnath Yatra has been resumed from both Baltal and Pahalgam routes. A fresh batch of over 6,200 pilgrims left the Bhagwati Nagar Yatri Nivas in Jammu this morning. Meanwhile, authorities continue to monitor the situation closely to ensure the safety and smooth conduct of both Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra. In Sikkim, two persons fear dead to landslide at Famtham village in Namchi district today. Official sources said two injured persons has been admitted at the hospital for treatment. Further details are awaited. The government will hold third round of discussions with the CJP delegation in New Delhi this afternoon. The talks will focus on CJP's demands for reforms in the examination system and measures to prevent examination paper leaks. The meeting is scheduled to take place at 3:30 p.m. at the Constitution Club. Yesterday, Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said, during the meeting they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system.
1: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
0: Yesterday, the Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency, NTA, has terminated 47 officials from service. The Madhya Pradesh High Court has designated 4 special fast-track courts to hear examination paper leak and related malpractice cases, directing them to complete trials within 3 months of the filing of charge sheets. Acting Chief Justice Vivek Rusia designated district and additional sessions courts in Bhopal, Indore, Gwalior and Jabalpur as special courts under the Lok Pariksha Anuchit Sadhano Ka Nivaran Adhiniyam 2024 and related provisions of the Bharatiya Nyay Sanhita. Delhi police has said that it is continuously monitoring social media handles amid the ongoing protest over the NEET UG paper leak issue. Briefing media in New Delhi today, DCP Central Rohit Rajbir Singh said that Delhi police is sharing every information on fake news, AI and deepfake videos, edited clips and misleading posts through its social media handles. DCP Central Delhi also informed that in line with the government's commitment to combat paper leaks and irregularities in various competitive exams, the Delhi police has formed a special task force within the crime branch. Leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, in a press conference in New Delhi today, demanded the removal of Education Minister Dharmendra Pradhan from the cabinet. The Congress leader also demanded that those allegedly responsible for the assault on students during the protest should be held accountable. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has strongly condemned the alleged attack on journalists during a rally organized by several left organizations at Central Kolkata yesterday in protest against the NEET question leak. He said those responsible would face strict action. Making a statement in the State Assembly today, the Chief Minister said 7 cases have already been registered in connection with the incident and around 70 people have been identified. He said the accused have been booked under the state's newly enforced law. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. In Ladakh, two-day commemorative events marking the 27th Kargil Vijay Devas began today at Dras. Kargil Vijay Devas is celebrated on the 26th of July every year to mark the nation's victory over Pakistan in Operation Vijay during the 1999 Kargil War. The Yudh Sansmaran program was held at Lamuchin Viewpoint. The celebrations will continue today with Vijay Bhoj and the Shaurya Sandhya ceremony. More from our correspondent.
2: The Kargil War Memorial at Dras is wearing a festive yet solemn look as preparations for the 27th Kargil Vijay Diwas celebration have been completed. The two-day commemorative event begins today, while tomorrow, Honorable Raksha Mantri Rajnath Singh will lead the nation in paying homage to the martyrs of Operation Vijay. The celebration stands as a tribute to the unmatched valor, courage and supreme sacrifice of the Indian Armed Force during the 1999 Kargil War. For Akashwani News, Zanad Ali from Kargil.
0: Vice President C.P. Radhakrishnan today stressed that every day, every hour, every minute and every second spent in the House should be used to strengthen democracy. Mr. Radhakrishnan was addressing the inaugural ceremony of the two-day orientation cum training program for the newly elected and nominated members of the Rajya Sabha in New Delhi.
3: I always say in the House, debates, discussions and even disruptions, it must be always lead to a finer decision. Without decision, no country can move forward. Without decision, no government can function. So decision is required. If we delay also, the right decision also becomes sometimes wrong decision, or that becomes no decision. This is where we need to have knowledge of the rules and procedures of the House towards contributing effectively through debates.
0: Lok Sabha Speaker Om Birla today paid floral tributes to former Lok Sabha Speaker Somnath Chatterjee on his birth anniversary. On the occasion, members of Parliament, former members of Parliament and other dignitaries also paid floral tributes to Somnath Chatterjee. Prime Minister Narendra Modi will interact with the participants of Viksit Vibrant Village Programme 2026 tomorrow through video conferencing. Over 400 youth participants representing every state and union territory will interact with the Prime Minister. The sacred city of Puri in Odisha is set to witness one of the most magnificent rituals of the annual Rath Yatra this evening, as Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra will be adorned in the resplendent Suna Besha or golden attire. Lakhs of devotees from the country and abroad are expected to gather along the Grand Road to witness this magnificent spiritual spectacle. We have a report.
4: The holy city of Puri is immersed in an atmosphere of profound devotion and festivity as the revered Suna Besa or the golden attire of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will be ceremonially observed this evening atop their majestic chariots stationed on the Grand Road. During this time-honored ritual, the Shivling deities will be adorned with around 208 kilograms of traditional ornaments comprising gold and other precious materials, symbolizing divine majesty, prosperity and universal benevolence. Elaborate security arrangements and extensive pilgrim facilitation measures have been put in place to ensure the smooth conduct of the occasion, which is expected to draw millions of devotees from across India and abroad. Prakash Das for Akashwani News.
0: Dev Shayani Ashadhi Ekadashi, one of the most sacred observances dedicated to Lord Vishnu, is being observed today. Prime Minister Narendra Modi extended his greetings to the citizens on the sacred occasion. On to sports. In men's cricket, India will take on hosts Zimbabwe in the second T20 international of this three-match series at Harare today. The match will begin at 4:30 p.m. in the afternoon. The visitors took 1-0 lead in the game after a dominant 7-wicket win in the opening match on Thursday. In squash, India's Anahat Singh created history by reaching the women's singles final of the World Junior Championships after defeating Egypt's Barb Same 3-1 in the semi-final at Ontario in Canada. The 18-year-old became the second Indian player to enter the final of the prestigious junior tournament after veteran Joshna Chinnappa achieved the feat in 2005. Anahat will now face Egypt's Rukaiya Salem in the title clash at the same venue tonight. The match is expected to begin at around 10:30 p.m. Indian Standard Time. India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow last night after a para-athlete, Jhandu Kumar, clenched the bronze medal in the men's heavyweight para-powerlifting. Prime Minister Narendra Modi congratulated the para-athlete on the feat. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates four special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
6: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
7: सीआरपीएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
5: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के SSP ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
8: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
5: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
9: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया।
5: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
10: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: प्रस्तुत है मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम जय भारती। हमारे सभी फौजी भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आगाज करते हैं इस प्यारे से संदेश के साथ।
12: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: डट पड़े भारतीय सेना।
1: जी हाँ, हमारी भारतीय सेना शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान का प्रतीक। उनके अटूट साहस और देश की रक्षा के लिए जो हमारे फौजी भाई हैं, देश की सीमा में तैनात हैं, हर एक जवान के हौसला अफजाई के लिए हम हर पल उन्हें सलाम करते हैं।

हमारे फौजी भाई देश की रीढ़ हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना हर पल हमारी सुरक्षा में खड़े रहते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है एक नागरिक होने के नाते कि अपने सभी फौजी भाइयों के लिए हर पल खुशियां ही बटोरे, उनके लिए उन्हें ढेर सारा सम्मान और आशीर्वाद पूरे परिवार से मिले, ताकि उनकी भी सुरक्षा, उनके परिवारों की सुरक्षा हर पल हो।

0: हमारे जितने भी फौजी भाई हैं जो सीमा पर डटे हैं, वो अपने घर परिवार सभी को छोड़कर महीनों दूर रहते हैं और देश को ही अपना बड़ा परिवार मानते हैं। और फिर हर पल उनके आंखों में जो सपने होते हैं वो अपनों के होते हैं, और हम चाहेंगे वो जिसके सपने देखे वो उनका अपना हो।
1: जिस

हमारे फौजी भाइयों के परिवार के लिए हम जब भी उन्हें जरूरत पड़े समाज में आगे बढ़कर उनका साथ देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ताकि वो ही हमारे देश के रक्षक हैं।

और इसी प्यारे से संगीत के साथ आज का जय भारती कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। श्री प्रधान ने अपने एक्स हैंडल पर इस्तीफे की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं और भावनाओं का वे सम्मान करते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वह सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस फर्जी खबरों, एआई और डीप फेक वीडियो, एडिटेड क्लिप और भ्रामक पोस्ट से संबंधित हर जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर रही है।
1: सोशल मीडिया के इस प्रोटेस्ट संबंधित उपयोग में कई बार यह भी देखा गया है कि कई असत्य, भ्रामक एवं गुमराह करने वाले पोस्ट भी शेयर किए गए हैं। इसके चलते कानून व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। इसीलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले या उसे आगे शेयर करने से पहले उसका फैक्ट चेक करना बेहद जरूरी है। दिल्ली पुलिस भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखे हुई है।
0: राज्य में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसआईआर के अंतिम चरण के तहत निर्वाचन आयोग ने राज्य भर से कुल 17,56,000 अयोग्य मतदाताओं की पहचान की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में 2,00,000 से अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि सूची को शत प्रतिशत त्रुटिहीन बनाने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। खरसावा सरायकेला खरसावा जिले के राजनगर अंतर्गत कृष्णापुर गांव के रहने वाले आशीष कुमार दास को देश की अग्रणी आईटी कंपनी इंफोसिस का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो 1 अप्रैल 2027 से 5 वर्षों के लिए ये कार्यभार संभालेंगे। उनकी इस ऐतिहासिक वैश्विक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के सिंदरी अनुमंडल पुलिस कार्यालय में बोकारो रेंज के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने पुलिसिंग व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों और विभागीय जांच की प्रगति का जायजा लिया गया। आईजी ने अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन, अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तथा जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान का निर्देश दिया। उन्होंने संवेदनशील, जवाबदेह और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
2: जो कार्य होते हैं उसी का पार्ट है कि हमारे अंदर पूरे हमारे जोन में जितने भी प्रतिष्ठान हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठान है जिसके मैंने अग्रिम इंस्पेक्शन चार्ट बनाई हुई है उसके हिसाब से मैंने आज एसडीपीओ सिंदरी का इंस्पेक्शन रखा था, उसी क्रम में हमारा आगे।
0: झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आज देवघर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने यात्री सुविधाओं, सुरक्षा, साफ सफाई, यातायात और जलार्पण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय से समयबद्ध ढंग से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। घुरती रथ यात्रा के अवसर पर आज 9 दिनों बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी बाड़ी से मुख्य मंदिर लौटेंगे।

रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में इस पावन अनुष्ठान को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। वहीं शाम को होने वाली इस वापसी यात्रा और भव्य मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य में इस वर्ष अल नीनो का प्रभाव बेअसर साबित हुआ है और जुलाई महीने में हुई अच्छी बारिश ने राज्य में कृषि और मौसम की स्थिति को बदल दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में मॉनसून के रफ्तार पकड़ने से राज्य में बारिश की कमी दूर हुई है, जिससे सुखाड़ की आशंका कम हुई है और किसानों ने खेतों में धान की रोपनी तेज कर दी है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। लीजिए, सबसे पहले सुनिए आशा भोसले की आवाज में ये प्यारा सा नगमा, इसके पहले ये संदेश।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा, साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोली ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
0: आइए सुनते हैं दो बदन फिल्म का ये प्यारा सा नगमा आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायनी और संगीतकार हैं

साहब बीबी और गुलाम, लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायनी और संगीतकार हैं हेमंत कुमार।

0: ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आपके साथ मैं हूँ ममता चोपड़ा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, मतलब इतने आंकड़े उनके रिकॉर्ड्स के खड़े हो जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है वाकई कोई इतनी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। और हमारे देश की बेटियां इस तरह का काम कर भी रही हैं। आज हमारे साथ देश की ऐसी ही बेटी है जो लगभग 17-18 साल से हॉकी के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जैसे ही पदार्पण किया वहां से जो शुरुआत हुई, तो आज भी वे सफलतम हॉकी प्लेयर्स में गिनी जाती हैं और हम आप सब उन्हें जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, सविता पुनिया। तो आइए करते हैं मुलाकात सविता पुनिया से। सविता, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू।
2: जब मैं आपका डिटेल्स देख रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं आप, मतलब 17-18 साल से आप उसी पेस को बनाए रख पा रही हैं खेल के मैदान में। मुझे लगता है अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस तेज रफ्तार जिंदगी की, हाई पिच।
3: या मैम, डेफिनेटली। जब मैं सबसे पहले इंडिया टीम में आई थी तो मेरे कोच आजाद सिंह मलिक ने बात बोली थी कि इंडिया टीम में आना आसान है, बट उस जगह को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो चीज मेरे माइंड में थी हमेशा कि मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं एक एग्जांपल सेट करूं अपनी टीम के लिए, अपने सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता था उस टाइम पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया। और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूं क्योंकि आज फैमिली की सपोर्ट है तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूं कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो इट्स नॉट इजी।
2: हाँ, और इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही हैं, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में हैं। लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, आपने देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना, ड्रिबल करना शुरू किया होगा।
3: जी,
2: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोलकीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो आप गोलकीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं।
3: जी, मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास, और 2003 में बोला गया कि आपकी बेटी और मेरी कजन की अगर खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम सिरसा में एक नर्सरी खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ पे हॉकी, बैडमिंटन और जूडो है। तो मैं और मेरी बहन काफी एक्साइटेड थे क्योंकि गांव से शहर जाना ही हमारे लिए 2003 में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि ओके हमें वहां जाना है। तो मेरे मम्मी जी को गठिया था उस टाइम पे और मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा, गाय भैंस का जो काम होता है, मैं, पापा और भाई मिलके करते थे। तो मेरे लिए ऐसे था कि मन में एक डर था कि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। बट फिर मैं दादाजी के पास गई और उनकी जो खुशी थी, दादाजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूं तू हॉकी खेल। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट सुना था क्योंकि घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था। तो मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है कैसे? तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट गेम है। उनकी जो वर्डिंग थी ये थी कि डिफिकल्ट गेम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले। और हम एक दादाजी का ऐसा था कि हमारे घर में पोतों से ज्यादा पोतियों को या बेटे से ज्यादा बेटियों को प्यार मिलता था। तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है तो मुझे खेलनी तो हॉकी है।
2: अच्छा
3: जी, फिर मैंने हॉकी की ट्रायल दी और वहां मेरे फिजिकल टेस्ट हुए थे क्योंकि हॉकी खेलनी तो आती नहीं थी, तो नॉर्मल टेस्ट। तो वहां पे मैं सेकंड आई थी, गई, मन नहीं लगा क्योंकि वो लाइफ बहुत एक
2: गवर्नमेंट होती है ना।
3: जी, डिसिप्लिन्ड। एंड मम्मी की हेल्थ का ऑलरेडी बताया, वो माइंड में था, तो काफी रोती थी। हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन आना होता था फ्राइडे को घर।
2: क्या उम्र थी आपकी उस समय?
3: 13 साल की थी।
2: अच्छा जी, तो 13 साल की सविता के लिए वो सब बहुत ज्यादा हो गया।
3: अभी भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया। अच्छा। इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं हॉकी छोड़ दूँ और घर वापस चली जाऊँ। काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मी को बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, खाना भी छोड़ दिया था। खाना मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पापा को कि ये ठीक से खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, पूरा टाइम रोती है, आप लेके जाओ। तो पापा लेने आए और तब मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। वो वर्ड पापा के लिए, एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था उन्होंने। मैं जो भी होगा अपनी बेटी के लिए फिर तो करूंगा, बट ये बात मुझे उस दिन नहीं पता थी। मैं खुशी खुशी घर गई हूँ कि मैं हॉकी छोड़ के आ चुकी हूँ, मम्मी के पास जाके बता रही हूँ। तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा मंडे को तू वापस जा रही है। मैंने बोला नहीं, मैंने छोड़ दिया है, सबको, मैं अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के आई।

0: तो बोले कि नहीं बेटा अब तू एज ए डिफेंडर नहीं खेलेगी, गोलकीपर खेलेगी। उससे पहले मैं एज ए डिफेंडर ट्रेनिंग करती थी। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है। बोल तो मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने 18,000 रुपए गोलकीपर किट के कोच को देके आए हैं, क्योंकि कोच ने बोला ऑलरेडी मेरे ग्राउंड पे 2 गोलकीपर हैं, तो मेरे पास साल में 2 ही किट आती है, या तो आपको
1: लेकिन आपके पापा के पास तो पैसे नहीं थे ना।
0: जी मेरे पापा जॉब करते थे, बट 8,500-9,000 रुपए सैलरी थी, और वो चीज मेरे को ऐसे हुआ कि 18,000 रुपए ऑलमोस्ट 2 महीने की सैलरी मेरे को मेरे किट पे पापा ने लगा दी, और मेरा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगी। काफी रोई मैं, पर मम्मी ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, कोशिश कर, क्या पता भगवान, तू मेहनत कर, क्या पता भगवान वो दिन ला दे और पापा के लिए एक रिटर्न गिफ्ट होगा। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस किया, सिरसा में ही थी, और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहां पे, और काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि नॉर्मली हम शाहबाद की टीम से काफी गोल खाते थे, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जहाँ पे हमने बहुत कम मार्जिन से मैच को लूज किया।
1: आपने काफी गोल बचाए।
0: जी तो वहाँ जो हमारे जो शाहबाद टीम के कोच थे उन्होंने मुझे आके 100 रुपए दिए कि आज तेरी वजह से टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ऐसा रहा है, तो वो चीजें मुझे फिर मोटिवेट किया कि ठीक है मुझे।
1: लेकिन आपने जो शुरुआत की जब उसके बाद आप साई अकेडमी गए, उसके बाद नेशनल टीम में आप 2008 में आ चुकी थी, 17 साल की उम्र में आप नेशनल टीम में आ गई थी, मतलब है ना, उस पर आपने एशिया कप खेला। ये जो आपने हॉकी के मैदान में गोल के आगे आप खड़ी हो जाती हैं कि ये बॉल को मैं पास नहीं होने दूंगी, उस वक्त सविता का क्या जज्बा होता है मन में?
0: मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई, और हम गांव में रहते हैं, तो पापा के पास फोन गया कि आपकी बेटी का नाम नेशनल कैंप में आ गया है। तो पापा बोले कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन मैंने लड्डू बांटे थे और एक आज लड्डू बांटूंगा। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। कोच के पास मैसेज आया कि मेरा और एक मेरे साथ की प्लेयर थी कि दोनों का नाम इंडिया कैंप में आया, आजाद सर उस टाइम मेरे कोच थे, तो सर ने सेम जो मैंने आपको बोला वो बात बोल के भेजा कि एक बार तो कोई भी इंडिया खेल लेता है, बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको बाकियों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गई कैंप में और मैं जूनियर थी उस टाइम पे, और अगले ही कैंप में मुझे बोला गया कि आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो रहे हो। तो भंगू सर हमारे कोच थे नेशनल टीम के उस टाइम, तो हर चीज पापा को बताती थी, तो बड़ी खुशी से कि पापा का सपना मैं भी पूरा होने वाला है, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए वो ये था कि मैं घर गई और दादाजी मेरे पास आए और बोले कि बेटा एक पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जहां नाम आया है कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती सिरसा की पहली इंटरनेशनल प्लेयर है, और काफी खुशी थी उनकी आंखों में और बहुत इवन इमोशनल थे, और बट वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं ये पेपर अपनी कबड़ में रखता हूँ, आज का दिन तू देख और आज से पूरा एक साल बाद मैं तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा।
1: अच्छा?
0: मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा।
1: क्या बात।
0: और आज वो हमारे साथ नहीं है, बट वो चीज सच हुई। एक साल बाद उन्होंने वो खुद से पेपर मुझे पढ़ के सुनाया। उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं 67 ईयर की एज में दादाजी को इंस्पायर कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर अब तो मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं गिव अप नहीं करूंगी, क्या पता और कितनी लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ।
1: बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सविता ने जो काम शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों को मिल पाई, क्योंकि ये एक वॉल की तरह जो खड़ी होती है गोल के आगे सविता, वो वाकई एक उदाहरण पेश करता है। लेकिन खासकर उन इंस्टांसेस की बात बताएं जब आपने जापान के गोल रोके, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के इतने 9-9 गोल रोक डाले, उस समय किस तरीके का उत्साह था टीम के अंदर, उस समय किस तरीके का ऑडियंस का रिएक्शन था, और आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे?
0: सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एज ए डिफेंडर से गोलकीपर आना, मैंने उस चीज को बहुत इंजॉय किया, क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। मुझे मैं कैमरे से या पब्लिक प्लेस से काफी दूर रहती थी, बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है, अब मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं, वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था, और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया। 1980 में बुलाया था, बट वो एक इनविटेशन था ना, टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। तो वो मुझे था कि मैं गोलकीपर हूँ और गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है, तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो काफी अच्छा मैच था वो, मुझे आज भी याद है। और 1.5 ईयर हुआ था उस टाइम मुझे बीइंग ए फर्स्ट गोलकीपर, प्रेशर सिचुएशन था, बट जब जब एक सेव करते हैं और पता है कि एक स्टेप क्लोज जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है, और नेक्स्ट मोमेंट के लिए नर्वसनेस भी होती है कि अभी और गलती ना हो जाए, अभी और गलती ना हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में मेरी और मेरी टीम दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, घर पे आई अगेन पापा के साथ सब कुछ डिस्कस किया कि मैं उतनी खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, तो पापा ने बोला बेटा पहला ओलंपिक्स था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा तो बाद में और अच्छा होगा। उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है, बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना है। तो मैं डायरी लिखती हूँ नॉर्मली, तो मैंने फिर उस सारी चीजें उसमें लिखा कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को और डे बाय डे बेटर बनाना है ताकि मैं टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में अपना और योगदान दे सकूं। बस मैम, बहुत गोलकीपर की, नॉर्मली लोगों को शायद लगता है कि गोलकीपर्स का सिर्फ मैच खेलना तो आसान है क्योंकि बाकी प्लेयर्स भागते हैं, गोलकीपर सिर्फ 60 मिनट खड़े रहते हैं। गोलकीपर्स के बहुत सेशंस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीम से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं। हमें ड्रैग फ्लिक रोकना है, शूट आउट रोकना है और बाकी जो भी फुटवर्क की बहुत एक्सरसाइज करनी होती है, तो वो मैंने अपनी रूटीन में ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड की और कोचेज से हेल्प लेती थी उस चीज में कि मुझे बताओ कि बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आता है और जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था, सभी को यही, हमें जो मैसेज मिल रहे थे सभी यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पूल में टॉप किया है और इंडिया अपने पूल में लास्ट आया। और एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। जैसे ही मैच से पहले वाले दिन पापा से बात होती है तो पापा बोल रहे कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, काफी टफ ओपोनेंट है, बट कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से, वो एक मैच खेलने के बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को बोला पापा आप टेंशन मत लो, हम जीतेंगे। अच्छा। मेरे पापा भी अगर आप बात करोगे वो जरूर ये चीज को मेंशन करें। अपने आप से ऐसे कॉन्फिडेंस था क्योंकि हमारे एज ए टीम हमने बहुत काम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और काफी टीम अच्छा खेल रही थी, मेरा भी अच्छा चल रहा था और लास्ट क्वार्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1-0 वो डाउन थे, बट उनको वो एक बॉडी लैंग्वेज जो देखते हैं ना, क्योंकि हाफ टाइम हुआ वो हंसते हुए आ रहे हैं, क्वार्टर टाइम हुआ हंसते हुए वापिस आ रहे हैं, अदरवाइज ओलंपिक्स का मैच है, हार रहे हैं, तो कोई भी उस टाइम पे उनको एक था कि शायद हम
1: साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेली जाती हैं,
0: दैट आल्सो डेफिनेटली, बट थोड़ा ये उनको था कि हम निकाल लेंगे, गोल निकल जाएगा, हमें भी हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस था। तो हमने यही बात किया कि आज के मैच में डू और डाई और एक एक मिनट एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लास्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले और मेरे साथ साथ, ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने रोका, मेरे साथ मेरे दूसरे डिफेंडर भी थे, तो एज ए टीम हमने वो मैच जीता।
1: आपकी जैसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हॉकी लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाई है, और मतलब आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं अभी जिनको 3 बार लगातार FIH की ओर से बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो वाकई सराहनीय है। सविता, आप तो कैप्टन भी रही है ना, आपने इतने सारे गोलकीपर के तौर पर जो हासिल किया, कैप्टन जब बनी थी तो कुछ प्रेशर महसूस होता था क्या?
0: डेफिनेटली, क्योंकि वो गोलकीपर अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बट उसके साथ बींग ए कैप्टन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एड होती है, तो प्रेशर होता है क्योंकि वहां पे सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी टीम के लिए है, तो ऑफकोर्स कैप्टन इज
1: बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रेशर वाली जॉब तो है। अच्छा, हमने हमेशा आपको जैसे इस तरह के ट्रैक सूट में ही देखा है, खेलते हुए भी, अभी भी आप हमारे साथ इसी तरह से हैं। इन ट्रैक सूट के पीछे की सविता क्या ऐसी भी है जो बिंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है, आम लड़कियों की तरह सजती है, पसंद करती है?
0: नो मैम, मैं बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ। और बचपन में मुझे मम्मी बताते हैं कि मैं छोटी थी तब था मुझे, बट 5th-6th क्लास तक था कि कुछ गांव में जाते थे, बैंगल्स लेते थे और पायल लेते थे, बट मैंने सिर्फ लेके रखी है, पहना कभी भी नहीं है। और आज के टाइम पे ये है कि मुझे अगर कोई बोलता है कि मेकअप करना है तो इट्स मेक मी स्ट्रेस, कि मुझे उतना पसंद नहीं, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है।
1: ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन हेलमेट के पीछे जब छुपी होती हैं, उनके बाहर निकलकर जो सविता सामने आती है, उस सविता के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो एक हॉकी प्लेयर से हटकर लोगों को जाननी होती है?
0: हॉकी से बाहर ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ कि हॉकी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है, बिना हेलमेट के भी आज मुझे वो कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं उस दिन का शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने अपनी हॉकी जर्नी को कंटिन्यू रखा।
1: वैसे आप जब छोटी थी उस वक्त आप के प्रैक्टिसेस के लिए जाना करना, और हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पर हम देखते थे कि लड़कियों को लेकर उस वक्त तो आंकड़े और भी लैंगिक अनुपात के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे में आपको जब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, करना होता था, तब क्या क्या मुश्किलें आती थी आप?
0: 2011 की बात है, उस टाइम हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती थी, ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं दिल्ली में ही थी, बेंगलोर से मैं दिल्ली आई थी और बस स्टैंड पे थी मैं, क्योंकि उस टाइम टैक्सी फ्लाइट ये सब उतना नहीं होता था, ट्रेन से आते थे और यहाँ से आगे रोडवेज से जाते थे, मिडिल क्लास फैमिली से थी। तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि पापा को मैं बताना भी नहीं चाहती थी क्योंकि अदरवाइज वो लेने आएंगे, फिर पैसा लगेगा, खर्चा होगा। मैं दिल्ली बस स्टैंड पे थी, मेरे पास गोलकीपर बैग था और मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे खड़ी थी, कोई मुझे बस में चढ़ा नहीं रहा था क्योंकि इतना बड़ा बैग है, देखे सबकी बैग रखेगी उतनी जगह पे 2 सवारी और बैठ जाएंगे, मेरा गला भराया था। मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बस में बिठाओ। तो उन्होंने बोला इतना बड़ा बैग और पास में जो लोग खड़े मजाक कर रहे थे, लग रहा है देश छोड़ के जा रही है, तो वो चीजें मुझे अंदर से वीक कर रही थी। इट्स नॉट कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे वीक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों खेल रही हूँ। और उसके बाद में ज्यादा खराब तब हुआ जब मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको बस में नहीं बिठाएंगे, या तो आपको दो पैसेंजर की टिकट खरीदनी पड़ेगी जी। और 250 मुझे याद है 250 रुपीज की एक टिकट होती थी, और मैंने कहा नहीं 500 रुपीज तो एक्स्ट्रा, वो पैसे तो मैं बचा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं, तो फिर बोलते आप ऊपर रख दो बस के ऊपर, छत पे रख दो। मैंने बोला इतना बड़ा बैग लेके मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप बोल दो, आप किसी की हेल्प के लिए मुझे बोलो। तो मैं उस बस में नहीं चढ़ी और मैंने पापा को रोते हुए फोन किया कि पापा मुझे नहीं खेलना है, मुझे हॉकी छोड़नी है, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं खेल पाऊंगी, कि मुझे बहुत खराब लगा आज ऐसे से हुआ। तो पापा ने बोला कि बेटा आज आज का दिन कैसे भी निकाल ले, चाहे मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़े, पर मैं तुझे इस वजह से तो हॉकी नहीं छोड़ने दूंगा। पेरेंट्स की सपोर्ट क्या होती है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब एक्सपेंसिव उठाना। और मैं इंडिया टीम में 2008 में आई थी और 18 तक मेरे पास जॉब नहीं थी। तो बट कभी भी पापा ने कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरी बेटी के पास जॉब नहीं है। मम्मा थोड़ी टेंशन लेती थी क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ये था।
2: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं अब आइए सुनते हैं रांची मेलोडीज कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं कहते हैं ना कि आजकल हर कोई जिंदगी की रेस में, आगे निकलने वाली रेस में भागे जा रहा है, और इसी वजह से लोग हंसना और रुक रुक कर सांस लेना भूल जा रहे हैं। अपनों के पास बैठकर बातें करने का समय नहीं है, ना ही खिलखिलाकर हंसने का। सुबह उठते ही बस काम काम काम, और इसके पीछे जो टेंशन है वो वापिस लौटने पर थकान बनकर हमारे साथ रहती है। और हम चाहते हैं इस थकान को आप अपने मनपसंद गीत के साथ जरूर दूर कीजिए। तो चलिए आइए हम आपको कुछ बातें भी करेंगे और कुछ प्यारे प्यारे गीत भी सुनवाएंगे।

श्रोताओं, जब हम बातें करते हैं ना अपनी थकान की, अपने काम की, अपने टेंशन की, तो फिर इस सब को हम अपने ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। जो समय बचता है ना, वो हम अपने मोबाइल में उस समय को ना खपाएं और मोबाइल चलाकर अपने परिवार के लोगों से दूर न रहें, अपने लोगों से कुछ बातें करें, कुछ अपनी बातें उनको बताएं। और बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं ज़िंदगी में जिसे हम साझा करके उसे दूर कर सकते हैं और बहुत बड़े मुश्किल यानी कि तनाव से हम दूर हो सकते हैं। इसलिए अपने आसपास और अपनी ज़िंदगी में हमें जो मिला है उससे खुश रहना सीख जाएं।

श्रोताओं, जब हम बातें करते हैं अपने जिंदगी में किसी के आने की और उसके साथ खुशियां बांटने की, तो फिर हर पल हम एक टेंशन अपने दिमाग में क्यों लें कि हम उसके साथ कैसे जी सकते हैं, क्या बातें करनी है और किस तरह से एक दूसरे का साथ निभाना है। ऐसा समझ लीजिए कि हमें एक जिंदगी मिली है और उसमें इतनी टेंशन लेंगे तो दिमाग किसी दिन हमारा गुब्बारे की तरह फट जाएगा। इसलिए थोड़ा चिल करें, अपने को मजेदार बनाए रखने के लिए अच्छे अच्छे गीत सुने, अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और अपने सामने वाले के साथ में अच्छा व्यवहार रखें, तभी आप इस दुनिया में चैन से जी सकते हैं।

ऐसी कोई बात कर चल लो जमूर, रह जाए सब दिल थाम कर।

देखिए, दुनिया में जीना है तो कुछ काम करना, और काम ऐसा करना है जो हम सभी को अच्छा लगे, और खुशी से जीना है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई हमें परेशान ना करे, है ना। तो इसके लिए आप समय समय पर खिलखिलाकर हंसें, दूसरों को भी हंसाएं, और अगर आप खुश होंगे तो फिर आपको अपनों का साथ मिलेगा, क्योंकि वो आपसे खुश होंगे। इसलिए जब भी कोई रूठ जाए तो उसे मनाना आपका काम है, और अगर आप रूठ जाएं तो सामने वाले को आपको मनाना होगा। और बस कहते हैं ना, यही जिंदगी है। तो फिर देखिए कि आप अपने सामने वाले को और वो आपको कितना रूठने पर मना सकते हैं, क्योंकि जिंदगी यही है और इसी का आधार है कि रूठे हैं तो मना लो और मना कर फिर हंसा लो।

कहते हैं ना कि जिंदगी हमेशा हमारी हमारा इम्तिहान लेती है और समय, समस्याएं, मौसम कभी भी बदल सकते हैं और हम इसके सहारे बैठ तो नहीं सकते ना। अपनी मंजिल की ओर हमें हमेशा बढ़ना है और उस मंजिल में चलने के लिए हमारे साथ कोई हम सफ़र होता है, कोई प्यारा सा साथी होता है। और कोई ज़रूरी नहीं कि संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न हो, इसलिए अगर अपने साथी में कुछ कमियां हैं तो उसे नज़रअंदाज कीजिए और रिश्ता बनाए रखिए।

श्रोताओं, जिंदगी का फलसफा तो ये है कि हम खुश रहें और अपने सामने वाले को भी खुश रखें। लेकिन इसके लिए जब दो अजनबी मिलते हैं इस दुनिया में, तो बस यही कहते हैं, बन के अजनबी मिले थे जिंदगी के सफर में, उन यादों के लम्हों को मिटाएंगे नहीं। अगर याद रखना फितरत है आपकी, तो वादा है हम भी आपको कभी भुलाएंगे नहीं। और इसी प्यारे से बातों के साथ एक और आखिरी गीत इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं, और उसके बाद ये गीत सुनकर आप जरूर समझेंगे कि अपने जिंदगी में खुश रहना और खुशियां देना ही बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए।

इसी प्यारे से गीत के साथ आज का रांची मेलोडीज कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत अपनी दोस्त उषा जायसवाल को। नमस्कार।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं से उनका मन व्यथित था और यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने त्याग पत्र इसलिए दिया ताकि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें। राज्य में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SIR के अंतिम चरण के तहत निर्वाचन आयोग ने राज्य भर से कुल 17,56,000 अयोग्य मतदाताओं की पहचान की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में 2,00,000 से अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं की भी पहचान हुई है। पलामू जिले की पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत पिछले 2 महीनों में 19 थाना क्षेत्रों से 104 गुम मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने आज मेदिनीनगर में आयोजित विशेष शिविर में मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में आज 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गिरिडीह जिले की पुलिस ने महिलाओं से चेन छिनतई की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए लूटी गई सोने की चेन बरामद कर ली है। पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार ने बताया कि घटना में शामिल कोढ़ा गिरोह के अपराधियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। और झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने आज देवघर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित की जाए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं अब आइए सुनते हैं कल्याणी कार्यक्रम। चर्चा होगी परिवार में एकता आज की आवश्यकता। भेंट वार्ता अब सुनेंगे टूटते रिश्ते बिखरता परिवार क्या है समाधान। भेंट वार्ताकार हैं मोहम्मद परवेज इब्राहिमी, इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। और दूसरी चर्चा होगी आज की बचत कल की सुरक्षा। सूत्रधार हैं युवराज, प्रस्तुति प्रभु शरण की।

0: श्रोता मित्रों, आप सभी को नमस्कार जोहार। आप सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी है स्वस्थ होंगे, खुशहाल और उत्साह से भरपूर होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी और मैं हूं आपका दोस्त युवराज। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए मनोरंजन, जानकारी, गीत और प्रेरणा से भरपूर एक शानदार कार्यक्रम लेकर। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए कुछ नए विचारों, रोचक चर्चाओं और मन को छू लेने वाला मधुर गीतों के सफर पर। आने वाले कुछ पलों में हम साथ साथ सीखेंगे, मुस्कुराएंगे और गीत संगीत का आनंद भी उठाएंगे। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक विशेष चर्चा के साथ। आज का चर्चा का विषय है परिवार में एकता, आज की आवश्यकता। मित्रों, परिवार केवल कुछ लोगों का एक साथ रहना ही नहीं, बल्कि यह प्रेम, विश्वास, सहयोग, त्याग और संस्कारों का एक ऐसा बंधन है जो जीवन को मजबूती देता है। परिवार ही वह पहला विद्यालय है जहां व्यक्ति बोलना, चलना, व्यवहार करना और रिश्तों का सम्मान करना सीखता है। यदि परिवार में एकता बनी रही तो जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों का भी हम सामना आसानी से कर सकते हैं। आज का समय तेजी से बदल रहा है। आधुनिक जीवन शैली, व्यस्त दिनचर्या, नौकरी के दबाव, मोबाइल और सोशल मीडिया की बढ़ती लत तथा भौतिक सुख सुविधाओं की आंधी दौड़ ने परिवारों के बीच दूरियां बढ़ा दी है। पहले जहां संयुक्त परिवार में प्रेम, अपनापन और सहयोग की भावनाएं देखने को मिलती थी, वहीं आज छोटे छोटे परिवारों में भी संवाद की कमी महसूस होने लगी है। लोग एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते। दोस्तों, परिवार में एकता की सबसे बड़ी नींव है विश्वास। जहाँ विश्वास होता है वहीं रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन जब संदेह, अहंकार और स्वार्थ रिश्तों में प्रवेश कर जाते हैं तब परिवार बिखरने सा लगता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, एक दूसरे की बातें ना सुनना, क्रोध में निर्णय लेना और अपनी बातों को ही सही मानना परिवार की शांति को नष्ट कर देती है। एकता बनाए रखने के लिए सबसे पहले परिवार के सदस्यों के बीच खुला संवाद होना चाहिए। यदि किसी को कोई परेशानी हो तो वह उसे खुलकर अपने परिवारों से साझा करना चाहिए। संवाद की कमी अक्सर गलतफहमियों को जन्म देती है, जबकि बातचीत हर समस्या का समाधान खोजने का मार्ग खोलती है। परिवार में बड़ों का सम्मान और छोटों के प्रति स्नेह भी अत्यंत आवश्यक है। माता पिता और दादा दादी का अनुभव परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। वहीं बच्चों को भी प्रेम पूर्वक अच्छे संस्कार देना चाहिए ताकि वो परिवार के महत्व को समझे और आगे चलकर उसी परंपरा को आगे बढ़ाएं। साथियों, आज आर्थिक चुनौतियां भी परिवारों की परीक्षा लेती है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करें, खर्चों में संतुलन रखें और मिलजुल कर निर्णय लें तो कठिन परिस्थितियां भी आसानी से पार किया जा सकता है। एकता का अर्थ केवल साथ रहना ही नहीं, बल्कि सुख दुख, सफलता असफलता और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाना है। हमें यह भी समझना होगा कि परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। अलग अलग विचार होना गलत नहीं है, परंतु उन विचारों का सम्मान करना और मिलकर समाधान निकालना ही सच्ची पारिवारिक एकता है। क्षमा, सहनशीलता और त्याग ऐसे गुण है जो परिवार को टूटने से बचाते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी परिवार में एकता आवश्यक है। जिस घर का वातावरण प्रेम पूर्वक और सौहार्दपूर्ण होता है वहाँ बच्चे आत्मविश्वासी, संस्कारी और जिम्मेदार बनते हैं। इसके विपरीत कलहपूर्ण वातावरण बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति सदैव वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती आई है। जब हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने घर में प्रेम, सम्मान और एकता स्थापित करना हमारी कर्तव्य है। यदि प्रत्येक परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा और समाज मजबूत होगा तभी राष्ट्र भी सशक्त बनेगा। प्रिय श्रोताओं, आज आवश्यक बातों की है कि हम अपने परिवार को समय दें, साथ बैठकर भोजन करें, एक दूसरे की बातें सुने, खुशियां बांटें, दुखों में सहारा बने और रिश्तों को मोबाइल की स्क्रीन से नहीं बल्कि दिलों से जोड़ें। याद रखिए, धन दौलत से बड़ा धन एक सुखी और एकजुट परिवार होता है। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, जिस घर में प्रेम, विश्वास, असहयोग का दीप जलता है, वहाँ सुख, शांति, समृद्धि स्वयं अपना घर बना लेती है। परिवार की एकता ही समाज की शक्ति और राष्ट्र की प्रगति का आधार है। आइए हम सभी अपने परिवार को जोड़ने का संकल्प लें, क्योंकि परिवार में एकता वास्तव में आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि घर ईंट और पत्थरों से नहीं बनता बल्कि रिश्तों की गर्माहट, विश्वास और प्रेम से बनता है। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं ना कहीं यह रिश्ते कमजोर पड़ते जा रहे हैं। संवाद की जगह मौन, अपनापन की जगह स्वार्थ और साथ की जगह दूरियां बनती जा रही है। परिणाम स्वरूप परिवार बिखर रहे हैं और रिश्तों की दौर कमजोर होती जा रही है। तो आज के हमारे विशेष भेंटवार्ता का विषय है, टूटते रिश्ते, बिखरता परिवार, क्या है समाधान। और इस विषय के वार्ताकार है मोहम्मद परवेज इब्राहिमी और इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। मित्रों, हमारे यहाँ परिवार एक बहुत बड़ी संस्था है और इस परिवार में बहुत लोग रहते हैं। पति पत्नी, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, बेटा बेटी और भी बहुत सारे रिश्तेदार इस परिवार में समाहित होते हैं। लेकिन आज के इस युग में देखा जा रहा है कि हमारे रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, परिवार बिखरता जा रहा है, टूटने के कगार पर आ गया है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं हो पाते हैं, फिर कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं और रिश्ते में दरार आने शुरू हो जाए। आखिर रिश्ता क्यों टूट रहा है, क्या कारण है और इसको हम कैसे रोकें, क्या समाधान है कि हमारी रिश्ते की जो धागा है वह मजबूत रहे और हम एक अच्छे परिवार का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि जब परिवार मजबूत होगा तभी हमारा समाज मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। तो टूटते रिश्ते, बिखरता परिवार, क्या है समाधान, इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं झारखंड के रिटायर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद परवेज इब्राहिमी साहब। परवेज सर, स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद।
1: परवेज सर, आज के दौर में रिश्ते टूटते दिखलाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे इसके

0: मानसिक स्थिति। सदियों से हमने महिलाओं को ये समझा करके या पुरुष को ये समझा के रखा कि रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं और ये 7 जन्मों के रिश्ते हैं। बहुत सारी बातें जहां खराब भी लगी तो लोगों ने उसको बर्दाश्त कर लिया। लोगों के पास खासतौर पर महिलाओं के रोजगार नहीं था, शिक्षा नहीं था, तो उनके साथ एक मजबूरी थी जिसको कहते हैं रिश्ता को निभाना। रिश्ता निभाना और रिश्ता बनाए रखना दोनों में बहुत अंतर है। आप एक चीज देखिए कि इंसान का सबसे बड़ा गोल क्या है, एडजस्टमेंट। प्रकृति भी बदल रही है। आज जिस पर्यावरण की बात हम कर रहे हैं या जिसको लेके हम चिंतित हैं, क्या आज से 1000 साल पहले किसी को इस बात की चिंता थी या उसके कोई दुष्परिणाम हम तक पहुंचते थे? नहीं पहुंचते थे, सब कुछ ठीक था। अब महिलाएं स्वतंत्र हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं। हमारा जो मेल चौविनिस्टिक एटीट्यूड है, हम ये समझते हैं कि हमको मालिक बनाया गया है महिलाओं को, या हम कमाते हैं, महिलाएं नहीं कमाती हैं तो महिलाओं की ये जिम्मेदारी होगी घर देखना, ऐसा नहीं है। 100% मामले अगर आप देखें 100 केस 100 घरों को, तो आप देखेंगे कि 99% घर सही से चल रहा है, वो उनके रिश्ते टूट नहीं रहे हैं। मनमुटाव होना स्वाभाविक है, एक दूसरे से कोई बातें हो जानी ये बहुत अननेचुरल चीज नहीं है। दिक्कत कहाँ होती? दिक्कत होती है जहाँ हम दूसरे के साथ इंसाफ नहीं कर पाते, दूसरे के अधिकारों को समझ नहीं, सिर्फ हम उन पर उनकी जिम्मेदारियां बताते हैं और जिम्मेदारियों को, और इस बात पर हम घमंड करते हैं कि हम तो कमा रहे हैं, आपका काम है घर चलाना, बच्चों का देखभाल करना। लेकिन जब महिलाएं पढ़ लिख लेती हैं और वो खुद माने लग जाती हैं, तब भी आप अपने एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं लाते। आप ऑफिस से आइए तो घर को देखिए, ऑफिस जाने से पहले घर को देखिए। हमारा काम है कि हमको बेटी मिल जाना चाहिए आपके हाथों। हम अपनी जिम्मेदारियां कब निभाते? जब पत्नी बीमार पड़ जाए तो आपको लगता है कि साहब अब चाय बना के हमको देना है या दवा हमको खिलाना है। एक बार वो ठीक हो गई, फिर आपका जो एटीट्यूड है, जो चला रहा है पुरखों से, वो एटीट्यूड सामने आ जाता है। अब आपको फिर उनसे उम्मीद हो गई कि हमको बेटी मिल जाना चाहिए, सुबह उठे हैं हम, ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा आप क्यों आभास देते हैं कि आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसी पर एहसान कर रहे हैं। कहा जाता है कि परिवार का सशक्त होना, एक दूसरे के साथ एकजुट होना, ये देश की एकजुटता का सवाल है। आज भी आप देखिएगा कि बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग नाराज हो जा रहे हैं, होना नहीं चाहिए। उनको एडजस्टमेंट जैसे प्रकृति के साथ आप एडजस्ट करते हैं। अभी जाड़ा है तो जाड़ा में हम सब लोगों ने कोट पहन लिया, गर्मी में पहनेंगे क्या? नहीं पहनेंगे, हल्का कपड़ा पहनेंगे, सूती शर्ट ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो आप कर क्या रहे हैं? आप एडजस्ट ही तो कर रहे हैं, बरसात में छाता लेके चल रहे हैं, आप एडजस्ट ही तो कर रहे हैं। एक दूसरे का कोऑपरेशन, समाज आज आदिकाल से आप देखिए, हम यहाँ से यहाँ तक चले आए, उस वक्त तो कोई परिवार का कंसेप्ट नहीं था, नहीं रहा होगा। केव ड्वेलर्स के पास परिवार था क्या? नहीं था। मध्यकाल तक तो परिवार अजब तरह का था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आज शादी किया कल छोड़ा, एक साथ कई पत्नियों को रखा, बहुत तरह की बातें थी। आज इसमें सुधार होता चला गया। आज कोई पढ़ी लिखी महिला सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो आज ये बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि घर से बाहर भी आपका कहीं कोई अफेयर चल रहा है। तो ये सब चीजें हैं क्या? एक तरह से महिलाओं का सशक्त होना हमको पुरुष पर लगाम लगाने जैसा लगता है। जो पुरुष अच्छे हैं उनका परिवार खूब अच्छे से चल रहा है, जो महिलाएं अच्छी हैं उनका परिवार खूब अच्छे से चल रहा है, मिलजुल करके लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। 1% 0.5% मामले गड़बड़ाते हैं, और वो गड़बड़ाते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमने सामंजस्य बैठाने की कोशिश नहीं किया, हमने विवाद को पैदा उत्पन्न किया और विवाद को बढ़ाया, और हम दोनों के बीच में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। जबकि आप हर दिन समाज में एडजस्ट ही करते हैं
1: जी। तो इब्राहिमी साहब, ये जो आपने एडजस्टमेंट की बात की, समायोजन की बात की ताकि रिश्ते मजबूत रहे, अब यहाँ पर मैं ही क्यों अहम आ जाता है और ये ईगो आपको बहुत पीछे ले जाता है?
0: देखिए, अहम जो है ना वो हमारे अंदर समाज ने ही ठूसा है। आप मर्द हैं, आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, महिलाएं क्यों नहीं हेड ऑफ द फैमिली हो सकती? हमारे इसी देश में नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे जगहें भी हैं, स्टेट भी हैं, जहाँ हेड ऑफ द फैमिली महिलाएं होती हैं।
1: शायद हमें ये लगता लगता है कि हम अपनी पुरुषोचित मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं?
0: देखिए, दो बातें हैं। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी का एहसास हो, अकाउंटेबिलिटी हो, तो आप परिवार को भी संगठित रख सकते हैं। अगर जिम्मेदारी का एहसास हो तो समाज को भी रख सकते हैं और देश को भी बना के रख सकते हैं। आपका कहीं ना कहीं स्वार्थ हो जाता है, आप पत्नी को पर भी एहसान जताने लगते हैं कि हम कमा के ला रहे हैं।

0: हम आपकी सारी जिम्मेदारियां, बच्चों की सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं।
1: मेरी बात मानो।
0: हाँ, मेरी बात मानो, हम हेड हैं। ऑफ कोर्स कोई पत्नी नहीं कहती कि उसका पति हेड नहीं है फैमिली का, कम से कम हमारे समाज में। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप उसके साथ वो बिहेव, उसके वो अधिकार जो उसको मिलने चाहिए, जो बराबरी का अधिकार, जो एक डिग्निफाइड सर उठा के जीने का अधिकार है, उसको आप छीनने लग। बहुत सारी पत्नियों को हमने देखा कि वो भी गलत करती हैं। डिलीवरी के समय पति नहीं आए, वो ये जानने की कोशिश नहीं करती कि डिलीवरी के समय पति क्यों नहीं आए, क्या मजबूरी थी उनकी। अगर मनमुटाव के वजह से नहीं आए तो किन बातों को लेकर मनमुटाव था। अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन के वजह से वो छुट्टी नहीं ले पाए तो आपको भी देखना होगा। ये दो चक्के हैं स्कूटर के, एक को आप खत्म करके एक के बल पर नहीं चला सकते, फिर उसमें और चक्के जुटते जाते हैं बाल बच्चों की शक्ल में या माता पिता की शक्ल में। अब माता पिता का भी चक्कर गलत, महिलाएं चाहती हैं कि उनके माता पिता को सम्मान मिले, मिलना चाहिए
1: बिल्कुल,
0: और पति चाहता है कि उनके माता पिता को सम्मान और उनकी खिदमत होनी चाहिए। खिदमत करने की जिम्मेदारी सिर्फ पत्नी की क्यों है, बेटा तो आप भी हैं, आपकी क्यों नहीं है। आप उनके माता पिता की कीजिएगा इज्जत, उनकी खिदमत कीजिएगा, अगर वो बीमार पड़ गए तो उनकी सेवा कीजिएगा। मानी बात है कि महिला भी आपके भाई बहन से लेके माता पिता की खिदमत करे। कहीं ना कहीं हम संकीर्ण विचारधारा से ग्रसित हैं,
1: ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं,
0: ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। पति सोचता है कि मेरे माँ बाप भाई भाई की खिदमत करने की जिम्मेदारी मेरी पत्नी की है, लेकिन वो ये नहीं सोचता। तो हो सकता है पत्नी के माँ बाप की भी स्थिति ऐसी हो कि वो भी बेचारा लाचार हो, किसी वजह से बूढ़ा होने की वजह से लाचार हो।
1: क्योंकि जब आप विवाह करते हैं तो सिर्फ पत्नी ही नहीं आपके साथ आती है, एक पत्नी के साथ साथ एक पूरा परिवार से भी आप जुड़ते हैं। आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है। आप जिस प्रकार अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनसे प्यार स्नेह करते हैं, वैसे ही जिम्मेदारी आपकी जो पत्नी है उनका भी माँ बाप है, उनके भी भाई बहन है, उसके प्रति भी आपका प्यार होना चाहिए।
0: नहीं, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि पत्नी अपना घर छोड़ करके जो व्यवस्था है हमारी पारिवारिक
1: जी आपके साथ आई है,
0: आपके घर आई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपने माँ बाप भाई बहन से एकदम अलग हो गई है। अब उसको उसके बारे में सोचना नहीं है, उसको सोचना है और अब सोचना है आपके साथ मिल के
1: जी,
0: तो आपका सहयोग तो चाहिए।
1: कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तभी एक अच्छे परिवार का हम निर्माण कर पाएंगे,
0: एकदम। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है।
1: प्रोफेसर, क्या कहेंगे आज के हमारे युवा साथियों को या ऐसे परिवार को जो इस दौर से गुजर रहे हैं, रिश्ते जहां डगमगा रहे हैं।
0: देखिए, अभी बहुत अच्छी बात एक रील में हमने मोहन भागवत जी की सुना, जो लिव इन रिलेशन पर उनका विचार। बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, हम भी ये नहीं कहते कि लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए लोगों को, लेकिन इतनी बात तो सही है कि आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, आनंद लेने को तैयार हैं लेकिन जिम्मेदारी लेने को तैयार, तो फिर उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कि आप दो आदमी, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, बच्चे अगर नहीं भी हैं तो परिवार है, भाई है, बहन है, तो आप जिम्मेदारी से जब भागेंगे अपनी अपनी जिम्मेदारियों से या अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे के ऊपर में डालने की कोशिश करेंगे, एडजस्टमेंट का अभाव हो जाए,
1: तब समस्याएं उत्पन्न
0: और तब समस्याएं उत्पन्न होंगी। और समस्या के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर एक बार समस्या आ गई
1: तो जुड़ती चली जाती
0: है, तो उसमें और समस्याएं जुड़ती चली जाती हैं। समस्याओं का निदान खोजना होगा। निदान के लिए ऊपर वाले ने, प्रभु ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको बहुत शानदार दिमाग दिया है। आप चाहेंगे, गंभीरता के साथ सोचेंगे तो आपको सबका समाधान।
1: सबसे बड़ी बात है कि आपको एक संवाद बनाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, जहां भी रिश्ते में बिखराव आ रहा है उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, और जब हम मिल बैठ कर बात करेंगे तो सभी समस्या का समाधान हो पाएगा। क्योंकि आपने कहा कि प्रभु ने, फरिश्ते ने हमें दिमाग दिया है, और आप सही दिमाग लगाएंगे तो रिश्ते में तो मधुरता आएगी ही आएगी। क्या कहेंगे लोगों को कि आप खुश रहें।
0: देखिए, अगर आपको दुनिया की सबसे बड़ी चीज है शांति और समृद्धि और सुख, तो शांति से बहुत सुख मिलता है इंसान। आपसी रिश्ते मजबूत होंगे तो उससे भी बहुत सुख मिलता है आदमी को, मानसिक सुख भी मिलता है, पत्नी के साथ शारीरिक सुख भी मिलता है। तो आपको कहीं ना कहीं सोचना होगा कि हम अड़ नहीं सकते हर जगह, या सिर्फ अपनी बात को ही हम महत्व दें और दूसरे की बात को नहीं दें, तो ये भी चलने वाला नहीं।
1: हर व्यक्ति को तवज्जो देनी होगी,
0: हर व्यक्ति को तवज्जो, और जिसका जो हक है वो हक उस तक पहुंचाना होगा। हक सिर्फ पत्नी का इतना ही नहीं है कि आपने कपड़े दे दिए, रहने को घर दे दिया, खाना दे दिया, बस इतना ही नहीं है। आपके साथ उसका रिलेशन एक दोस्त की तरह होना चाहिए, जो उसके दुख को भी बांटे, सुख में भी साथी हो, और बच्चों के परवरिश की भी जिम्मेदारी दोनों की होगी। दोनों को मिलकर के काम करना होगा, घर को दोनों को साफ सुथरा सजा के रखना होगा, तब आप इंजॉय कर सकते हैं।
1: समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, पति और पत्नी यदि साथ मिल बैठ कर चलेंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, आपके जिम्मेदारियों का आपको यदि एहसास होगा और उस जिम्मेदारियों को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, समायोजन करेंगे, तभी एक खुशहाल परिवार का हम निर्माण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद परवेज इब्राहिमी साहब।
2: तो मित्रों, अभी हमने जाना कि परिवार में समाज, रिश्तेदारी में रिश्ता कितना महत्वपूर्ण होती है। हमें रिश्ते की अहमियत को समझना होगा और इसे भी ज्यादा जरूरी है रिश्ते को बखूबी निभाना। दोस्तों, अभी हमने अपने विशिष्ट अतिथि से इस महत्वपूर्ण विषय पर एक सार्थक और प्रेरणादायक भेंट वार्ता सुनी। उम्मीद है कि उनके विचारों ने आपके रिश्तों की अहमियत और परिवार की मजबूती पर नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। रिश्तों की मिठास बनी रहे, दिलों में अपनापन कायम रहे और परिवार प्रेम के बंधन में सदैव जुड़ा रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ अब समय एक खूबसूरत गीत का हो चला है, जो रिश्तों की गर्माहट और अपनेपन का एहसास कराएगा। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत आपके लिए।
3: जा!

तो मित्रों, अभी हमने सुना फिल्म शराबी से यह प्यारा सा गाना, जिसे गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने और संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। दोस्तों, यदि हम आज बचत करेंगे, यह बचत ही हमारे आने वाले समय में सुख और सुरक्षा का आधार बनेगा। जब हम अपनी आमदनी का कुछ भाग बचाते हैं तो वह भविष्य में किसी आपात स्थिति या ज़रूरत के समय काम आता है। यह न सिर्फ आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाता है बल्कि आत्मविश्वास भी देता है। तो दोस्तों, आइए इसी विषय पर हम प्रकाश डालते हैं कि बचत हमारे आने वाले भविष्य में कितना सुरक्षित है। मित्रों, मनुष्य का जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता, इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जो वर्तमान में अपने संसाधनों का सही उपयोग करे और कुछ हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखे। आज की बचत कल की सुरक्षा केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण नीति है। यह हमें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। दोस्तों, बचत का महत्व को भी हमें जानने की अति आवश्यकता है। तो मित्रों, बचत का अर्थ है अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। यह केवल पैसे तक सीमित नहीं है बल्कि समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत भी उतनी ही आवश्यक है। जब हम आज थोड़ा थोड़ा बचाते हैं तो भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना आसानी से कर सकते हैं। अचानक बीमारी, शिक्षा का खर्च, व्यापार में नुकसान या किसी अन्य आपात स्थिति में बचत ही हमारा सहारा बनती है। दोस्तों, परिश्रम और बचत करना जहां एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लाभदायक है, भविष्य की सुख सुविधा और सुरक्षा की गारंटी है, वहां सारे समाज, देशों और जातियों के बारे में भी यही सत्य है। सामूहिक रूप से परिश्रम और बचत करना ही पूरे समाज, जाति और राष्ट्र की सुख सुविधा और सुरक्षा की गारंटी हो सकता है। इसलिए हमें देश रूपी विशाल समाज का एक अंग होने के नाते अपने भविष्य की चिंता को करनी चाहिए। सारे समाज और राष्ट्र भविष्य की चिंता करना ही हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो मित्रों, परिवार और समाज में बचत की भूमिका क्या है, कभी सोचा है आपने? एक समझदार परिवार वही होता है जो अपनी आय व्यय का संतुलन बनाए रखे। यदि परिवार के सदस्य फिजूल खर्ची से बचे और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें तो वो अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। बचत करने वाला व्यक्ति समाज में भी सम्मान पाता है क्योंकि वह आत्मनिर्भर होता है और दूसरे पर बोझ नहीं बनता। साथियों, बचत करने से केवल मन में आत्मविश्वास ही नहीं बढ़ता, उसे भविष्य की चिंता भी कम सताती है। जब व्यक्ति जानता है कि उसके पास कठिन समय के लिए सुरक्षित धन है तो वह जीवन में बड़े निर्णय लेने में भी निडर रहता है। बचत व्यक्ति को अनुशासन और संयम भी सिखाती है। दोस्तों, कहा जा सकता है कि आज की छोटी छोटी बचतें ही कल की बड़ी सुरक्षा बनती है। यदि हम अपनी आय का कुछ भाग नियमित रूप से बचाएं और अनावश्यक खर्चों से बचें तो हमारा भविष्य सुरक्षित और सुखमय हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बचत की आदत अपनानी चाहिए क्योंकि सच ही कहा गया है, आज की बचत कल की सुरक्षा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियां, बातें और गीत संगीत का कार्यक्रम आपको खूब पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी। चर्चा का विषय था परिवार में एकता आज की आवश्यकता। भेंट वार्ताकार थे मोहम्मद परवेज इब्राहिमी, भेंटकर्ता थे संजीव कुमार लाल की, प्रस्तुति प्रभु सरन की।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 4:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम, 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार, 5:02 पर कार्यक्रम युवानी, 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोक।

छह बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक का मुख्य समाचार। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। हमारी दुनिया कार्यक्रम का वक्त होगा 6:32 पर। 7 बजे आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। कार्यक्रम लोकगीत आप सुन पाएंगे 7:15 पर। क्षेत्रीय समाचार आप सुनेंगे 7:20 पर। 7:45 पर आप सुनेंगे समाचार ध्वनि चित्र।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। इस कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं पहला गीत। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन अनु मलिक के, सुर साधना सरगम और उदित नारायण के। फिल्म का नाम है शतरंज।

आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म गोलमाल से। संगीत आर डी वर्मन के हैं, आवाज किशोर कुमार की, गीत गुलजार के।

0: श्रोताओं, अब वक्त है छोटे से ब्रेक का।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम सांझ सरगम में। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म सूर से, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आवाज़, लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत संतोष और आनंद की।

0: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
1: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 की मेजबान।
0: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
1: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
0: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
1: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म नराज का ये गीत सुनते हैं। संगीत अनु मलिक के हैं, गीत क्वातेल सिफाई के और आवाज कुमार शानू के।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में श्री प्रधान ने कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिया ताकि जंतर मंतर

0: और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें। राज्य में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SIR के अंतिम चरण के तहत निर्वाचन आयोग ने राज्य भर से कुल 17,56,000 अयोग्य मतदाताओं की पहचान की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में 2,00,000 से अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की गई है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर अंतर्गत कृष्णापुर गांव के रहने वाले आशीष कुमार दास को देश की अग्रणी IT कंपनी इन्फोसिस का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो 1 अप्रैल 2027 से 5 वर्षों के लिए यह कार्यभार संभालेंगे। उनकी इस ऐतिहासिक वैश्विक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने आज देवघर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित की जाए। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में आज 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जामताड़ा जिले की पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से 1 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 8 मोबाइल फोन, 7 फर्जी SIM कार्ड, 4 ATM और 31,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आई आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं। अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 सुनेगा कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चर्चा होगी लत्तेदार सब्जियों की खेती। संथाली लोकगीत सुनिएगा मोतीलाल सोरेन और साथियों के स्वर में। एक और मुंडारी लोकगीत होगा दुराई सिंह मुंडा और साथियों के स्वर में। 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। और 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। इसमें आज चर्चा होगी बरसात में शरीर की देखभाल। भेंटवार्ता सुनिए स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉक्टर रीना गुड़सोरा से, और इनसे बातें करेंगी आशा पिंगुआ।

6:55 में पर हम आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम, कार्यक्रम आपकी पसंद। 8:00 होगा हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे इस सप्ताह संसद में। 8:15 पर सुनिए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 पर आप सुनते हैं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसे रिले किया जाता है आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 10:00 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 10:11 होगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। और 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.7 MHz पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम गुलदस्ता का। तो गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवरेश कुमार सिन्हा।

0: और आइए सुनते हैं फिल्म रात के अंधेरे में। इस फिल्म का गाना आवाजें मोहम्मद रफी की है।
1: अगर बेवफा तुझको पहचान जाते खुदा की कसम

अभी आपने सुना फिल्म हिमालय की गोद में का गाना, आवाज़ें थी मुकेश की। और आइए सुनते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गाना, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

0: पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को आशा मनी गोप और
1: ठाकुर चंद्र मुर्मू का
0: जोहार। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। ठाकुर जी, प्रतिदिन की तरह हम कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं चर्चा से, लत्तेदार सब्जियों की खेती।
1: सारी कथा आशा मैं चेते हैं अड़ी हो बस कथा का नाचे सब्जियों की खेती विषय दिखाते हैं। लत्तेदार सब्जी में लिखा दो ना जहाँ नड़िया ना उतु को मिना करुला झींग इन सावते जहाँ पर मेता करना नेनुआ इन कुंदरी और उनका के अड़ी लिखना नड़िया जिनिस को मिना मैं खान नड़िया जिनिस को बांगबोन कोम्बोन चासर इदी कते अब जहाँ अलगाते हुई जिनिस बांगबोन छटर दड़िया करना तो नौ लगे हो जो तो खुन मांगते तो लगती कि ना जहाँ रबों रहो या उन्हें मतलब हसारे ऐसा पड़ा मिट्टी की तैयारी अड़ी लगती किया और उन्हें जहाँ रबों चासी है ना नौ चिकाते नहीं तो मां दा जड़ी करना दा मौसम करना बरसात रे मौसम करना तो उन्हें इधर कते उन्हें बेस से ही वरा शर्मा दा जहाँ हिजुक करना उन्हें लिंजी गिटी माँ उन्हें जमा आलो जमा मां दा को जीवनते उनका ना जगह करे वहाँ बचाओ माँ আর ইন সাথে লক্তি কেনাচে যত বেশ তো মাটি হাসা করে যাহা দমট মিট্টি বন মেতাগ নকান হাসা করে চাষ লেখান আগে নাপায়া তো জায়গা নেল কাতে আর নেলমা বিস্তি ওনে দা আলো জাওরা মা অনকান জায়গারে চাষ লক্তি আর সময় তো নিত চাষি বয়হা মেসি বরসাত ইয়ে কানা আদ জুন খন জুলাই ধাবি আবো চাষ দাঁড়া বন এহব দাঁড়া বন আর আবো ঠিক ফরওয়ারি আর মার্চ রে তাবন সাপড়া উনঝো ওনা রে কিমত বেশ নাম দাঁড়ে গো আর ইন সাথে চেলেকা মারাং জায়গা রে বন চাষ খান ওনা হো লাগতি কেনা চে প্রতি হেক্টর তিন ইত লাগতি তো নয়া হো আড়ি নাপাই জিনিস কানা তো নেল আপন আবো তিন মারাং জায়গা রে বন চাষ ওনা হিসেব তে ওনে বন সাপড়া যেন আমার খালা বিনা হই খানা বিনা হই আর ইন সাথে বন নেলা ওনা দূরি কমসে কম তাহেন মা আর ইন তায়ামতে আবো সাপড়া হই নয়া ঝাঁটা বাখরা চেকাতে ঝাঁটা বাংখান নয়া মারাং সে তাবো বাই লাহা ওত করে নড়ি এমানো জো বাহা আর মিদিন খান বরসাত রে সময় রে নয়া কো সেয়া দাঁড়ে গো তো নয়া হো আড়ি লাগতি গিয়া মানে আর বিচ বিচ রে যাহা মাচান বন বেনায় আছে মাচা বন বেনায় যাহা ঝাঁটায় আবন নয়া হো আড়ি লাগতি কেনা আর নেলনা চে সপ্তাহ রে বর্ধাওগান সিঁচাই লেখান আর হো নাপায়ো।
0: বিলকুল ঠাকুর জি, লতর লতর ওয়ালি সবজিওঁ কি খেতি কর হামারে কিসান ভাই বহন অশিক আমদানী কমা সকতে হ্যায়। সারি কথা জি। নেনুয়া, করেলা, টিন্ডা, পরবল, কুন্দরু ইয়ে সব ইন সবজিওঁ কো আপ পকা কর ভি খা সকতে হ্যায় অর কচ্চি সালাদ কে রূপ মে খীরা, ককড়ি, তরবুজ, খরবুজ ইয়ে সব হ্যায়। ठाकुर जी, इन सब्जियों को सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है इसकी खेती के लिए। इसकी खेती के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी बहुत ही ज़रूरी है और खेत तैयारी से के बाद गोबर की खाद इसमें देना बहुत ही अच्छा होता है। ठाकुर जी, अभी बरसात का मौसम है तो ऐसे में लतर वाली सब्जियों के लिए मचान का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो भूमि में फैलते हैं तो ऐसे में कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर हमारे किसान भाई बहन मचान बनाते हैं, सहारा देते हैं, तो इससे जो लत्तर वाली सब्जियों का जो पौधों का बढ़ना है वो अच्छी तरह से बढ़ेगा और इसके साथ ही जो फल है उसमें वो भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। और इसके साथ ही ठाकुर जी, इन दिनों खरपतवार जो उगाते हैं वो काफ़ी संख्या में उगाते हैं, तो ऐसे में जो पौधों का विकास है वो सही तरह से नहीं हो पाता है।

0: Jadi saya mesti kena tahu pada sekat kan tak nuah santali log gitte mutilal soren ar santen kuat separate. Ni tetan dala kerjakan mana sekat bon lahaya ar bon anjamnya oleh kanwa mil bar jeruri sandes ko.
1: यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं।

0: जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
2: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं, बातें हमारे जो खेल चलते तो बढ़िया।
1: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
3: हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
1: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई, 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
4: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
1: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
5: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
1: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
6: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ, मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
1: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
7: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही हैं, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही हैं।
1: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
8: चाषी बयामिसी को नितबन बड़ा तहन नवा संदेश तो दिलाबन कार्यक्रम आसत मन लहाय और बन आजम नवा भेंट वार्ता माध्यम ते मशरूम की खेती विषय इतिकते माने उ चेदे बन चाषा नवा विषय इतिकते नवा किन लय सुबोध सरदार तकिन आर किन सला गपालमारा रे मेना किना आसामनी गोप तकिन एनखान दिलाबन आजम नवा में गपालमारा
9: खेती से होने वाले लाभ इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाई बहनों को दीजिए।
10: मेरा नाम सुबोध सरदार है, मेरा गांव का नाम चीनी सिद्मा, पंचायत छोटा आजाना, जिला सरेकला खरसान।
9: आपका हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोहर
10: जोहर।
9: आप मशरूम की खेती कब से कर रहे हैं?
10: पिछले साल से कर रहे हैं
9: जी, लगभग एक साल हो गया है
10: जी।
9: मशरूम की खेती के लिए सबसे पहले किन चीज़ों की आवश्यकता होती है?
10: घर की ज़रूरत होगा
9: जी,
10: पुआल, उसके बाद बीज, वही सब की ज़रूरत होगा।
9: अच्छा, तो जिस घर में आप प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके साफ सफाई पर क्या ध्यान देते हैं?
10: साफ सफाई करना होगा अच्छा से
9: जी,
10: उसके बाद ही कर सकते हैं
9: जी। मशरूम की खेती करने के लिए सबसे पहले आप किस तरह की प्रक्रिया को अपनाते हैं?
10: पहले साफ सफाई करना पड़ता है
9: जी,
10: उसके बाद पुआल जुगाड़ करना पड़ता है, और मशरूम के लिए उसका बीज मिलता है उसका भी जुगाड़ करना पड़ता है
9: जी। तो ये पुआल के लिए बेड बनाते हैं?
10: पुआल के लिए बेड बनाया जाता है।
9: अच्छा, वो लगभग कितने बाय कितने का बनाते हैं?
10: डेढ़ बाय डेढ़।
9: अच्छा, उतना बनाते हैं
10: जी।
9: तो लगभग कितना बनाए हुए हैं?
10: एक लाइन में कम से कम 20-20 बनाए हैं।
9: अच्छा,
10: छह को बनाए हैं, छह को बनाए हैं,
9: उतना बनाए हुए
10: जी।
9: इसके लिए जो शुरुआती प्रक्रिया है वो किस तरह से करते हैं, इसकी जानकारी आप हमारी किसान भाई बहनों को दे दीजिए।
10: जी, इसके लिए सबसे पहले आपको सफाई करना होगा जिस रूम में आप कर रहे हैं, वैसे हवा वाला जरूरत होगा, हवा वाला रूम।
9: अच्छा, हवादार रूम होना चाहिए।
10: हवादार रूम चाहिए, उसको अच्छा से सफाई करना पड़ेगा, फिर ईटा देना पड़ेगा, ईटा के बाद बांस देना पड़ेगा, बांस जो ये वाला
9: कच्चा बांस या ऐसे सूखा वाला बांस इस्तेमाल करते हैं
10: जो फाड़ के पतला। अच्छा, पतला करके उसको बिछाना होगा।
9: अच्छा,
10: बिछाने के बाद पुआल को कटना होगा, एक फिट करके काटना होगा, ये करना होगा, उसको थाकी करके देना होगा अच्छा से
9: जी,
10: और उसके बाद बीज देना होगा, बीज के बाद में और पुआल देना होगा, अभी उसके बाद तिरपल देना होगा, तिरपल वो जो प्लास्टिक रहता है, प्लास्टिक उसमें देना होगा बीज देके
9: जी,
10: और उसको उठा उठा के थोड़ा सा पानी देना होगा 2-3 दिन।
9: अच्छा, इस तरह की प्रक्रिया अपनाने के बाद फिर सिंचाई करना ज़रूरी है
10: जी।
9: तो लगभग सिंचाई कितने दिनों तक करते हैं?
10: लगभग 2-3 महीना ऐसे चलता है।
9: अच्छा,
10: फिर मतलब एक बार हुआ ना, जैसे एक बार हुआ फिर निकला, फिर अलग जगह फिर करेंगे, वैसे ही मतलब सीढ़ी बाई सीढ़ी एक जगह किए और वो सब हो रहा है, फिर एक जगह दे देंगे, वो वाला होगा, हो जाएगा, फिर ये वाला बनते रहेगा, वैसे करते हैं हम लोग तो सीढ़ी बाई सीढ़ी।
9: अच्छा, एक तैयार हुआ तो फिर दूसरे के लिए?
10: दूसरा के लिए तैयार करते हैं,
9: तैयार करते हैं,
10: वैसे सीढ़ी मतलब रुकना नहीं चाहिए।
9: तो ये बीज देने के बाद फिर अंकुरण लगभग कितने दिनों के बाद हो जाता है?
10: 10-11 दिन में हो जाता है, 10-11 दिन में निकल जाता है।
9: अच्छा, और इसको तो बड़ा होने में लगभग एक ही दिन का समय लगता है
10: जी? अंकुर होने में थोड़ा सा लेट लगता है।
9: अच्छा,
10: मतलब प्लास्टिक को उठा उठा के 2-3 दिन पानी देना पड़ता है, उसके बाद अंकुर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो ये होता है ना मशरूम बनने में तुरंत बन जाएगा, एक बार पुंग होने में ही उसका जितना प्रोसेस लेट होता है उसी में।
9: अच्छा, ये जो प्रक्रिया है उसी में थोड़ा सा समय लगता है, बीज को अंकुर होने में बस समय लगता है और उसके बाद वो तुरंत हो जाता
10: है जी, मशरूम तुरंत ये हो जाता है, बन जाता है।
9: ये अंकुर होने के बाद जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर इसको आप किस तरह से तोड़ते हैं?
10: हाथ से ही तोड़ते हैं
9: जी।
10: हाथ से तोड़ते हैं फिर बाजार में सेल कर देते हैं।
9: अच्छा, आपके यहाँ नजदीकी बाजार कौन सा है?
10: बाजार इसे तो सरायकेला में ही है
9: जी।
10: सरायकेला में अच्छा रेट मिल जाता है उधर गमारिया तरफ में
9: जी,
10: तो यहीं पर करते हैं। उधर जाने में भी थोड़ा दिक्कत होता है।
9: और लगभग एक बेड आपका तैयार हुआ तो फिर दूसरा में फिर उसका जो प्रक्रिया है वो जारी रहता है?
10: जी जी हाँ, वैसे ही मतलब एक में हुआ जैसे एक गो हो रहा है ना
9: जी।
10: तो मतलब अलग और बनाए रहते हैं, जैसे ये वाला ख़त्म हुआ तो वो वाला रेडी हो जाएगा, फिर वो वाला ख़त्म हुआ फिर अगला वाला रेडी हो जाएगा, वैसे ही हम लोग का चलता है सीढ़ी बाई सीढ़ी।
9: ये तो बहुत अच्छा है, मतलब ये रुकने का नाम नहीं लेता है, ये लगातार ही चलते रहता है।
10: जी जी, लगातार ही चलते रहता है।
9: और लगभग ये कितने महीनों तक आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं?
10: हम लोग तो इसे हम लोग ज़्यादा दिन नहीं किए हैं, 3 महीना 4 महीना वैसे ही करते हैं। अभी जैसे जून में शुरू किया, अभी चलते रहेगा, जून जुलाई अगस्त वैसे चलते रहेगा।
9: लगभग 4 महीना तक?
10: 4 महीना तक, हाँ 4 महीना तक कर लेते हैं।
9: अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है कि एक बार जब ये प्रारंभ करते हैं तो लगभग 4-5 महीना तक आप अच्छी तरह इससे लाभ ले सकते हैं। सिंचाई लगभग सुबह शाम करते हैं या किस तरह करते हैं?
10: हाँ, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा देते हैं पानी, थोड़ा थोड़ा दे देते हैं।
9: अच्छा।
10: और फिर ढकना पड़ता है तिरपाल से, तिरपाल से प्लास्टिक से ढक देते हैं, फिर पानी जैसे ही दिए फिर ढक देते हैं। मतलब भाप टाइप का होता है ना, गैस टाइप का बनता है, उससे गैस से ही ये होता है, और बीच मतलब ये मशरूम निकलता है उसी से।
9: जिस आवास में आप इसको कर रहे हैं तो उस आवास में बिजली की क्या सुविधा है? वो लाइट भी लगाते हैं क्या?
10: लाइट वैसे लाइट का आवश्यकता नहीं होता है।
9: अच्छा।
10: मतलब वो हवा का आवश्यकता हो गई, जितना ये रहेगा फैलावट हवादार जगह उतना अच्छा है उसके लिए।
9: जितना वो हवादार कमरा रहेगा उतना अच्छा है,
10: उसमें गैस नहीं बनने देता है।
9: अच्छा।
10: अगर गैस होगा तो गैस होने से तो फिर दिक्कत होने खोजता है।
9: हाँ, खराब होने का संभावना रहता है।
10: हाँ, खराब होने का संभावना रहता है।
9: मशरूम की खेती से आपको किस तरह का लाभ मिल रहा है?
10: लाभ अच्छा ही हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है।
9: लगभग इसमें कितना आमदनी कर लेते हैं?
10: आमदनी लगभग का बोल पाएंगे, अभी तो मार्केट में अच्छा ही चल रहा है, रेट अच्छा रहेगा तो अच्छा ही होगा। अभी 600 रुपया चल रहा है तो अभी निकालते तो अच्छा होता, तो थोड़ा सा अभी हम लोग तो शुरू कर रहे हैं तो लेट होगा थोड़ा, तो 300 रुपया होने से भी हो जाएगा, अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा ही होता है।
9: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए ना आपको बाहर जाना है, बस आप घर में ही अच्छी तरह से आप कर सकते हैं।
10: जी जी।
9: हमारे किसान भाई बहन अगर मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
10: सबसे पहले वो लोग को अच्छा पुआल देना पड़ेगा, सड़ा वाला नहीं, अच्छा क्वांटिटी वाला, अच्छा ये वाला, अच्छा पुआल देना होगा, क्वालिटी वाला। सबसे पहले जो खेती करते हैं, जो कृषि करते हैं, पुआल बचा हुआ रहता है उसको अच्छा से रख के अभी का सीजन में उसको ये के लिए उपयोग कर सकते हैं, मशरूम उत्पादन के लिए। इसमें सबसे पहले हवादार कमरा होना चाहिए, उसके बाद सिंचाई में ध्यान देना होगा।
9: और जो ये पुआल है इसमें भी ध्यान देते हैं, किस तरह का पुआल होना चाहिए?
10: जी, इसमें देते हैं ध्यान, अच्छा वाला पुआल देना पड़ेगा।
9: अच्छा।
10: होने से उत्पादक ज़्यादा होगा।
9: अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा है, मतलब इसमें भी पुआल को विशेष ध्यान देना है, इसमें भी अच्छा पुआल ही इस्तेमाल करना चाहिए जिससे उत्पादन अच्छा होगा।
10: जी।
9: अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
10: संदेश यही देना चाहते हैं कि मतलब करें सब कोई, ऐसे भी हम लोग मुर्गी पालन बकरी पालन तो करते ही हैं, साथ में इसको भी करने से अच्छा ही होगा, अच्छा पैसा है इसमें भी, वही पुआल घर का पुआल में ही होगा सब कुछ, घर का पुआल है, घर का बांस रहने से तो अच्छा ही है। जितना खर्च होगा वो बीज का, बीज लाने में जितना खर्च होगा उसी में खर्च होगा, पैसा तो अच्छा ही है इसमें, वही अभी ज़्यादा लोग जुड़ने से अच्छा ही होगा, सब करें अभी किसान भाई, वही मैं कहना चाहता हूँ।
9: मशरूम की खेती से होने वाले लाभ, इस विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए हम आपका पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोहार।
10: जी, जोहार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल

0: कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
1: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
0: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
4: जैसे हम इसी को नेता बन बढ़ाए थे मीन बनवा जरूरी संदेश को निय संदेश सौती के तेहिया चास पास अखड़ा किसान वाणी नोड़े गए किचे दो करना मां तेहिन लगे अली ठाकुर चंद्र मुर्मू
5: और आशा मणि गोप को दीजिए विदा जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

समाचार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ में पूनम करकेट्टा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। हजारीबाग जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित मासिक लोक अदालत में आपसी सहमति से 90 मामलों का निपटारा किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्रा की देखरेख में आयोजित इस लोक अदालत में कुल 24,92,908 रुपए के दावों का समझौता हुआ। त्वरित सुनवाई के लिए 8 बेंच गठित की गई थी। गोड्डा में जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयास से आज जनसंवाद सह ऑपरेशन मुस्कान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 22 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन वापस सौंपे गए। रामगढ़ पुलिस ने अवैध ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 13 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन तथा अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। और रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कृषि एवं अन्य समवर्गीय पाठ्यक्रम 2028 के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में कल सुबह 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहने का आदेश जारी किया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रमेश दास। कैसे हैं श्रोताओं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जी हाँ, बरसात का मौसम आ ही गया। हम यूं कहें कि बरसात का मौसम है, लगातार बारिशें हो रही है। ऐसे में जो बरसात के मौसम में शरीर को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए हमें जरा सचेत रहना होगा। इसके लिए श्रोताओं, त्वचा की सफाई, खान पान की शुद्धता और फसल या हम यूँ कहें कि फंगल संक्रमण से बचाव पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। इस दौरान हवा में नमी अधिक होती है, जिससे बैक्टीरिया और बीमारियां आसानी से फैलती है। अब बातें होती है कि हम त्वचा और शरीर की देखभाल हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा कि नियमित सफाई करें, उमस और पसीने से बचने के लिए दिन में दो बार हल्के हम यूँ कहें कि बॉडी वॉश से शरीर और चेहरा साफ रखें। फंगल संक्रमण से हमें बचना होगा, इसके लिए बारिश में भीगने के बाद तुरंत कपड़े बदलें और त्वचा को पूरी तरह से सुखाएं ताकि खुजली या रैश ना हो। खासकर अगर हम अपने श्रोताओं से कहें कि बरसात के मौसम में सूती कपड़े पहने, जो हवादार और ढीले पहने, जो पसीना सोख सके और त्वचा को सांस लेने में दिक्कत ना हो। और अगर खान पान की हम बातें करें तो उबला पानी पिए, हल्का भोजन करें और इम्यूनिटी बढ़ाएं। इसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखने के लिए अदरक और तुलसी की चाय या काढ़ा जरूर पिएं। श्रोताओं, कुछ और हम जानकारी लें, उससे पहले आइए हम कुछ महत्वपूर्ण संदेश सुन लें।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेगी आम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोरा को गांव वाले जरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तब घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
5: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनिता काम सोए भरूपा ऐसे ना करना ऐसे दुकुरे में ना ये जापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
6: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मुनि में बुरी ने बागिया तो किये दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे बुरुरम को यहाँ तबो जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिटा हुरा इनका अली आया नु तुम ते ना मिल आप ही लेते ना
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्म

0: राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद जब हमने शुरुआत में ही कहा कि ये बरसात का मौसम है, तो क्यों ना एक बरसात पर ही कुछ गीत सुन ले, तो आइए सुनते हैं ये फिल्मी गीत।

श्रोताओं, इस गीत के बाद आइए हम कुछ और विशेष जानकारी लेते हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग के बारे में। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर रीना गोटसोरा।

0: रीना गौड़सोरा मुर्मू और आज मैं सदर में कार्यरत हूँ।
1: जी हाँ, तो रीना जी, आपने बहुत सारा कोर्स किया है और हमें आपसे बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी, लेकिन सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के बारे में आप, चूँकि आप इस पर पढ़ाई भी की है और उस पर आप विशेषज्ञ भी हैं, तो सबसे पहले आप क्या बताना चाहेंगी?

0: देखिए, वैसे तो मैं स्त्रियन प्रसूति रोग, इसका मतलब है कि जितनी भी महिलाएं हैं उसके जो महावारी जब से शुरू होती है,
1: हाँ
0: कह सकते हैं यंग एडोलेसेंस से,
1: हाँ
0: उसके बाद जो गर्भवती होती है और उसके बाद जो महीना बंद हो जाता है जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं,
1: अच्छा हाँ
0: उसके बाद भी जो वैसी लेडीज़ को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देना हमारा टारगेट होता है, हमारा लक्ष्य होता है, हर अलग अलग एज ग्रुप में। जैसे यदि हम बच्चों के एज ग्रुप में देखें, या यौन अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में देखें, तो उन लोग की मासिक धर्म संबंधित
1: अच्छा
0: जो समस्याएं होती हैं उसका एक अलग ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस होता है।
1: जी हाँ
0: फिर जो प्रसूति रोग होता है, जो मिडिल एज ग्रुप रहता है, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, उनका एक अलग मतलब समस्याएं होती है, क्योंकि एक नॉर्मल प्रसव के साथ साथ बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि साथ में मेडिकल इलनेस उसमें एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं जिसको डायबिटीज़ का खतरा रहता है आज के
1: अच्छा
0: एज में, आज के डेट में, और फिर देखते हैं कि बहुत सारी लोगों को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम रहता है, बहुत लोगों को श्वास संबंधी प्रॉब्लम होता है जिसको ब्रोंकियल आस्थमा कहते हैं, और साथ में ब्लड संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर के रोग होते हैं, साथ में कुछ ऐसे होते हैं जिनको साथ में ट्यूमर या फिर कुछ सर्जिकल इश्यूज होता है। बहुत सारी महिलाएं हैं जैसे कि साथ में अपेंडिक्स का भी प्रॉब्लम से दर्द से जूझ रही हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन के उससे भी जूझ रही हैं, और साथ में किडनी स्टोन हो गया उससे भी जूझ रही हैं। तो सबका मैनेजमेंट अलग अलग होता है। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं अब इस एज ग्रुप में, जैसे कि जो गर्भ गर्भ गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, तो वो एक समस्या अलग है जो कि अपने आप में काफ़ी विस्तृत, उसके बारे में चूंकि अभी यदि हम लोग कहें तो मैंने तुरंत से उसकी हम लोग डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही विस्तार में उसका डिस्कशन करना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं भी हैं आजकल, जो खान पान और रहने का स्टाइल, जो हम अपना जो फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से, और हमारा लाइफ स्टाइल जो चेंज हो गया है खान पान की वजह से, हम और लेट मैरिज जो हो रही है, जो महिलाएं हैं जो सोचती हैं कि मतलब पहले अपने कैरियर को बना लूँ, उसके बाद हम अपना शादी करें और उसके बाद गर्भ धारण करें, तो वैसे महिलाओं में भी कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम एज के साथ मिलती हैं, जैसे बच्चादानी में गांठ होना, चाहे एंडोमेट्रियोसिस जिसमें कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, आप बहुत बार अल्ट्रासाउंड में सुनते होंगे कि चॉकलेट सिस्ट मिला,
1: अच्छा
0: मतलब उसमें ब्लड भरा हुआ सिस्ट होता है, या एडेनोमायोसिस जो कि बहुत पीरियड के दौरान, मासिक धर्म के दौरान बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, जो किसी टैबलेट से नहीं सुनता है, इंजेक्शंस देने की नौबत आ जाती है। वैसे
1: जी
0: लोगों
1: हाँ
0: को गर्भ धारण कराने में मतलब बहुत मेहनत लगता है, उसमें बहुत बार हमें ऑपरेशन का भी नौबत आता है, तो वैसे महिलाओं को भी मैं देखती हूँ, और साथ में जो मेनोपॉजल लेडी हैं,
1: हाँ
0: क्योंकि क्या होता है कि मेनोपॉजल एक महीना होना, महावारी होना एक अच्छी बात है महिलाओं के लिए,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन जब वो हार्मोनल, जब ये इश्यूज मतलब जब मेनोपॉज हो जाता है, तो हार्मोन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हम लोग को बहुत बार बाहर से उस हार्मोन को देना पड़ता है। उससे एसोसिएटेड क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं को आप देखेंगी 45-50 के एज में जब मेनोपॉज होने लगता है, तो उन लोगों को देखेंगे कि वो पैर हाथ में झिनझिनी लगता है, उनको
1: अच्छा
0: बहुत हॉट फ्लैशेस होता है, कभी ठंडा कभी गर्म कहेंगी, और फिर वैसी महिलाओं में हड्डियां भी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, कभी भी गिरती हैं तो फ्रैक्चर का बहुत इश्यूज होता है,
1: जी हाँ
0: हार्ट की बीमारी का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर स्किन का जो इलास्टिसिटी होता है वो भी, झुर्रियाँ बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, तो एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, चूँकि उनको भी हक है अच्छे से लाइफ जीने का, तो उस हिसाब से हम उनको भी इलाज देते हैं।
1: अच्छा रीना जी, हम गांव की तरफ चलते हैं,
0: जी
1: जो कि गांव में अभी तक लोग ज़्यादा शिक्षित अभी के इस हिसाब से नहीं हैं। तो कब शादी होनी चाहिए, कब गर्भ धारण करना चाहिए, खासकर उम्र उनको बताइए कि किस उम्र में गर्भ धारण करना सही रहता है।
0: जी जैसे कि आप देख सकते हैं कि 18 से आप शादी का एज जो है वो 18 से, कोई भी महिलाएं 18 के बाद शादी करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जो ग्रोथ होता है वो एक नॉर्मल, एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या महावारी का जो चक्र होता है वो नॉर्मल हो जाता है। बहुत बार हम, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 14-15 साल या 16-17 साल की महिलाएं आती हैं और बहुत परेशान होकर के आती हैं, उसकी मम्मी लेकर के, माता लेकर के आती हैं लड़कियों को, कि कहती है कि मैडम इनको जो है हर महीने महीने महीना नहीं हो रहा है, तो वैसे में हम, क्योंकि क्या होता है कि एक हाइपोथैलमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होता है, हमारा बॉडी में जो भी महीना होता है वो हमारा बॉडी का जो भी एक्टिविटी है वो सारा ब्रेन से रेगुलेट होता है। तो ब्रेन में हाइपोथैलमस पिट्यूटरी होता है, वहाँ से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें बताता है कि यूट्रस को काम करना है, और तब बच्चेदानी के रास्ते हमारा ब्लीडिंग होता है और जिसको हम माहवारी के रूप में देखते हैं। तो
1: अच्छा
0: शादी करने की प्रॉपर एज आज के डेट में मुझे लगता है कि 18 से 30 साल तक तो हो ही जाना चाहिए, और गर्भधारण भी इसी एज में कर लेना चाहिए।
1: जी हाँ
0: जी, और जैसे आपने गांव के समस्याओं के बारे में बोला, तो मैं जैसे अभी चाईबासा सदर में कार्यरत हूँ, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। गर्भधारण के बारे में यदि मैं बताऊँ तो बहुत सारी महिलाएं हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब गर्भधारण करना, ये जो बच्चा पैदा करना, एक अपने आप में कहते हैं कि एक औरत का दूसरा जन्म होता
1: जी
0: है।
1: हाँ
0: तो ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे में पूरे घर के सब सदस्य बहुत एक्टिव रहते हैं कि हाँ बच्चा आ रहा है, तो एक खुशी अलग, उसका माहौल एक अलग होता है। लेकिन चाहे दूसरा बच्चा हो चाहे तीसरा बच्चा हो, हर बच्चे में आपको उतनी ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो एक्चुअली ये इसलिए गर्भधारण के समय में हम एंटीनेटल चेकअप बोलते हैं। तो गर्भधारण के समय में हर महीने महीने जो है WHO के हिसाब से हम लोग प्रेगनेंसी को यदि वीक्स में कहे तो 28 वीक तक, मतलब शुरुआत से लेकर के 28 28 हफ्ता, 28 हफ्ता मतलब 7 महीने तक हम कहते हैं कि हर महीने महीने आप डॉक्टर के पास जाइए
1: जी
0: दिखाने
1: हाँ
0: को। 28 से फिर 32, 32 मतलब कि 8 महीना, 7 से 8 महीने में आप 2 से 3 हफ्ते में डॉक्टर के पास जाइए, और 8 महीने के बाद जो मतलब जो डिलीवरी का डेट होता है, तब तक में आपको 14 दिन में 10 दिन में आपको रेगुलरली जाना चाहिए।
1: जी हाँ
0: और चूंकि आप फ्रिक्वेंटली जब जब आप जाएंगे तभी आपको एक ग्रेजुअल एक मॉनिटरिंग होता है कि मरीज में किस चीज़ की कमी हो रही है और हमको कहाँ किसको भरना है उस कमी को, ये चीज़ हम कर पाते हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं कम से कम इतना चेकअप होता है, तो फिर हर महीने महीने जो होता है कि आप उसको शुरुआती 3 मंथ्स में, 3 महीने में हम उनको फॉलिक एसिड और कुछ उल्टियाँ होती हैं
1: अच्छा
0: तो उसके लिए कुछ टैबलेट्स देते हैं। शुरू का जो 3 मंथ्स होता है प्रेगनेंसी को, जो गर्भधारण का जो समय होता है, गर्भवती का जो समय होता है, वो हम उसको बराबर बराबर 3 भागों में बांटते हैं।
1: अच्छा
0: शुरू का जो 3 महीना होता है उस टाइम हमें, जब हम डॉक्टर के पास गए तो कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट जैसे होता है कुछ टेस्ट हमको कर लेना है, जैसे सारा ब्लड का काउंट हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, ब्लड शुगर हो गया, आपको थायराइड का पूरा प्रोफाइल हो गया, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन हो गया, पेशाब का टेस्ट हो गया, उसके बाद आपको सिम्टम के हिसाब से कुछ है तो उसके हिसाब से कुछ टेस्ट कर लिया हमने, HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, VDRL, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सब चीज़ों को देख करके हमें सब सारे टेस्ट को कर लेना चाहिए। और उसके साथ ही जब भी पहली बार वो आती हैं तो उनको तुरंत ही एक अल्ट्रासाउंड का स्कैन कर लेना चाहिए। बहुत बार शुरुआती टाइम में ऐसा होता है कि प्रॉपर बच्चा आपको रहता नहीं है, मतलब जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से बहुत बार अंदर में बच्चादानी के अंदर में थैला तो दिखता है, जिसके वजह से पेशाब में टेस्ट पॉजिटिव आता है, और पेशेंट सोचते हैं कि चलो मेरा तो ठीक है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, लेकिन वैसा बच्चा चूंकि जिसके अंदर में थैला है उसके अंदर बच्चा नहीं है, समझिए मतलब एक रिंग बनता है जिसको हम जेस्टेशनल सैक बोलते हैं, और उसके अंदर यदि बच्चा नहीं है तो वो तो गर्भपात हो जाता है उनका। तो फिर जब ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, जब रक्त स्राव शुरू हो जाता है, तब मरीज आती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि जब पेशेंट सोचती है कि मैंने भारी काम कर लिया, मैंने वो कर लिया, इसलिए जितना भी हो सके जितना जल्द से जल्द हो एक स्कैन आपको कर लेना चाहिए। और यदि मैं अल्ट्रासाउंड की बात कहूँ तो पूरे 9 महीने में 5 अल्ट्रासाउंड हम कहते हैं कि पहले विजिट में, दूसरा एक 3 मंथ्स पे हम लोग करते हैं, 3 3 महीने में, बेसिकली हम लोग क्राउन रम्प लेंथ कहते हैं, मतलब बच्चे का सिर से ले करके कमर तक का जो भी एक लेंथ रहता
1: अच्छा
0: है
1: अच्छा
0: उसको हम क्राउन रम्प लेंथ कहते हैं, CRL। वो हम टेक्निकली यदि देखें तो 48 से 84 mm तक में हम लोग एक NT-NV स्कैन करते हैं, जिसमें गर्दन के पीछे का पानी और नाक का हड्डी देखते हैं। यदि ये बढ़ा हुआ है और नाक का हड्डी एब्सेंट है तो हम ये समझ जाते हैं कि ये सर डाउन सिंड्रोम का बच्चा है। उसी के साथ फिर हम साथ में मार्कर टेस्ट करते हैं, और फिर एक अल्ट्रासाउंड होता है कि आपको 5 महीने में होता है, जिसको हम Level 2 स्कैन करते हैं, कंजेनाइटल एनोमली स्कैन कहते हैं, जिसमें बच्चा में किसी तरह की विकृतियां हैं, चाहे वो ब्रेन में हो,

0: हार्ट में हो, चाहे बॉडी के किसी भी अंग में हो, शरीर में हो, तो उस हिसाब से हम करते हैं। और वो करने के बाद हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि ये बच्चा यदि शारीरिक रूप से विकृत है तो इसको हम अबॉर्शन कर सकते हैं,
1: अच्छा
0: क्योंकि एमटीपी के लिए भी नियम है कि 24 वीक्स तक आप लीगली बच्चे को गर्भपात करा सकते हैं, तो वो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। उसके बाद 7 महीने में कम से कम एक ग्रोथ स्कैन बोलते हैं कि
1: जी हाँ
0: बच्चा समय के साथ बढ़ रहा है कि नहीं, और एक आखिरी वक्त में डिलीवरी से 1 महीना पहले, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रॉपर बच्चे का ग्रोथ है कि नहीं, और प्रॉपर पेट में पानी है या नहीं, और किसी तरह का गर्दन में कोई नाल तो नहीं है, जिसकी वजह से हम डिलीवरी को थोड़ा प्लान कर सकें।
1: अच्छा
0: जी, और ये तो अल्ट्रासाउंड की बात हो गई। साथ में जैसे मैंने बताया, ये सब टेस्ट जो शुरुआती 3 मंथ्स में हुआ, और बीच के 3 मंथ्स में ब्लड शुगर वगैरह रिपीट करते हैं, और जैसे कोई यदि कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स है, जैसे किसी को पूरे बदन में खुजली हो रही है, सांस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसी हिसाब से ज़रूरत पड़ता है तो हम हार्ट की ECG और इकोकार्डियोग्राफी, जिससे
1: अच्छा
0: बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को पता नहीं चलता है और हार्ट का प्रॉब्लम होता है, माइटल स्टेनोसिस, माइटल रिगर्जिटेशन, जो खास करके डिलीवरी के दूसरे दिन, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन हो, तो वैसे पेशेंट को सांस में बहुत दिक्कत होती है और ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है। तो ये सब जागरूकता का विषय है, क्योंकि अभी तो नॉर्मल चेकअप में ही लोग, बहुत लोग ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, बट हमारा काम है कि ये बताना, और मैं ताकि सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस चीज़ को करें।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो इसके साथ ही हमारा आज का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम भी समाप्त होता है। अगले बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे ये रमेश दास को विदा दें। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बातों का ध्यान।
1: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
2: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो

0: 1000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार थोड़ी।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से दिया इस्तीफा। केंद्र से वार्ता के बाद सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की समीक्षा की। राज्य के सभी जिलों को 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन फेज का कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने देवघर में राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर दिया जोर। राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में शामिल हुए मुख्य सचिव अविनाश कुमार, पैक्स के कंप्यूटरीकरण समेत 15 एजेंडों पर हुई चर्चा। और रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में निकली घुरती रथ यात्रा। मौसीबाड़ी से मुख्य मंदिर पहुंचे भगवान जगन्नाथ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा मांगे मान लिए जाने के बाद सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की बातचीत की। श्री नड्डा ने बताया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर चर्चा की गई।
1: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
0: वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने जंतर मंतर से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की और उम्मीद जताई कि तय शर्तों को समय सीमा के अंदर पूरा किया जाएगा।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग की।
3: जातिवाद, भारत माता के टुकड़े, गैंग, वामपंथी, आप जैसी पार्टियां आज छात्रों के नाम पर छाती पीट रहे हैं। जिस तरह हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र मांग रहे हैं, तो झारखंड में जो इतने पेपर लीक हुए, भर्ती घोटाला हुए, कांग्रेस जवाब दे, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार आपकी है, यहाँ क्यों किसी से इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा?
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की समीक्षा करते हुए सभी जिलों को 29 जुलाई तक एन्यूमरेशन फेज का कार्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के मतदाता सूची में दर्ज झारखंड के मतदाता 5 अगस्त के बाद फॉर्म 8 और घोषणा पत्र भरकर अपना नाम झारखंड की मतदाता सूची में स्थानांतरित करा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पात्र मतदाताओं से एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जल्द बीएलओ को जमा करने की अपील की ताकि उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हो सके। रांची जिले में आरटीए अधिनियम 2009 के तहत सत्र 2026-27 की प्रवेश परीक्षा के रिक्त 25% सीटों पर द्वितीय चरण के ऑनलाइन आवेदन 27 जुलाई से 2 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। द्वितीय चरण में केवल वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने पहले आवेदन किया था और जिनका आवेदन जांच के बाद योग्य पाया गया है। विद्यालय वार रिक्त सीटों का विवरण जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा ऑनलाइन लॉटरी 5 अगस्त को समाहरणालय रांची में आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आज देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सावन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता और सुगम जलार्पण व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। मंत्री ने यात्री सुविधाओं, यातायात और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय से समयबद्ध ढंग से तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया।
4: जो गलतियां थी उनसे सबक लेते हुए इस बार और व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास है। उसी क्रम में हम लोग निरीक्षण के लिए घूम रहे हैं। तैयारियों की स्थिति यह है कि 90-95% काम हो चुका है, 4 दिन अभी बचे हैं और 100% काम हो चुके होंगे और उस समय तैयारियां हो चुकी।

0: राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य सहकारी विकास समिति की चौथी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता क्षेत्र के विस्तार और सुदृढ़ीकरण से जुड़े 15 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा हुई। इस दौरान पैक्स के कंप्यूटरीकरण, विकेंद्रीकरण, अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट, दूध और मत्स्य उत्पादक समितियों के गठन तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से सहकार से समृद्धि पहल के प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। रांची में कल आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कृषि एवं अन्य समवर्गीय पाठ्यक्रम के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संचालन के लिए जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। बता दें कि रांची के 11 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होने वाली है। जामताड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर आज व्यवहार न्यायालय सभागार में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने बच्चों के अधिकार, पोक्सो अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
1: और जब हम पॉक्सो की बात करते हैं तो कहीं कहीं ये भी 15G से रिलेटेड है, इसलिए हमको आज बच्चों के प्रति ज्यादा सेंसिटाइज होने की जरूरत है। बच्चों के प्रति जो पेंडेंसी बढ़ती जा रही है केसेस की, हमको एक्स्ट्रा ज्यादा जेंडर फ्रेंडली होना है। और उसमें सबसे बड़ा रोल अगर हम देखें तो फर्स्ट कोर्ट हमारी क्या है, फर्स्ट अगर कोई सामने आता है तो पुलिस आती है, तो पुलिस को ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत है।
0: रांची के धुर्वा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज घुरते रथ यात्रा के साथ भगवान जगन्नाथ मौसीबाड़ी से मुख्य मंदिर में विराजमान हो गए। इस दौरान रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। देर शाम तक मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। राजधानी रांची में मोराबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में कल से डोरंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। पहला मुकाबला जमशेदपुर एफसी और श्रीलंका के डिफेंडर्स एफसी के बीच खेला जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर रांची के लोगों में उत्साह का माहौल है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से दिया इस्तीफा। केंद्र से वार्ता के बाद सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की समीक्षा की। राज्य के सभी जिलों को 29 जुलाई तक एन्यूमरेशन फेज का कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने देवघर में राजकीय श्रावणी मेला की तैयारियों का लिया जायजा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर दिया जोर। राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में शामिल हुए मुख्य सचिव अविनाश कुमार। पैक्स के कंप्यूटरीकरण समेत 15 एजेंडों पर हुई चर्चा। और रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में निकली घुरती रथ यात्रा, मौसीबाड़ी से मुख्य मंदिर पहुंचे भगवान जगन्नाथ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
1: गढ़वा जिले में वर्षा ऋतु शुरू होते ही विभिन्न सरकारी और समाजसेवी संगठनों द्वारा चारों ओर पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। पिछले दिन CRPF 172 बटालियन द्वारा बूढ़ा पहाड़ के आसपास के गांव में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया, साथ ही ग्रामीणों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर प्रतिक्रिया देते हुए CRPF 172 बटालियन के कमांडेंट अजय वर्मा ने कहा कि
2: विकास की जैसे जैसे रफ्तार बढ़ती जा रही है, सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण का हो रहा है। जो हमारी प्राकृतिक वातावरण है वो नष्ट होता जा रहा है, और उससे क्या हुआ है, जंगली जानवर कम हो रहे हैं, उनकी प्रजातियां खत्म हो गई, पक्षी खत्म हो गए, नदी नाले सूख रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी ऐसे किसी अभियान में जुड़ने का मौका मिले, चाहे एक ही पौधा लगाइए जरूर।
1: फिजिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन गढ़वा के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय स्थित इंडोर स्टेडियम में स्कूल फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया है। इसमें एक दर्जन से अधिक जिला की टीमें भाग ले रही हैं। इसकी जानकारी देते हुए जिला खेल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि
3: ये टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट है ग्रास रूट लेवल से बच्चों को उठाना, जिसके लिए इनको टूर्नामेंट मिलेगा तभी ये परफॉर्म करेंगे, और इतना अच्छा हमारे पास मैदान होने के बावजूद ये बच्चे कभी खेल नहीं पाते थे, इसलिए ये टूर्नामेंट किया गया और इसको लंबा ड्यूरेशन का इसलिए रखा गया ताकि बच्चों को नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा मिले, एक्सपीरियंस हो, टेक्निक सीखें, टैक्टिक्स सीखें और ट्रेनिंग लें और बेहतर से बेहतर कर सके, और यहाँ से गढ़वा जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए आगे राज्य में जाएं, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे।
1: भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले दिन JPSC में कथित अनियमितता के खिलाफ जिला मुख्यालय गढ़वा में एक मशाल जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि
4: देखिए JPSC में बहुत बड़ा घोटाला, यहाँ के राज्य सरकार के मिली भगत से, राज्य सरकार अपना पर्सनल कोर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए अरबों रुपया का वारा नारा हेमंत सरकार द्वारा किया गया। जिस एजेंसी को एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का जिम्मा मिला था, हरियाणा की कंपनी को मिला था, और आपको पता है 600 नौजवान हरियाणा के लोग यहाँ पर क्वालिफाई हो गए। आज यहाँ के पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, नौजवती बच्चियां हैं, आज बेचारे बेरोजगार हैं, आज बेचारे असहज और असहाय महसूस कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों का इस राज्य में और कोई अब जरूरत नहीं रह गया। आज हम लोग देखिए यहाँ पर मशाल जुलूस के माध्यम से प्रतीकात्मक हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और पूरे राज्य में ये चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और आने वाला समय आप आने दीजिए, नौजवान अंगड़ाई ले रहा है, नौजवान सड़क पर उतरा है।
1: जिले में जुलाई महीने में औसत से काफी कम बारिश हुई है, बावजूद इसके चारों ओर भदई और खरीफ दोनों ही फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। भदई में विशेष रूप से मकई, तिल, उड़द आदि की बुआई समाप्त हो चुकी है, वहीं धान के बिचड़े की भी बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बरसापात में और सुधार होगा और उनकी भदई और खरीफ दोनों ही फसलों का आच्छादन लक्ष्य के अनुरूप हो सकेगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
0: अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पसंद करते हैं खरसवा पतिसाई से शुक्रा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, सोनुआ गांव पोड़ाहट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक, मखरू आचार्य, गोल्डन रेडियो लिस्नर क्लब राज पैलेस मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, राजीव वर्मा, रितेश सोनी, दुधनाथ भारती, पारुल पल्लवी, शैलजा सोनी, रविदास मंदिर हकीकतपुरा मऊ UP से मुन्ना स्वर्णकार, सोनू स्वर्णकार, आर्यन स्वर्णकार, लिटिल पीहू स्वर्णकार एवं पूरा स्वर्णकार परिवार, सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरमानी मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना, FM शिवा मुंडरी, अमलाटोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू, डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, दिव्यवी अनिष्का और तन्मय गजभिये, कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, सफ़ी खत्री, इद्रिश खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, कासिफ मीना, हासिम मीना, रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी

डागला जयेश नायक, शोभा नायक एवं समस्त डागला परिवार, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा, बिहारी कॉलोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रोटी का ये गाना, आवाज़ें किशोर कुमार की है।

0: अगली पसंद आप सबों की, ग्राम जोजो कुड़मा से मनोज गागराई, बसंती गागराई, सोनाली गागराई, आयसा गागराई, रचना गागराई, जितेंद्र गागराई, चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमहिनी महतो, मनोरमा और दीनबंधु, दौलतबाग मुरादाबाद से जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, सरोज ध्रुवंशी, मास्टर शानू ध्रुवंशी, बरियातू रांची से नितेश, मेघा, आकांक्षा और अरब, उत्तराखंड रुद्रपुर से राजीव, सुमन और आदित्य, कोटाबा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, बेडी से हुकुम कर्मकर, सोनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची कर्मकर, तनु कर्मकर। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जॉनी मेरा नाम। इस फिल्म का गाना आवाजें हैं लता मंगेशकर की।
1: लेटेस्ट

अगली पसंद आप सबों की है, सुनना चाहे चांदपुर पॉडकास्ट से संतोष कुमार भगत, बसंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत, कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद, दुर्गाई सैलू, जिला परभनी से चंदू कुलकर्णी, हेमलता, सी आर कुलकर्णी, गांव क्वीडा से पौंडे बोईपाई, रेशनल बोईपाई, यशमती बोईपाई, कश्मीरा बोईपाई, मोनिका बोईपाई, सुनीता बोईपाई, मीनाक्षी बोईपाई, देवी चरण भंज और तारकेश्वर बांधा, रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी, गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, विनोद गोप, आशीष गोप, विक्की गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप और शुभम गोप, ग्राम जोजो कुड़मा से सुकरा महतो, पीताम्बर महतो, मुरारी महतो, राजेश महतो, कविराज महतो, सुपाई साई से कर्ण प्रधान, ज्योति प्रधान, जगबंधु प्रधान, दुष्यंत प्रधान, मिथुन प्रधान, बड़ा कुड़मा से सुदर्शन महाली चिगड़ू महतो, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, मौलडिया सोनवा से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अन्नू, तनु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो, मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पानी प्रधान और नीक पानी प्रधान। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कन्यादान का ये नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की है।

श्रोता सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। अगली पसंद आप सबों की है। ग्राम खेड़ियाघर प्रखंड मंझारी से बसंत वेंकुरा, सुलोचना पान, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, कल्पना कुमारी, रूपाली कुमारी, झीपी कुमारी, जयमणि, जयंती, अल्पना, नवीन। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतंग बीरक, मीका बीरक। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नशीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, सोएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, राव भाई, साहिद भाई। गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। कुचाई बिदरी से केपी सेठ सोए, सरिता सोए, दुर्गामती, राजकुमारी, रेशमी, विशाल, मुन्ना और सनी। ग्राम सुराबेड़ा से बासिंग सरदार, बीरू सरदार, रमेश, कमल सिंह और अंशु एवं सरदार परिवार। भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी, लोकेश जोशी। बड़ा बाम्बो सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला प्रमाणिक, श्यामदेव नायक, पूजा और सीमा। ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, रमेश, बनमाली बेसरा, अन्नू, सिद्ध कुमारी और पूजा। पाकुड़ झारखंड से उत्तम भगत, श्वेता भगत, ईशु, ताशु तथा भगत परिवार। तुरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो, हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी, अर्पिता कुमारी। आमजोड़ा पोखरिया मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, प्यारी बहने, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप। इस गीत को सुनना चाहे पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म घर द्वार का ये नगमा। आवाज़ें हैं चंद्रानी मुखर्जी और सुरेश वाडेकर की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700001424।

0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: अगली पसंद आप सबों की है। खसवां बड़ा बांबू से उड़िया साई से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डॉली महतो, तरुण महतो, समस्त परिवार के सदस्य। छोटा नीमरी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन, कोमल, ऋतिक। वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सनी मधुर। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहत मध्य प्रदेश से भैया तड़बी, रीना तड़बी, सनी बाबू, रोजबाई तड़बी, परू मुबारक बारिकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारिकर। मुगाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़बी, आरिश, अरसलान, यूनुस तड़बी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़बी, जरीना तड़बी, मुबारक तड़बी, परवेज तड़बी, बिटिया रोजमीन तड़बी, तैमूर तड़बी, समस्त तड़बी परिवार। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत अदीबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्लाह फकीर, डब्लूउल्लाह फकीर, परवीन आशमा फकीर। बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष्ण श्रीवास्तव। अमरपुर पेंडा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, लेबई से गुदाबदास मानिकपुरी। दत्रेगी से भागवत वर्मा, कोटावन शेरपुरा कला, गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म करण अर्जुन का ये नगमा। आवाजें हैं कुमार शानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की।

अगली पसंद आप सबों की बड़ा नेमडी चाय बासा से तुलसी पथिक मीरा देवी बजरंगी ठाकुर मीतू रंजन राजीव रंजन मौलिक रंजन अमृत कुमार अमित कुमार सुमित कुमार माली साई से बिरबल माली सरस्वती माली प्रेमचंद माली फूलमणि माली शकुंतला माली सुमांति माली यशोदा माली शांति माली आजाद नगर लक्षर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिराही मेहराज जहाँ खरसमा गांव दलाई किला से लक्ष्मण सोए आयुष सोए गीता सोए सीनी माई सोए सरिता सोए तनुजा सोए सारिका द्वारिका सोए छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश शीतल राजेश न्यू कॉलोनी नीमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला निर्मला देवी अर्चना देवी खुशबू खुशी अभिषेक अंश अंशु और अनिश न्यू कॉलोनी टुंगरी से रश्मिता महतो स्वाति महतो विश्वजीत महतो अभिजीत महतो आर्या वीर तेजस प्रकाश जायसवाल प्रदीप जायसवाल उर्मिला देवी वैष्णवी रीना जायसवाल हजारीबाग गोला रोड सेठ मोहल्ला से अन्नपूर्णा देवी सुधा देवी प्रिया देवी आशा देवी उदय जायसवाल हन्नू ऊर्जा उन्नति उत्कर्ष अंशु जायसवाल बड़े बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी समीमा खानम निम्मी बिट्टू किरण रोशनी परी मुस्कान नबीहा बड़े बाजार चाईबासा से भगीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म पुलिस मुजरिम का ये नगमा आवाज़ें मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की है।

कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं आप सबों की पसंद पे अगला गीत। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। भाटपारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोत, निखिल कागड़ा, अंकित कागड़ा, साहिल कागड़ा। कमरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार। आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा और सौरभ शर्मा, साइना शर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म भीगी पलके का ये गाना, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है।

अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों

को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में चार दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने 1 ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस चर्चा को

267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के 4th दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

आप सुन रहे थे इस सप्ताह संसद में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे फरमाइश गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली फरमाइश है, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरूला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, राऊ भाई, साहिद भाई, गांधी बाग अंकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म किस्मत का ये नगमा। आवाज़ें आशा भोसले और शमशाद बेगम की है। गीत लिखा SH बिहारी ने, संगीत OP नैयर का है।

अगली फरमाइश है, न्यू कॉलोनी निमडी चाईवासा से ठाकुर प्रसाद, रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अनीश, अनामिका, अंकिता, अमित, मनीष और मुन्ना की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मुद्दत का ये नगमा। आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की है।

अगली फरमाइश है, गांव कीता सरायकला से राधा कृष्ण गोप, सुनीता देवी, उमा कुमारी, गीता देवी, रीता देवी, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, शुभम गोप, सुमित गोप, विकी गोप, सरस्वती देवी, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप और आराध्या कुमारी की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मेरे हम सफ़र का ये नगमा, आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और आई सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे अगला गीत। पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुल्ढाना से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेध कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आँखें का ये नगमा। आवाजें हैं लता मंगेशकर की।

0: कभी कभी।
1: कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे अगला गीत। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनमिंदर पांधा, गोलू काकू, जीएस राम गढ़िया। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म महबूबा का ये नगमा, आवाज़ें किशोर कुमार की है।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz से, और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो

0: मान ली गई है तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
4: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर DP सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Did the contribution of the Indian community in Romania, describing them as a vital pillar of the growing partnership between the two countries.
1: भारत रोमानिया संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है हमारे लोगों के बीच आत्मीय संबंध। ये देखकर मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स रिसर्चर्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: The president paid tribute at the tomb of the unknown soldier and was conferred an honorary doctorate by the Bucharest University of Economic Studies in recognition of her contribution to public service and India-Romania relations. The sacred city of Puri in Odisha is witnessing the magnificent Sunabesha of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra atop their majestic chariots on the Grand Road. Our correspondent reports on the divine spectacle unfolding in the pilgrim town.
2: Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra are today resplendent in the sacred Sunabesa, adorned with exquisitely crafted crowns, necklaces, armlets, earrings and other traditional ornaments comprising around 208 kilograms of gold and other precious materials. Atop their majestic chariots on the Grand Road in Puri, the revered golden attire, one of the grandest rituals of the annual Rath Yatra, is expected to remain open for public darshan until around midnight, enabling lakhs of devotees to behold the celestial splendor of the Holy Trinity. The entire pilgrim city reverberates with devotional fervor as elaborate security and crowd management measures remain in force to facilitate the smooth conduct of the sacred occasion. Prakash Das for Akashvani News.
0: Onto the weather, rain intensity has reduced across Gujarat, bringing relief after heavy downpours. Light to moderate showers occurred today in some areas of the state's southern and northern parts and Saurashtra. Our correspondent reports that so far, the state has recorded over 52% of its seasonal average rainfall, significantly boosting water storage across key reservoirs. The Sardar Sarovar Narmada Dam currently stands at nearly 69% capacity, while 14 out of 206 state reservoirs have touched full capacity. Meanwhile, the flood situation in Assam remains critical, with over 1.15 lakh people taking shelter in relief camps. Sivasagar, Charaideo and Jorhat are the worst affected districts. 14 more flood-related deaths have been reported, taking the state's flood death toll to 61. Prime Minister Narendra Modi today held a telephonic conversation with Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and reviewed the flood situation in the state. President Draupadi Murmu has expressed grief at the loss of lives and devastation caused by floods in Assam. Sharing condolences to the bereaved families, the President prayed for the safety of all those affected by the calamity and for the well-being of all personnel involved in rescue, relief and rehabilitation efforts. The President assured that the nation stands in solidarity with the people of Assam. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for extremely heavy rainfall tomorrow over Madhya Maharashtra and Odisha. Heavy to very heavy rainfall conditions are also likely to prevail over Chhattisgarh, Gujarat, Konkan and Goa during the next 2 days. The Weather Department said coastal Andhra Pradesh, East Madhya Pradesh, Gangetic West Bengal, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Uttarakhand, West Rajasthan and parts of Northeast India are expected to witness heavy rainfall conditions tomorrow. In men's cricket, India defeated hosts Zimbabwe by 90 runs in the second T20 international of the three-match series in Harare. With this win, the men in blue have registered an unassailable 2-0 lead in the series. A report.
3: This win for the men in blue marks the first series win under the captaincy of new T20 skipper Shreyas Iyer. Chasing a huge target of 220 runs set by India, Zimbabwe got bundled out for just 129 runs in the 18th over. India's batting all-rounder Abhishek Sharma impressed with his bowling skills and bagged 3 wickets. Moreover, debutant Yash Thakur and Prince Yadav each picked up 2 wickets. Earlier, after being invited to bat first, India posted 219 for 5 in stipulated 20 overs, riding on Ishan Kishan's 81 runs of just 44 balls. Tilak Verma also contributed crucial 60 runs in just 29 deliveries and remained unbeaten at the crease. Chirag Jha from Sports Desk.
0: In Ladakh, the first day of the 27th Kargil Vijay Diwas commemorations concluded with the solemn Shauri Sandhya ceremony at the Kargil War Memorial in Dras this evening. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Dras and participated in the ceremony. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigns. CJP calls off protests as government agrees to their demands after talks with Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashwani tomorrow. President Draupadi Murmu concludes her three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. Ancient Buddhist site of Sarnath in Uttar Pradesh added to UNESCO World Heritage List. And in cricket, India beat host Zimbabwe in second T20 international by 90 runs in Harare. That is all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम. मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. सीजेपी ने एहतजाज खत्म कर दिया है क्योंकि नई दिल्ली में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुजाकरात के बाद उनके मुतालबात को हुकूमत ने मंजूर कर लिया है. वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे. सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया का 3 मुल्कों का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है. उत्तर प्रदेश में सारनाथ के कदीम बौद्ध मजहबी मकाम को यूनेस्को की आलमी सकाफती फहरिस्त में शामिल किया गया है. और क्रिकेट में भारत ने हरारे में दूसरे T20 बैन अलावामी मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से शिकस्त दी. अब खबरें तफसील से. मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सौंपा. एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब प्रधान ने कहा कि तलबा के एहतजाज के बाद गुज़िश्ता 10 दिन से जारी सूरत हाल से उन्हें दुख पहुंचा है. उन्होंने कहा कि उनके लिए यह अना का मामला नहीं था. उन्होंने कहा कि उन्होंने नई दिल्ली जंतर मंतर और पूरे मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखा. उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की खिदमत उनकी जिंदगी की अव्वलीन तरजीह रही है और वो हमें इस बात पर अहद बस्ता रहेंगे. जनाब प्रधान ने कहा कि 16 जुलाई को ऐलान किए गए नीट यूजी नतायज इत्मीनान बख्श थे. इनमें कमजोर तबकों से वाबस्ता कई तलबा ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की. जनाब प्रधान ने कहा कि अलबत्ता ऐसे वक्त में भी जिम्मेदार ओहदों पर फायज अफराद ने रुकावटें पैदा करने की कोशिश की और तलबा को गुमराह किया. उन्होंने कहा कि इन बातों से उन्हें गहरी तकलीफ पहुंची है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी नए वजीर तालीम होंगे. जनाब जोशी को उनके मौजूदा कलमदान के साथ साथ वजारत तालीम का चार्ज सौंपा गया है. जनाब जोशी इस वक्त सारेफीन के उमूर, खुराक और अवामी निजाम तकसीम, नेज नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं. सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने वुजरा की मरकजी कौंसिल से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है. सीजेपी ने हुकूमत के जरिए अपने मुतालबात पूरे किए जाने के बाद अपना एहतजाज खत्म कर दिया है. मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सीजेपी के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत की, जिसमें इम्तहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक को रोकने के इकदाम के लिए उसके मुतालबात पर तवज्जो मरकूज की गई. بعد میں نئی دلی میں سی جے پی کے وفد کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران حکومت نے سی جے پی کے ان مطالبات سے اتفاق کیا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے.
5: سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایکشن ایف آئی آر نہ ہو, اور اگر ہے تو وہ وڈرا ہو, اور اس کو وڈرا کرنے کی بات کوئی

0: भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: सीजेपी के चीफ तर्जुमान सौरव दास ने इस उम्मीद का इजहार करते हुए एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया कि जिन उमूर पर इत्तेफाक हुआ है उन पर मुतफ़क़्क़ा वक्त की मुद्दत में अमल दरामद किया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वालों के कुनबों को मुआवजे देने के मामले पर जनाब नड्डा ने कहा कि इस जिम्न में हुकूमत को पूरी हमदर्दी है और वो उसूल जवाबित के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मुआवजा फराहम करने को यकीनी बनाएगी।
0: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: इस दौरान सीजेपी के कौमी तर्जुमान आशुतोष रांका ने तमाम एहतजाज करने वालों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर एहतजाज खत्म करें और पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस लौट जाएं।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुल्क के तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के लिए ठोस इकदाम करे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तालिब इल्मों की जीत करार दिया। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के तमाम स्टेशन अब मुसाफिरों की खिदमत के लिए खुल गए हैं। इससे कबल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने सिक्योरिटी वजूहात के बाइस 18 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया था। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है और तकरीबन 1,15,000 लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ली हुई है। शिवसागर चराइदियो और जोरहाट सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। सैलाब से मजीद 14 लोगों की अमवात की खबर है जिससे रियासत में हलाक होने वालों की कुल तादाद 61 हो गई है। मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आसाम में सैलाब से इंसानी जानों के नुकसान और उससे होने वाली तबाही पर दुख का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का रोमानिया का सरकारी दौरा मुकम्मल हो गया है और वो आज तीसरे पहर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। इससे कबल दिन में सदर जमहूरिया मुर्मू ने भारतीय बिरादरी के अराकीन के साथ बातचीत की। बुखारेस्ट में भारतीय बिरादरी के लिए मुनाकिदा एक इस्तकबालिया से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय बिरादरी के तआवुन की ये कहते हुए सताइश की कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी के अहम सुतून हैं।
3: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ने रोमानिया के अपने हम मनसब के साथ वसी मुजाकरात किए। उनका मकसद तिजारत, सरमायाकारी,

0: दोस्तों, विज्ञान भारती के आज के अंक में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। विज्ञान जगत की बात करें तो ये महीना भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। इन्हीं उपलब्धियों को कार्यक्रम में पिरोते हुए आज की पहली भेंट वार्ता में हम प्रोफेसर विनीत विश्नोई से जानेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आज ही के कार्यक्रम में रेयर अर्थ मटेरियल के रहस्य को सुलझाएंगे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण। दोस्तों, 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस मनाए जाने के अवसर पर आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता बताएंगी क्या होती है आईवीएफ तकनीक। इसी कार्यक्रम में आगे बाघों के संरक्षण के महत्व और नवीन तकनीकों की जानकारी देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला। कार्यक्रम के आखिरी छोर पर जानेंगे उत्तराखंड की नई विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति के बारे में यूकॉस्ट के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से। और फिर अंत में जुलाई माह से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी देंगी रितिका बिंजोला। कार्यक्रम में ये सब कुछ होगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं रितिका बिंजोला से ताजा विज्ञान समाचार।
1: जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहां 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था, तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनके ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई, जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है, जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है, जिससे ईवी उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है, जिसे एक एक्सोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को DNA राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल DNA सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक DNA में स्टोर किया जा सकेगा। किया। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है, जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है, जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
0: 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घोष के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
2: आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
0: भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन न सिर्फ ईंधन आयात की मुक्ति के सपने की ओर एक कदम है, बल्कि विज्ञान जगत में भारत की ओर से एक नए कीर्तिमान का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनीत विश्नोई से आसान भाषा में, आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या।
3: हाइड्रोजन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, वो एक बेसिक केमिकल रिएक्शन पर आधारित है, जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है। तो ये रिएक्शन एक सामान्य रासायनिक क्रिया है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, या कह लीजिए आप दो सिरे हैं। एक सिरे पे हम हाइड्रोजन देते हैं और दूसरे सिरे पे हम वातावरण से ऑक्सीजन लाकर देते हैं। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा। कार्य करने का तरीका इसमें ऐसा है कि हाइड्रोजन को पहले जो है जिस इलेक्ट्रोड पर वो पहुंचती है वहां पे एक कैटलिस्ट दिया हुआ है प्लेटिनम, और जब प्लेटिनम के संपर्क में वो हाइड्रोजन गैस आती है तो उसका विखंडन होता है, वो मॉलिक्यूलर रूप से आयनिक रूप में प्रवेश करती है और इस प्रक्रिया में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद प्रोटॉन बन जाती है वो गैस, और प्रोटॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चलना शुरू कर देती है। यहाँ बीच में एक झिल्ली होती है जो विशेष रूप से इस क्रिया के लिए बनाई गई है, जिससे पार होकर प्रोटॉन जा सकते हैं, मतलब इट इज सेलेक्टिवली फॉर द प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन इधर से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन निकल के गया था, वो इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से, जो दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए हमने बाहर तार लगा रखा है, जो हम सर्किट कहते हैं, उसमें हम कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, उस तार में वो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और ये विद्युत का स्वरूप है और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक प्रकार से कह लीजिए एक छोटा सा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें हम हाइड्रोजन का उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे हैं।
0: इस ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है। कैसे बनता है ये ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर प्रोफेसर विनीत कहते हैं,
3: जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को पाने के लिए हम कोयला भी जला सकते हैं, ऊर्जा को पाने के लिए हम जैसा कि कच्चा तेल जलाते थे वो भी जला सकते हैं, किंतु अगर हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे, जो ऊर्जा हमको सीधे मिल रही है उसका इस्तेमाल करने लगे और उससे डायनेमो चलाने लगे, बिजली उत्पन्न करने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं, विंड एनर्जी को टैप कर रहे हैं और

0: कर लिया, वो हमारा हो गया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कहीं पर भी जो है हमने उत्सर्जन नहीं किया और प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत इस्तेमाल किया है जो कि सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है। और फिर इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन में उनको रिफिल करने में इस्तेमाल किया, और जब इसका उपयोग आगे चला तो इसमें एमिशंस भी जो है 100% कार्बन फ्री है, कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। और वापस वो जो पानी विखंडित करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया और यहां पर उपयोग कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विद्युत बनाने में, तो बाद में वही हाइड्रोजन वापस प्रोटॉन के रूप में जब आ गए थे वो ऑक्सीजन से मिलकर वापस वो पानी बना गए। यानी पानी से आप शुरू हुए और पानी ही उत्सर्जित कर दिया, और जो ऊर्जा का उपयोग किया आपने उस हाइड्रोजन को उत्पन्न करने में वो है सौर ऊर्जा। एमिशंस कहीं इसके अलावा और कुछ हुए नहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, हम अपने वातावरण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में अगर देखा जाए तो इट इज 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल, और ये ग्रीन ईंधन के रूप में आप समझ सकते हैं।
1: दोस्तों, भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है, और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। आईआईटी कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों है।
2: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं। कम इस सेंस में है कि ये हैं धरती में बहुत सारे, बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली, और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है। जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है, तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है। तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
1: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है, इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
2: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट है, तो उनका एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से वापस जीरो लाएंगे, तो एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का, कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है, तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का, यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट्स अकेले परमानेंट रेयर अर्थ एलिमेंट से नहीं बनते हैं, उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे NdFeB बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है। तो Nd जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो Nd की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी, बजाय की जब हम Nd और Fe को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो हैं रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्युमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
1: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं।
2: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी, कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली जो है वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं। तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना। तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है, और साथ में उनकी अबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब एक होता ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं, तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज है उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
1: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं,
2: तो भविष्य में ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं, जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
1: दोस्तों स्टेम सेल और आईवीएफ तकनीक का विकास मानव

0: इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में से तो एक माना ही जाता है, लेकिन इस तकनीक ने धरती पर मानवों को सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में भी स्थापित किया है। 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता से सरल नजरिए से आईवीएफ तकनीक क्या है।
1: तो बेसिकली जो आईवीएफ है उसका साइंटिफिक ये है कि कोई महिला बचपन से जूझ रही होती है तो उसमें रीजंस ढूंढे जाते हैं पहले, तो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। तो ओव्यूलेशन फैक्टर होता है, ट्यूबल फैक्टर होता है, फिर उसके बाद ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो 60% का एक चंक बनाते हैं फीमेल्स में। उसी तरह मेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी स्पर्म की, उसकी शक्ल अपीयरेंस। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि देखा गया कि वो हेल्प नहीं हो पा रही है विद मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स की कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स नेचुरली, या विद स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक IUI इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन जो कि एक हेल्प होती है नेचुरल प्रोसेस में। उसके लिए फिर IVF का एक माध्यम डेवलप हुआ और इंडिया में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था, एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट बेसिकली। तो जब उन्होंने दुर्गा के लिए, मतलब जो फर्स्ट बॉर्न बेबी इंडिया की है वो दुर्गा है, तो उनको लैब में ही उन्होंने क्यूरेट किया था। उस टाइम पे इसे अनएथिकल कहा गया, तो उस टाइम का कॉन्सेप्ट उनका विजन कोई समझ नहीं पाया। फिर प्रॉपरली जाके डॉक्टर हिंदुजा के बॉम्बे में एक ICMR की स्टडी हुई, रिक्रूट हुए पेशेंट्स, एंड देन आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऐसे करके प्लान हुआ। तो जो चीज उस टाइम पे अनएथिकल थी, अननेचुरल मानी जा रही थी, आज आप देखिए कितनी आम हो रही है और इसे एक बून माना जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि बच्चा नहीं कर पा रहे नॉर्मल तरीके से। तो इसलिए ये एक टेक्निक थी जो लैब में डेवलप हुई थी हेल्प करने के लिए, जिसमें कि एग और स्पर्म यानी कि गेमिट, एक फीमेल और मेल गेमिट को हम फर्टिलाइज करते हैं, नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं जो डॉक्टर्स मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो उसको आपस में जोड़ते हैं। एक डिश है, डिश के अंदर हमने स्पर्म छोड़ दिए तो उस प्रोसेस को IVF कहते हैं। लेकिन अगर हम नीडल द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर तो उसे हम ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये एक उसका एडवांस्ड प्रोसेस है। तो ये दो मेन टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं कॉमनली। तो ये साइंटिफिक इसका है कि अल्टीमेटली जब वो फर्टिलाइज होता है फिर उसके बाद डे वन पे जाके 24 आवर्स के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन बाद डे 2 एम्ब्रियो चेक करते हैं, फिर डे 3 होता है, फिर डे 4 होता है, फिर डे 5 होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये साइंटिफिकली जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चा जब बनता है फेलोपियन ट्यूब में तब 0 डे है और फिर स्लोली स्लोली 5वें दिन तक एंडोमेट्रियम यानी जो आपकी बच्चेदानी होती है उधर पहुंचता है और फिर चिपकता है जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो हम जो बच्चा डालते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं 5वें दिन पे करते हैं मोस्टली, तो वो ब्लास्टोसिस्ट बच्चे के चिपकने का चांस बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसे ही हम यूज कर रहे हैं।
0: दोस्तों IVF तकनीक को आए अब सालों हो चुके हैं, ऐसे में इस तकनीक के सुधारों पर और भविष्य की संभावनाओं पर डॉक्टर आकृति कहती हैं।
1: तो बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं। आप देखिए टाइम लैप्स इमेजिंग डेवलप हो गई है, जहां की पहले हम एम्ब्रियोस को देखते थे 5 दिन में 2 बार, अभी एक मशीन आ गई है जो मशीन के अंदर हम उन्हें डालते हैं डिश के अंदर ही, सेम एनवायरनमेंट है बट वो कैमरा लगे हैं छोटे छोटे, वो फोटोज लेते हैं उसकी, तो फोटोज खींचते रहते हैं उनकी डेवलपमेंट्स की एट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एंड वो इमेजेस फिर स्टडी की जाती है। देखा जाता है कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है, क्योंकि सब बच्चे चिपक नहीं पाते ना, सब एम्ब्रियोज अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते। तो ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम देख सके इस माध्यम से और हम ये पता लगा सके कि अच्छा अगर ये चीज दिख रही है तो इसका चांस ज्यादा है चिपकने का बच्चे का, तो यही डालते हैं रादर देन जिसमें वो चीज एब्सेंट है, तो फिर वो निगेट हो जाता है, नेगेटिवली आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है बच्चा। तो इस सेंस में जो चांसेस हैं अटेम्प्ट्स हैं IVF के वो कम हो जाएंगे, पैसा का खर्चा कम हो जाएगा एंड सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा। देन AI सिस्टम ऑफ विटनेसिंग आ गया, तो मतलब आजकल लैब्स में AI विटनेसिंग हो गई है, ये याद करने की जरूरत नहीं अगर 4 मरीज हैं आज तो भाई ये इसका सैंपल है, वो AI के माध्यम से ही है कि ये इसका सैंपल इस नंबर वाले उसमें पड़ा है ये निकालिए, ताकि मिक्सिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, पेशेंट सेफ रहे, डॉक्टर सेफ रहे।
0: दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है। लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से।
2: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है। जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग जगह है वहां पर आयोजित की गई 2010 में। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता है। तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया। आज हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते हैं। इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण। इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई इसमें 9 टाइगर रिजर्व्स को शामिल किया गया। आज 58 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई, तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहां पर है।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं।
2: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण की लगभग हर पहलू में किया जा रहा है। प्रोटेक्शन की बात करें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना, इसके लिए हमने भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक एम स्ट्राइप ऐप बनाया है। अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो एम स्ट्राइप ऐप में एंटर कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है, और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है, यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए, कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है, आबादी वाले क्षेत्र से लगती है, वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमराज लगाए हुए या वहां पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पे निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर।
0: दोस्तों जुलाई 2026 में उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस ने राज्य की विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति जारी की है। क्या है इस नीति का आधार, आइए जानते हैं यूकॉस के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से।
3: देखिए जब हम साइंस की बात करते हैं तो कोई हमारे दिमाग में एक चित्र आता है कि एक कहीं संस्थान है, एक कोई लैब है जहां कुछ लोग काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम होता क्या है। हम भी सोचते हैं क्या कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि उसको आगे कैसे ले जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी तो जानने लगे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल की हो चाहे कुछ भी जो भी हम करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट है। नवाचार इसलिए जरूरी है क्योंकि नवाचार हैं, फ्रुगल नवाचार हैं, इसीलिए दुनिया में सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब ये समझिए कि एक पॉलिसी के तहत ये साइंस टेक्नोलॉजी और इसको लैब से लैंड को ले जाने की यात्रा और उसमें नवाचार जोड़ना, एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ना, आमजन से जोड़ना, जनता से जोड़ना, काश्तकार से जोड़ना, महिला से जोड़ना, गाँव से जोड़ना, ये STI है क्योंकि ये उन्हीं से पूछ के कि वो क्या चाहते हैं, वो पानी की बात हो, कृषि की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, मैन एनिमल कंफ्लिक्ट की बात हो, टूरिज्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सब में शोध होना चाहिए या शोध आधारित समाधान अगर हो तो स्थायी समाधान होते हैं, एडहॉक नहीं होते हैं। इसलिए STI इम्पोर्टेंट है और विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाइए कि आप इसको विकसित करिए, और एक साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग अगर बनाएगा तो इसकी तभी होगी, समझ में भी आएगा। इसलिए इसको करीब 3 वर्ष की इसमें समय लगा बनाने में और अब ये बाहर आई है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
0: लैब टू लैंड और साइंस फॉर सोसाइटी पर आधारित विज्ञान नीति क्यों जरूरी है, इस बारे में डॉक्टर पंत कहते हैं।
3: आप ये देखिए ना, अगर जो काश्तकार है या जो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा है, अगर वो मिट्टी से ही नहीं जुड़ा, उसने मिट्टी से ही नहीं खेला देखा बात की, तो उस एग्रीकल्चर साइंस का क्या लाभ होगा जो लैब में हो रही है। इसी तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाएंगे तो गलतियां भी होंगी, फेल्योर्स होंगे, उससे सीखेगा व्यक्ति, वो थ्योरेटिकली नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, विज्ञान लगातार कर करके सीखने का नाम होता है कि हम कई चीजें करते हैं उसके बाद चीज निकल के आती है, तो वो एविडेंस बनती है। ये हमारे वहाँ का एक बेसिक गैप है जो हमारी विज्ञान की शिक्षा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कह रहे हैं कि इसको स्किल बेस्ड, इसलिए हमने STEM की बात करी है इस पॉलिसी में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में थोड़ी, एक साइंटिफिक एटीट्यूड टेम्पर की बात कर रहे हैं कि इससे लोग जुड़े, बात करें, समझें, देखें, विचारें, सूंघें, ये महत्वपूर्ण। उन्हें तब इससे समझा जा सकता है। इसलिए जो आप कह रही हैं बिल्कुल स्किल बेस्ड होना चाहिए, वही देश को बदलेगा। मेरी बात आप समझ, तभी देश में बदलाव आएगा जब वो काम करेगा हाथ से। जिसने बल्ब नहीं बदला है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करे कैसे होगा? जिसने कभी इस पूरे के पूरे जो हमारे पास कैमरा है उसी पे काम नहीं करा, वो कैसे बदलेगा? सोलर की जिसने लाइट नहीं बदली वो सोलर के, तो इस समय आवश्यकता है देश में फिटर का, ट्रेनर का, इनका, ये तमाम सारी चीजों की आवश्यकता है जिसकी हमने इसमें बात करी है कि विज्ञान ऐसा हो जिसको हाथ से किया हो, जिसको देखा हुआ हो, जिसको समझ के कर रहे हैं। ये हमारी जनरेशन को बदलेगा, देश को बदलेगा, हम और आपको बदलेगा।
0: दोस्तों कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
4: जुलाई का ये महीना सिर्फ मॉनसून की फुहारे लेके नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुराने डीसी प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनके द्वारा खींची गई ऐतिहासिक डीएनए की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार सीढ़ी जैसा मॉडल तैयार किया था। डीएनए के अलावा रोजलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजलिन की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजलिन ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।

श्रोता हूँ, इसी के साथ विज्ञान भारती के आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, समय है गजलों का, तो आइए सुनते हैं पंकज उदास के स्वर में गजल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोता सुन रहे हैं पंकज उदास के स्वर में गजल।

पंकज उदास द्वारा गाए इस गज़ल के साथ ही श्रोता हमारा आज का गज़लों का कार्यक्रम महफिल अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चारिभाषा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। पहला गाना है फिल्म आंधी से, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

अभी आपने सुना फिल्म मुनीम जी का ये गाना, आवाज़ें थी किशोर कुमार की। और आई सुनते फिल्म सजा में लता मंगेशकर को।

अभी आपने सुना फिल्म रात अकेली है। इस फिल्म का गाना आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी की। और आइए सुनते हैं आवारा में मुकेश और लता मंगेशकर को।

अभी आपने सुना फिल्म पति पत्नी और वो। इस फिल्म का गाना आवाज़ें थी महेंद्र कपूर की। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गाना, आवाज़ मुकेश और लता मंगेशकर की है।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का सुरों के रंग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जाँच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सकेंद्र से बोल रहे हैं। FM के 101.7 MHz पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा अभी ही संपन्न होती है। कल सुबह यानी कि 5:56 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।